काफिर कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कयामत का कब पूरा होगा। कह दो कि इसका इल्म अल्लाह ही को है और मैं तो खोल खोल कर डर सुना देने वाला हूं, सो जब वो देख लेंगे कि वो अजाब करीब आ गया तो काफिरों के मुंह बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि ये वही है जिसके तुम तलबगार थे। कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह मुझको और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर मेहरबानी करे तो कौन है जो काफिरों को दुख देने वाले अजाब से पनाह दे। कह दो कि वो जो रहमान है हम उसी पर ईमान लाए और उसी पर भरोसा रखते हैं, तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में कौन पड़ा है। कहो कि भला देखो तो अगर तुम्हारा पानी जो तुम पीते हो और बरतते हो खुश्क हो जाए तो अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हारे लिए शफाफ पानी का चश्मा बहा लाए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: इस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा और पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन, और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो रहता था और जितने आदमी जमीन पर हैं, गरज सबको दे डाले, फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़ कर कलेजा निकाल लेने वाली। वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीन हक से एराज किया और मुंह फेर लिया और माल जमा किया फिर सेंत सेंत कर रखा।
1: صدق الله العظيم।
2: ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, ऐ कौनो मकान के मालिक, हम तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, हम पर करम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने तेरे नाम और तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के लिए बर्रे सगीर में इस सरजमीन के लिए बाबाए कौम कायदे आजम की क्यादत में बेहिसाब कुर्बानियां दी हैं। हमारी इस सरजमीन पाक को कयामत तक आबाद रखना। ए अल्लाह, हमें नफरतों की आग से बचा ले, हमें बाहमी मोहब्बत और खुलूस की दौलत अता फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा। हम अपने गुनाहों से तौबा मांगते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, पूरा मुल्क खास तौर पर ये मासूम बच्चे तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। ऐ अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल इस सरजमीन पाक को आने वाली नस्लों के लिए महफूज और मुबारक कर दे। ऐ अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह, दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख। हमारा ये परचम, हमारा ये प्यारा परचम इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सरबलंद रखियो। ऐ अल्लाह, अपने रहम करम से और अपने फजल से इस सरजमीन पाक को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के हर शहरी का दिल तासुब, गिरोहबंदी और फिरका परस्ती के घिनौने ख्यालात से पाक हो और वो हर फिरके और हर तबके के भाइयों के साथ मोहब्बत और आश्ती और अमन सुकून के साथ रहे। ऐ अल्लाह, हम सबको हलाल की रोजी हासिल करने की तौफीक अता।
0: आमीन।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 2 0242460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما توعدون لآت بشك جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے البتہ آنے والا ہے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اشارہ

मनों में बैठे क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम।

हफ़्ता सदस्यों लाइ त जंगी कार्रवाई ॿीहर खणी पई त कंदासीं। यकीन आहे त अमरीकी मुफ़ाद में मुआदो करण में कामयाब थी वेंदासीं। आमने हुर्मुज़ जो कंट्रोल अमरीका वटि आहे। अमरीकी सेंटकॉम दावा कई आहे त अमरीकी फ़ौज गैम्बिया जे झंडे वारे जहाज खे ईरान वञण खां रोके नाकारा बणाए वियो। नाकाबंदी जी भंकड़ी कंदड़ जहाज़नि खे नुक़सान पहुचायो वियो। आमने हुर्मुज़ जो मुकमल कंट्रोल ईरान वटि आहे। ईरान जी बिना इजाज़त ऐं मुक़रर कयल रूट्स खां हटी करे आमने हुर्मुज़ खे सफ़र करण जा नतीजा ख़तरनाक हूंदा, ईरान ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी फ़ौज जो चवणु आहे त समूरो वापारी जहाज़ ऐं आयल टैंकर्स ईरान जी इजाज़त सां ई आमने हुर्मुज़ खां गुज़री सघनि था। जेको ईअं न कंदो उहो पंहिंजे ऐं ॿियनि जहाज़नि लाइ नुक़सान जो सबबु बणिजी सघे थो।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: शदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
3: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
4: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

अबनाए हुर्मुज़ जी नाकाबंदी बरकरार आहे। ईरान सां मुआहिदो थियो त अबनाए हुर्मुज़ खे खोलियो वेंदो। उन जो दारो मदार ईरान ते आहे। कहिड़े रस्ते जी चूंड करे थो। मुआहिदो थी वियो त अबनाए हुर्मुज़ टूल फ्री रस्तो हूंदो जेको सॼी दुनिया इस्तेमाल करे सघंदी। अमरीकी जंग वारे वज़ीर पीट हेगसेट जो सिंगापुर में ख़िताब। संदसि चवणु आहे त जंगी कार्रवाई ॿीहर कहिड़ी पई त कंदासीं। यकीन आहे त अमरीकी मुफ़ाद में मुआहिदो करण में कामयाब थी वेंदासीं। अबनाए हुर्मुज़ जो कंट्रोल अमरीका वटि आहे। अमरीकी सेंटकॉम दावा कई आहे त अमरीकी फ़ौज गैम्बिया जे झंडे वारे जहाज़ खे ईरान वञण खां रोके नाकारा बणाए वियो। नाकाबंदी जी भञकड़ी कंदड़ जहाज़नि खे नुक़सान पहुचाए वियो।

कतर आवने हुर्मुज़ मां गुज़रंदड़ बहरी जहाज़नि खां आरज़ी टूल टैक्स जी उगाड़ी खे जाइज़ करार ॾेई छॾियो। कतर जे नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अल रहमान अल सानी शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम खे ख़िताब कंदे चयो त आरज़ी टूल टैक्स उगाड़ी जाइज़ आहे, मुस्तक़िल बुनियादनि ते टैक्स उगाड़ी खे रद्द कयूं था। ईरान बारूदी सिंगनि जी सफ़ाई ऐं ॿियनि ज़रूरी मामलनि लाइ टूल टैक्स वसूल करे थो त कुझु अर्से लाइ उन मामले ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी विवाद बाबति फैसलो न करे सघियो। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बिना नतीजे ख़तम। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा। व्हाइट हाउस पारां चयो वियो त ईरान सां मुआहिदो अमरीकी मुफ़ादनि ऐं ट्रंप जे शर्तनि तहत ई मुमकिन आहे। उन खां अॻु अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जे पहिरीं नाकाबंदी ख़तम करण जो ऐलान कयो हो। सदर ट्रंप ॿिया मक़सद हासिल करण में सरगर्म आहे। अमरीका ईरान जे पहिरीं नाकाबंदी ख़तम न आहे कई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तफ़ा खामनई जे सलाहकार मोहसिन रज़ाई जो ट्रंप जे यूट्रन ते रद अमल। मोहसिन रज़ाई चयो त अमरीकी सदर सफारतकारी दौरान टियों भेरो धोखो ॾेई रहियो आहे। अमरीका तरफ़ां ॻाल्हियुनि में हद खां वधीक मुतालबा कया पिया वञनि। ट्रंप जे अमल साबित करे छॾियो त हू ॻाल्हियुनि में संजीदा न आहे। जंग जे ख़ात्मे लाइ बावकार फ्रेमवर्क तयारु आहे। वक़्तु अची वियो त ॿिए रद अमल ऐं लफ़्ज़नि सां पंहिंजी नियत साबित करे। ईरानी सदर जे कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी सां फोन ते राब्ते दौरान ॻाल्हि ॿोल। मसूद पज़ेशियान चयो त ईरान ईमानदारी सां ॻाल्हियुनि जो रस्तो अख़्तियार कयो। ज़रूरत आहे त ॿी धुर आलमी ज़िमेवारनि जी पासदारी करे। कुवैत में एयरबेस ते ईरानी हमले में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी ज़ख़्मी थिया। अमरीकी खाबू इदारे ब्लू बंक जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त ईरानी हमले में ॿ MQ-9 रिपीटर स्ट्राक ड्रोन्स खे सख़्तु नुक़सान पए थो। कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम फत ॾह मिसाइल खे तबाह करे छॾियो, पर मिसाइल जो मलबो अली अल सलीम एयरबेस ते किरियो।

0: पाकिस्तान के आलमी सतह ते अकेलो करण वाले मोदी के 10 साल वाली मुहिम बुरी तरह नाकाम थी वही। अरब मीडिया जो चवण है तो मोदी पाकिस्तान के दुनिया का परे करण वाली मुहिम में मुकम्मल तौर से नाकाम थो। पाकिस्तान अज वॉशिंगटन बीजिंग तेहरान ए रियाद से एक ही वक्त राबते में आए। पाकिस्तान खिते ए इलाकई मामलों से असरअंदाज थियणदड़ एक अहम तौर बन चुको है। पाक भारत शिकतान दौरान आलमी बयाने में भी पाकिस्तान की कामयाबी मिली। पाकिस्तान जा बांग्लादेश से लागापा भी बेहतर थे हैं। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू अठाल चौक वट खौफनाक हादसों चार जना फोत चार जख्मी तेज रफ्तार गाड़ी बिन गाड़ियों ए मोटरसाइकिल से टकराई वही चार जना फोत चार जख्मी फोतन में आर्मी के अकाउंट्स शोबे में मुलाजमत कड़ शिकारपुर वासी आमिर सुमरो भी शामिल। बे फोती की सुणप मोहम्मद फजल तौर कई वही बिन्हीं फोतन ए जख्मी की सुणप कई पी वे। पुलिस जो चवण है हादसे जो सबब बणचंदड़ गाड़ी के कब्जे में वी छो है। ड्राइवर फरार थी वो है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज

हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप जी? जी सुबह का सलाम हूँ आप सबको. और जैसा कि आप सुन रहे हैं जी मटिया नेटवर्क सर, आओ बात करें विद आर जी सना के साथ. अब प्यार से आवाज़ सुनने के साथ आपको सुबह का सलाम आप सबको पहुंच जाए मेरी तरफ से. तो जी कैसे हैं आप सब? और ईद गुजर गई है, ईद किसकी कैसे गुजरी है ज़रा ये भी बताना बाकी है. और कौन कौन उठ गया है, कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन नींद से आके अपनी खोल चुका है, जैसे नहीं खोले वो जाके मुँह हाथ धो लो और मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि दो घंटे हमारे पता ही नहीं चलते. जैसे कि अभी 20 मिनट गुजर गए हैं और जबकि हमारे थे ही नहीं, क्योंकि हम साथ नहीं थे इस 20 मिनट में. साथ थे भी लेकिन हम लोग बात करना स्टार्ट नहीं की थी, तो अभी हमने स्टार्ट कर दी है बात करना. तो जी कैसे हैं आप सारे? तो पहले तो ये बताएं कि ईद कैसे गुजरी, कहाँ गुजरी, और अपने ही ममालिक में गुजारी है कि अपने जो है जहाँ दूर दराज बैठे हैं ममालिक में वहाँ पर गुजारी है, और अगर जो करीब है घर वालों के साथ गुजारी है, या फिर अपने दोस्तों में गुजारी थी, ये

प्ले कर सकूं। प्ले करने का मतलब यही होता है कि यार आपके पसंद के सॉन्ग्स आपको सुनने को मिल जाते हैं, आपके साथ आपकी ही पसंद के सॉन्ग कोई और भी सुन रहा होता है तो आपको खुशी होती होगी, और बल्कि होती है ऐसे ही है। तो जी आपने क्या करना है मुझे मेरे सवाल के जवाब के साथ, जो मेरा सवाल होगा जो आपको लगता है इसका राइट आंसर है, आपने वो मुझे जवाब देने के साथ साथ अपने कोई पसंद सा अच्छा सा प्यारा सा अपने जैसा कोई सॉन्ग मुझे नाम कमेंट कर देना है, ताकि अगर आपका जवाब जो है राइट होगा तो वो मैं सॉन्ग जरूर प्ले करूंगी, और अगर अगर वो प्ले नहीं होता तो आप समझ जाएंगे भाई समझदार तो मुझसे ज्यादा है कि वो आपका इसका मतलब जवाब ठीक नहीं है। तो ऐसे ही है, अभी यहाँ पर हम लोग एक और सॉन्ग है हमारे पास मौजूद, तो सबसे पहले इस सॉन्ग से स्टार्ट लेते हैं अपने प्रोग्राम का। मेरे पास एक क्वेश्चन सॉन्ग है, जब्त ड्रामा है, स्टार्टिंग न्यू है, जून में आया था, फर्स्ट जून में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो मेरा ये था कि अगर मैं आज सुन रही हूँ कोई भी नया सॉन्ग, कोई भी ओस्टी हो, कोई भी सॉन्ग होता है तो वो मैं आपके साथ हमेशा सुन रही होती हूँ। तो ऐसे ही ये भी हम प्ले कर दिया है, प्ले कर दिया है, और सुनेंगे इसको भी आज भी साथ में हमेशा की तरह।

तो जी हम देख लेते हैं कि हमेशा की तरह आज भी हमें सबसे पहले कौन ज्वाइन करता है, हमें हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले कमेंट करते हैं, एसएमएस करते हैं, सकर के लिए कहते हैं मसरूर अहमद कराची से, आज सना जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सना जी, लास्ट संडे आप नहीं आए प्रोग्राम करने, बहुत मिस किया आपको, और ईद मुबारक हो आपको, ईद कैसी गुजरी आपको भी और आपकी ईद कैसी गुजरी। अच्छा जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मसरूर अहमद, आप बताएं आप कैसे हैं, और हमेशा की तरह आज भी अच्छा लग रहा है कि आपने सबसे पहले मुझे कमेंट किया है, 8 मिनट में आपने मुझे ज्वाइन किया है, मेरा वेट कर रहे थे, ऐसा ही हो सकता है। और बाकी आप मुझे कहते हैं मेरी ईद कैसी गुजरी, हुई मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी, और पहले दिन मैंने आप लोगों से बात करने के लिए आपके साथ मौजूद थी, लेकिन शायद आपको नहीं पता था या आपको आपने सुना नहीं था एफएम, तो वरना आपकी कॉल और एसएमएस मुझे ज़रूर आता है, मैंने कहा यार आज कैसे नहीं आया आपका, सबसे पहले तो हमेशा आपके कमेंट आ रहे होते हैं, एसएमएस आ रहे होते हैं, लेकिन उस दिन नहीं आया था, तो उस दिन मैंने लाइव कॉल पर बात की थी, सबसे बात की थी, और जिसकी मुझे कॉल्स रिसीव हो रही थी मैंने हर एक बंदे से बात की थी कॉल पर, और उसके अलावा एसएमएस पर भी बात की थी, मतलब कि एसएमएस हमने उसको रीड आउट किया था, उसके पसंद के सॉन्ग प्ले किए थे, ईद की बातें की थी बहुत सारी, लेकिन आप उस दिन हमारे साथ मौजूद नहीं थे, मिस तो किया था क्योंकि हर इंसान की जो कमी होती है वो कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता, तो इट्स रियल, ये बिल्कुल सच बात है कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि उस दिन आपकी कमी हमें महसूस हुई थी, जो बात है क्योंकि सबसे पहले कमेंट एक बंदे का देख रहे हो और वो ना आए तो उसकी तो कमी रहती है, तो अच्छा लगता है कि आप हमेशा की तरह मुझे सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, और आज भी बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे ही है आपकी कैसी गुजरी आप मुझे ज़रूर बताएं, मेरे जो सवाल है सवाल का जवाब बताएं, और सॉन्ग हम आप प्ले करेंगे अगर आपका भी आंसर जो है वो बिल्कुल राइट हुआ। ओके जी, तो अभी एक और मेरे पास सॉन्ग है, मैं चाहती हूँ कि वो प्ले करें, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हमें किसी और ने कोई और फेसबुक वगैरह पे ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको इससे पहले सबसे पहले बताती चलूँ कि सवाल मैंने अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग अभी तो सो रहे हैं, जो अभी तक नींद में है, जिसको मेरी आवाज़ जा रही है, उठा नहीं है, उठ गया है तो मुझसे बात करने के लिए अभी नहीं उठा, तो आँखें खोलें और जाके मुँह हाथ धो लें और मुझसे बात करें कि मैं अपना सवाल आपको बताने लगी हूँ कुछ ही देर में। लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगी कि आपने मुझे ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो परेशान नहीं होना है, मोबाइल उठाना है, टाइप करना है 03000113488, आपने मुझे जो है व्हाट्सएप के जरिए एसएमएस करना है, और लेकिन जो मुझे लाइव कमेंट करना चाहता है, एसएमएस करना चाहता है, एसएमएस करने के लिए आपने क्या करना है, मोबाइल को उठाना है और टाइप करना है 8881 पे एसकेआर लिख के विद योर सिटी नेम और अपने प्यारे से नाम के साथ आपने मुझे एसएमएस करना है, और मुझे बताना है कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दें, और उसके साथ अपने पसंद का कोई भी एक सॉन्ग का नाम बता दें, ताकि जो है अगर वो राइट होगा तो हम उसका आपका सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे। तो देखते हैं अभी कौन हमारे साथ मौजूद है और कौन हमें एसएमएस करता है, तो क्योंकि आज बहुत सारे सॉन्ग्स मेरे पास मौजूद हैं तो हम लोग जरूर प्ले करेंगे। यहाँ पर देखते हैं अभी हमारे साथ मौजूद हैं सक्कर से, सक्कर के लिए कहते हैं या अली की शादी बीबी फातिमा जहरान से, यकम जुलहज मुबारक, ईद मुबारक सिस्टर, बिग ब्रदर सदाकत हुसैन मिरानी साहब, बचल शाह मियानी सक्कर से, आप एंड फैमिली एंड एफएम 88 टीम एंड शो सुनने वालों को मुबारक, थैंक यू सो मच, आपको भी मुबारक, कैसे हैं आप, सदाकत हुसैन मिरानी आपने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, आई थिंक आप हमारे साथ ईद पे भी मौजूद थे, ईद की फर्स्ट डे भी मैं आप लोगों के साथ मौजूद थी ईद की बातों के साथ, और आज तो हमारे पास रेगुलर बातें होती हैं जो कि अभी हमारे सिर्फ 1.5 घंटा बचा,

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण, उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाए 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

कोई बचाने नहीं आता, जिसको डूबता देखते भी हैं हम और उसको बचाने नहीं जाते, ऐसा क्या है? तो जी पता लगाएं और मुझे भी बताएं और थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाएं भाई, उठे नाश्ता वाश्ता करें और मुझे बताएं कि आपने नाश्ते में क्या खाया था, और इसके अलावा मेरे सवाल का जवाब दें, और सवाल के जवाब देने के साथ अपने पसंद का कोई भी एक सॉन्ग का नाम मुझे ज़रूर SMS करें, क्योंकि अगर आपको सवाल का जवाब ठीक होता है तो वो सॉन्ग प्ले हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक था, ऐसे आपका पसंद का सॉन्ग प्ले हो गया है, और जिसकी सॉन्ग प्ले ना हो पाएगा तो वो समझ जाएगा कि यार उसका जवाब थोड़ा गलत था। ओके जी, तो आपने क्या करना है, मुझे सवाल का जवाब देना है और अपने पसंद का कोई सॉन्ग का नाम बताना है। तो यहाँ पर जब तक देख लेते हैं अभी हमारा

और मुझे ज्वाइन करने के लिए, मुझे एसएमएस करने के लिए आपने परेशानी होना, आपने क्या करना है, अपना मोबाइल उठाना, टाइप करना 888 1 PS क्या लिखी विथ योर सिटी नेम, आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं और लाइव एसएमएस आपका मुझे आएगा तो मैं यहाँ पर सबके सामने रीड आउट करूंगी, आपके पसंद का सॉन्ग भी चलाऊंगी, आपके कमेंट को सबके सामने बताऊंगी भी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो मुझे फेसबुक से सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुनने के लिए आपने GFM88 का पेज आपने ओपन कर लेना है, आपको मेरे नाम का फ्लायर दिख जाता है सना विद आरजी सना के साथ, आओ बात करें। तो आपने बिना देर किए मेरी आवाज़ सुनने के साथ उसको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है यहाँ पर कि भाई मेरा पेज कौन लाइक कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है और कौन कमेंट कर रहा है। तो आपने कमेंट करना है और कमेंट करके मुझसे बात करनी है, मुझसे बात कर सकते हैं आप लोग कमेंट के जरिए। तो आपने फेसबुक को ऑन करना है, GFM88 GFM का पेज आपने ओपन करना है विद आरजी सना के नाम से, आओ बात करेगा पहले फिलहाल आपको दिख जाता है। देर किए बिना आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मुझ तक ज्वाइन हो जाएं और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम जरूर मुझे बताएं ताकि आप लोग भी सुने और आपको पसंद का सॉन्ग हम भी सुने।

तो जी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं फेसबुक पे हमें ज्वाइन करते हैं, नूर हुसैन तोनियो हमें कहते हैं, नूर हुसैन तोनियो फ्रॉम लाड़काना, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस एंड टेक केयर, आपका शो बड़ा जबरदस्त है, थैंक यू सो मच नूर हुसैन तोनियो, आपने मुझे ज्वाइन किया है लाड़काना से, आप जो लाड़काना से ज्वाइन कर रहे हैं बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, और मेरे सवाल का जवाब जरूर दें मुझे, मैंने आपसे सवाल किया है, अगर आपने मेरा सवाल नहीं सुना है या सुन लिया है तो मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बताना है वो क्या है जिसे हम डूबता देखकर भी कोई बचाने नहीं जाता, अगर हम भी उसको देख रहे हैं तब भी उसको बचाने नहीं जाते, कोई भी उसको देख रहा है डूबता हुआ और कोई भी उसको बचाने नहीं जाता, तो पता लगाएं और मुझे भी बताएं कि ऐसा क्या है भाई जिसको डूबता हुआ देखते भी हैं हम तब भी बचाने नहीं जाते।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307359212
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GFM 94

करेंगे क्योंकि आज हमने सुबह का आगाज बहुत ढंग से किया था और क्योंकि फैजाली की आवाज़ से अगर हम ना सुने तो हमारा दिन गुजरता नहीं। मैं यही बोलूँ आज कुछ तो कमी है तो वो फैजाली की आवाज़ की कमी है। हम सब उनकी आवाज़ में कोई सॉन्ग प्ले नहीं किया ना तो इसलिए हमें लग रहा है, तो मुझे तो लग रहा है अब आपका पता नहीं, अगर आप लोग मुझे बताएं तो पता चलेगा ना भाई। जी फैजाली की आवाज़ में ज़रूर सॉन्ग प्ले करेंगे और आपका सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है।

लगे हैं फाइजर के वज में एक सॉन्ग प्ले, उसके बाद जाएंगे हम न्यूज ब्रेक की तरफ. और न्यूज ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे वापस आके मैं अपने सवाल का जवाब लोगों से पूछने लगी तो हूँ. जिससे अपने सॉन्ग प्ले करवाने हैं वो मुझे मेरे सवाल का जवाब देता जाए, मुझे अपना अपने पसंद का सॉन्ग सुनता जाए. तो जी मैं आपको जैसा कि बताऊँ कि मेरा सवाल रिपीट करती हूँ, रिपीट करने के बाद हम सॉन्ग को करेंगे. बोले तो मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने मुझे बताना है कि भाई वो क्या है जिसको डूबते हुए देख कर भी हम बचाने नहीं जाते. तो बताएं कि ऐसा क्या है वो जिसको डूबता हुआ देखते भी हैं तब भी बचाने नहीं जाते. तो जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए कि ऐसा क्या चीज़.

सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान।
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

तो जी आप सुन रहे थे हम लोग सोने दे चुड़ी, ये सब मैंने आप लोगों के लिए प्ले किया था क्योंकि आपको पता है कि भाई आप सब आज विन हो चुके हैं, मेरा सेगमेंट को विनर कर चुके हैं। तो आपको पता है कि यार अगर आप लोग मेरा सेगमेंट विन कर जाए मुझे बहुत ज़्यादा दिल खुशी हो रही है कि आप लोग सब जीत गए। उतने सारे सॉन्ग्स हैं, हम सबके सॉन्ग प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई ना कोई नाराज़ हो जाती, ये मैं नहीं चाहती। इसलिए मैंने

तो मैं चाहती हूँ कि एक और सॉन्ग में प्ले करते हैं आप सबके लिए मुनव्वर मलाई का सॉन्ग है, तो जी कर दिया प्ले, सॉन्ग को भी सुन लेते हैं और आप सबके लिए डेडिकेट करती हूँ मैं ये सॉन्ग, क्योंकि आपने मेरे सेगमेंट बन गया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सारे के सारे आज बिल्कुल ठीक आप लोगों ने जवाब दिए हैं।

और क्योंकि आपको पता है कि ये कोई भी सॉन्ग होता है तो मैंने तो डेडिकेट आप सबको करना था, क्योंकि इसलिए कि भाई आप लोग मेरा सारा आज का सेगमेंट मेरा विन कर चुके हैं, और इससे अच्छी तो और मेरे लिए कोई बात हो ही नहीं सकती कि आज के सबने भैया विन कर दिया। एक दो बंदे ऐसे हैं जिनका थोड़ा जवाब गलत था, तो लेकिन मैंने उन्होंने कोई सॉन्ग बताई थी, तो सॉन्ग तो मैंने आज इसलिए किसी का भी प्ले नहीं किया कि भाई अगर मैं किसी एक का करती या दो का करती या सबका करती, एक दो रह जाते टाइम के सूरत में, ये नहीं कि मैं खुद से प्ले नहीं करना चाहती, अगर टाइम की सूरत में वो सॉन्ग रह जाते तो फिर आप लोग मुझे समझते यार आपने हमारा नहीं प्ले किया, हम जो कि नाराज किए, तो ऐसे कमेंट करने से बेहतर था बंदा अपने पसंद के कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट करे। तो मैंने अपने पसंद के सॉन्ग आपको डेडिकेट किए हैं, लेकिन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं, कहती हैं सक्कर अस्सलाम वालेकुम, सना बाजी कैसी हो, आपका शो जबरदस्त है, आपके कंपेयरिंग लाजवाब है। आजाद ग्रुप से सैयद इमदाद शाह बुखारी विद माय बेस्ट फ्रेंड कामरान महेसर, ओके जी, और आप दोनों को मेरा सलाम हो। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कि आप कैसे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं आजाद ग्रुप से, ओके जी। तो जी आप लोग कैसे हैं और ईद कैसे गुजरी, कहाँ गुजारी ईद और बकरे शकरे आपने सारे अकेले खा लिए, और इतने दिनों बाद आप पांचवें दिन, आज पांचवा दिन है ना, तो आज आप मुझे आके बोल रहे हैं ईद मुबारक। अच्छा चलें चलें खैर मुबारक, आपने पहले दिन असली बात की कि भाई जो है ऐसा ना हो कि ईद के साथ हमें ईद का जो गोश होता है वो देना पड़ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, पांचवें दिन आपको याद आइए, ओके जी कोई मसला नहीं। अच्छा जी सॉन्ग मैंने सबके लिए आपके लिए प्ले कर दिया था, आपने मेरा सवाल सुना नहीं, आपको हो गई है देर मुझे ज्वाइन करने में, आप इससे पहले पता नहीं कहाँ गुम थे, मुझे तो नहीं पता, शायद आप ईद ही आज ना मना रहे हो ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जितनी देर में आपने मुझे ज्वाइन किया, आपको पता है कि मेरा जो है आपके साथ होता है पूरा सुबह 11 से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ पूरे पूरे 2 घंटे के लिए, तो जिसमें से सिर्फ हमारे पास आधा घंटा मौजूद है, और आधे घंटे के अंदर हमने सॉन्ग्स ही प्ले करने हैं और सॉन्ग्स बहुत मजे मजे वाले प्ले होने हैं, तो आपने सोचा बस सॉन्ग्स प्ले करते हैं और सॉन्ग सुनने चलते हैं, तो वही नई सॉन्ग सुनने थे तो आपने तो वैसे भी सुन लेने, मुझसे बात करने अगर आप आते हैं तो जान भी ज्वाइन क्या करें, अच्छा लगता है सबने।

0: मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे चलने देर से सही ज्वाइन तो किया, ऐसे ही आपने मुझे हमेशा ज्वाइन करते रहे, हर संडे रहता है आपका मेरा साथ 11 से 1 बजे तक, तो ऐसे ही नेक्स्ट संडे भी मैं मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों का। तो जी यहाँ पर टाइम होता है वहाँ पर एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे वापस आके करेंगे बाकी की बात। जब तक रखें अपना ख्याल और रहे मेरे साथ, तब कहीं कहिएगा मत।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर,
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: एलोवेरा फैन
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

अबनाए हुर्मुज़ जी नाकाबंदी बरकरार आहे। ईरान सां मुआहिदो थियो त अबनाए हुर्मुज़ खे खोलियो वेंदो। हुन जो दारो मदार ईरान ते आहे। कहिड़े रस्ते जी चूंड करे थो? मुआहिदो थी वियो त अबनाए हुर्मुज़ टूल फ्री रस्तो हूंदो जेको सॼी दुनिया इस्तेमाल करे सघंदी। अमरीकी जंग वारे वज़ीर पीट हेगसेट जो सिंगापुर में ख़िताब। संदसि चवण आहे त जंगी कार्रवाई ॿीहर कहिणी पई त कंदासीं। यकीन आहे त अमरीकी मुफ़ाद में मुआहिदो करण में कामयाब थी वेंदासीं। अबनाए हुर्मुज़ जो कंट्रोल अमरीका वटि आहे। अमरीकी सेंटकॉम दावा कई आहे त अमरीकी फ़ौज गैम्बिया जे झंडे वारे जहाज खे ईरान वञण खां रोके नाकारा बणाए वियो। नाकाबंदी जी भंजकड़ी कंदड़ जहाज़नि खे नुक़सान पहुचाए वियो। अबनाए हुर्मुज़ जो मुकमल कंट्रोल ईरान वटि आहे। ईरान जी बिना इजाज़त ऐं मुक़रर कयल रूट्स खां हटी करे अबनाए हुर्मुज़ खे सफ़र करण जा नतीजा ख़तरनाक हूंदा। ईरान ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी फ़ौज जो चवणु आहे त समूरो वापारी जहाज ऐं आयल टैंकर्स ईरान जी इजाज़त सां ई अबनाए हुर्मुज़ खां गुज़री सघनि था। जेको ईअं न कंदो उहो पंहिंजे ऐं ॿियनि जहाज़नि लाइ नुक़सान जो सबबु बणिजी सघे थो।

0: बॉडी रहे कंफर्टेबल, माइंड रहे फ्रेश, आपकी डेली आउटपुट डबल फॉर अ बेटर पाकिस्तान। पाकिस्तान्स फेवरेट ब्रांड बॉस।
1: चेरी है कूलर जिसकी हर थ्रो में है दम, आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए, गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। चेरी है कूलर्स, कूलर्स हर दम।
2: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, मजबूत तने, लंबे और सेहतमंद मुंजरों के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला। सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर के रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 03 85 569 0300 33 8569।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर

0: आपते लाए हाकिम अली जिस्कानी
1: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03019155724।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: बेहुनर नहीं, हमें इतनी तमीज है, जन्नत अली वली की गली की कनीज है, और तुम मुत्तकी हो जाओ कोई और राह लो, कौसर तो एक मलंग के पीने की चीज है।
1: ये कह के हमने शेख से पीछा छुड़ा लिया, दुनिया तेरे लिए है हमारा हमारा।

मुश्किलात के रस्ते में हार के, आ बदनसीब देख अली को पुकार के, मरहब का कत्ल क्या कोई खैबर का कत्ल था, फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के।

ये सुबह काट दो जिस्मों जहाँ काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे, जिक्र शाह नजब से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे, लेके राख मेरे जिस्म की, सालिमो रख के हाथों पे अपने उड़ा दो मुझे, एक दो दिन नहीं सुबह मैशर तलक, जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी।

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 196 851।

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0333-85-5309-0300-5569।
1: अदा
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा
3: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये नेचुरल अज्जा से तैयारशुदा होने वाला प्रोडक्ट है, जैसे कि इसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, मिल्क मौजूद है, यानी कि ये सब चीजों मिली करे जिकवाने तमाज लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तैयार कई है। आई व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तमाजी जल्द के फ्रेश बनाई दिया है, गोरो बनाई दिया है, हर किस्म के निशानन के खत्म कर दिया है। आई तमाज चेहरे ते झुरियो आए, दाग धब्बा आए, वे सब चीजों खत्म थी वेंदे, तमाजी स्किन जिकाना बेरोनक साफ शफाफ आई खूबसूरत थींदी आहे। आई तमा डिसंदा आयो त बाबा वाकी फर्क त आहे, फर्क आहे बाबा जडे दा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कदा। सो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तमा नालो वठी करे पांजे परचेस कयो पांजे करीबी जनरल स्टोर ता, अगे नथी मिली त तमा जे लाइ नंबर आहे जनाब 03157990595। ही नंबर आहे तव्हांजी आसानी जे लाइ, तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था ऐं उन्हनि खां वञी वठी अचो सर, वठी अचो ठीकु आहे। उन खां अलावा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हां अगरि चाहियो था त कोई सोप हुजे, कोई फेस वॉश हुजे त बिल्कुल जी मौजूद आहे। व्हाइट एज जो साबुण बि आहे, व्हाइट एज जो फेस वॉश बि आहे। अगरि तव्हां सोप लॻाईंदा त तव्हां व्हाइट एज जो ब्यूटी सोप लॻाईंदा, अगरि तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा त व्हाइट एज जो फेस वॉश लॻाईंदा, जेको जनाब वाइटमिन सी सां तयार थियल आहे। वाइटमिन सी तव्हांजी स्किन जे लाइ ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे, तव्हांजी स्किन खे यंग बणाईंदी आहे, तव्हांजी स्किन खे ग्लो ॾींदी आहे, तव्हांजी स्किन खे हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रखंदी आहे। सो तव्हां व्हाइट एज जो वाइटमिन सी वारो फेस वॉश लाज़मी ट्राए कजो अगरि तव्हां फेस वॉश इस्तेमालु कंदा आहियो। उन खां अलावा अगरि असां ॻाल्हि कयूं व्हाइट एज लवली क्रीम जी, त व्हाइट एज लवली क्रीम उन्हनि सभिनी माण्हुनि जे लाइ आहे जेके माण्हू कोई अच्छी फेयरनेस क्रीम जे न तलाश में आहिनि। कोई बि अच्छी फेयरनेस क्रीम अगरि तव्हांखे नथी मिले, अची सां मुराद माना भली अगरि कोई भली फेयरनेस क्रीम तव्हां ॻोल्हियो पिया आहियूं तव्हांखे नथी मिले, तव्हां मतिलबु जेको आहे न काफ़ी टाइम खां फेयरनेस क्रीम ॻोल्हियो पिया का सुठी वारी हुजे, त व्हाइट एज लवली क्रीम तव्हांजे लाइ मौजूदु आहे। रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स जो फार्मूलो आहे जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन्स जा कैप्सूल एड कया विया आहिनि, जंहिंमें वाइटमिन B3 आहे, वाइटमिन ई आहे, वाइटमिन डी आहे, वाइटमिन सी आहे, खोड़ सारा वाइटमिन्स जेके तव्हांजी स्किन जे लाइ ज़रूरी आहिनि। उन खां अलावा सिर्फ़ु ॻाल्हि हिते ख़तमु नथी थिए, इन जे अंदरि जेको आहे न सनस्क्रीन बि एड कयो वियो आहे, यानी कि तव्हांखे ख़ूबसूरती बि मिलंदी, तव्हांजे ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त बि थींदी। अगरि तव्हांजी स्किन जेका आहे तव्हां उस में निकिरंदा आहियो त तव्हांजी स्किन थोरी सांवरी थी वेंदी आहे, टेन पइजी वेंदी आहे, या फिर तव्हां सोचींदा त बाबा को अहिड़ो प्रोडक्ट हुजे जेको असां लॻायूं त सोणा बि थी वञूं ऐं असांखे उस खां जेको आहे न उहो बि जेको आहे न हिफ़ाज़त मिली वञे, त व्हाइट एज लवली क्रीम तव्हांजे लाइ परफेक्ट क्रीम साबित थींदी। सो व्हाइट एज लवली क्रीम तव्हां ज़रूरु ट्राए करे ॾिसजो, तव्हांखे सफ़ा भली लॻंदी ऐं हिन जे अंदरि जेको आहे न एॾो VIP शिमरी इफ़ेक्ट बि अथसि, तव्हां जॾहिं लॻाईंदा त तव्हांजी चेहरे जी स्किन सफ़ा चमकंदी ऐं तव्हां पाण महसूसु कंदा वाकई बाबा प्रोडक्ट में दम त आहे। उन खां अलावा अगरि तव्हां एकनी खां परेशान वेठा आहियो, दाणा तव्हांखे नथा छॾनि, इहे जेके दाणा आहिनि तव्हांखे बेज़ार कयो आहे, सो डॉक्टर पिंपल जो एंटी एकनी ट्यूब मार्केट में अची वियो अथव। डॉक्टर पिंपल नाले सां तव्हां एंटी एकनी ट्यूब वठंदा, किथां बि घुरंदा त तव्हांखे आराम सां मिली वेंदो, जेको तव्हांजी एकनी सां फाइट कंदो आहे, तव्हांजे चेहरे जा एकनी ख़तम थी वेंदा, तव्हांजे चेहरे जा जेके पोर्ट्स हूंदा आहिनि खुलियल हूंदा आहिनि, ओपन पोर्ट्स हूंदा आहिनि उहे बंदि थी वेंदा, तव्हांजे चेहरे ते ब्लैक हेड्स आहिनि, वाइट हेड्स आहिनि, या फिर तव्हांजे चेहरे ते निशान आहिनि, धक लॻण जो निशान आहे, कोई कट जो निशान आहे, इहे सभु निशान ख़तम थींदा जॾहिं तव्हां डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब इस्तेमालु कंदा। सो ही तमामु ज़बरदस्त क्वालिटी जा प्रोडक्ट्स आहिनि, तव्हां ट्राए करे ॾिसजो ऐं डॉक्टर पिंपल ट्यूब खे लॻाइण जे तरीक़ेकार अगरि मां तव्हांखे ॿुधायां त डॉक्टर पिंपल जेको ट्यूब आहे इहो तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु कजो, छो त राति जी टाइमिंग सफ़ा बेस्ट हूंदी आहे, राति जे टाइम तव्हां लॻाए करे सुकून सां सुम्ही पओ, एॾो VIP आहे थधो थधो तव्हांखे महसूसु थींदो, गर्मी जे मौसम में त वाकई अहिड़ो तव्हां प्रोडक्ट ॻोल्हींदा हूंदा जेको ईअं तव्हां लॻायो त थधो थधो महसूसु थिए बिल्कुलु जी। डॉक्टर पिंपल जो ट्यूब आहे जेको तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे थधो थधो फील थींदो ऐं उन खां अलावा राति जे टाइम तव्हां जेको आहे न सभिनी कमनि मां फ्री थी पंहिंजा चङे तरीक़े सां हथ धो, पंहिंजो फेस वॉश कयो, उन खां पोइ हथ जेके न क्लीन हुजनि तव्हांजा ॾाढा ज़रूरी आहिनि, हथनि खे चङे तरीक़े सां क्लीन कयो, पोइ तव्हां पंहिंजे चेहरे ते जिते जिते दाणो आहे, निशान आहे, जिते जिते कट जो निशान आहे, जिते जिते तव्हां चाहियो था त हीअ चीज़ ख़तम थियल हुजे असांजे फेस तां, त तव्हां डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब अप्लाई कयो। अप्लाई करण खां पोइ तव्हां सुकून सां सुम्ही पओ, तव्हां सुबुह उथंदा त तव्हांखे वराए पंहिंजो फेस वॉश करिणो पवंदो, ऐं ईअं बि न आहे त तव्हां जॾहिं डॉक्टर पिंपल जो ट्यूब पंहिंजे चेहरे ते इस्तेमालु कंदा न
त तव्हांजी स्किन ते ईअं चिपचिपो बि महसूस न थींदो. सफ़ा वी आई पी आहे, तव्हां लॻाईंदा त तव्हांजी स्किन जे अंदरि जज़्ब थी वेंदो. ऐं सफ़ा वी आई पी आहे बाबा, मतिलब मां जेतिरी तारीफ़ कयां घटि आहे, छो त असां पाण इस्तेमालु कंदा आहियूं. जिन माण्हुनि खे किनी आहे उन्हनि खां मां हिन जो रिव्यू वरितो त ॾाढो सुठो रिव्यू मिलियो आहे. सो तव्हां बि ट्राए कजो. जिन माण्हुनि खे दाणा आहिनि ऐं दाणा तव्हांजी जान था छॾनि, त डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब तव्हां लाज़मी ट्राए कजो, ठीकु आहे. उन सां गॾोगॾु जेको आहे न, तव्हां वाइट एज जो साबुण लॻाए सघो था, तव्हां वाइट एज जो फेस वॉश लॻाए सघो था. ऐं अगरि तव्हां सुठी काई बि नाइट क्रीम इस्तेमालु करणु चाहियो था, त तव्हांजे लाइ वाइट एज जी ब्यूटी क्रीम मौजूदु आहे. हीअ तमामु प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हांजी ख़ूबसूरती खे न सिर्फ़ु वधाईंदा बल्कि तव्हांजी ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त बि कंदा आहिनि. छो त बाबा, मार्केट में खोड़ सारा तव्हांखे प्रोडक्ट मिली वेंदा, पर तव्हां प्रोडक्ट उहो पंहिंजे लाइ सिलेक्ट कंदा कयो जेको ऑल एस्की टाइप जे लाइ हुजे ऐं जेको नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल हुजे ऐं जेको तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदो रहे ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त बि करे. सो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो, सुहिणा थी वञो, ऐं पोइ असांखे ॿुधायो त तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो आहे. अगरि तव्हांजे एरिया में नथो मिले, त पोइ तव्हां डायल कंदा 03-15-799-0595. ठीक हो गया, ये नंबर डायल कीजिए और उसके साथ साथ अपने एरिया में अवेलेबल कराते जाइए. और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि क्या आप भी अगर अपनी पिक्चर्स लेते हैं तो क्या अपनी पिक्चर्स के ऊपर 250 फिल्टर्स लगाने वाले इंसान हैं? बताइए जरा. बहुत ज्यादा फिल्टर्स लगाते हैं नहीं, मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि अपने फोटो पर फिल्टर नहीं लगाते होंगे. ओरिजिनल कैमरा में फोटो कढंदा हूंदा, ॿुधायो छा हुई तव्हां आहियो या न? ओके जी, सो तव्हांजा गाना आहिनि, तव्हांजी फरमाइशूं. अॼु मां मतिलबु कोशिशि कई आहे त मां तव्हांजा सिर्फ़ु फरमाइशनि वारा गाना लॻाईंदा, मां पंहिंजी पसंदि जो हिकिड़ो बि गानो लिस्ट में न लॻाईंदा. सो हीउ वारो सॉन्ग असां स्टार्ट करे छॾियोसीं हिन वारे सॉन्ग सां. हिन गाने जी फरमाइश असांखे कंहिं प्यारे भाउ करे छॾी आहे. सो ॾिसूं था तव्हांजा मैसेज, पढ़ूं था केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे. पर गानो आहे ॾाढो ख़ूबसूरत, अॼु जी शाम तुंहिंजे नाम.

डॉक्टर सखावत अली राजपर कहते हैं कि को भी साइड इफेक्ट न कंदो क्रीम जेकॾहिं छॾिजे त बिल्कुल भी न कंदो। इहो त मां बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदा त अगरि तव्हां वाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो पिया ऐं वरी तव्हां इहो सोचो था त अगरि असां क्रीम छॾींदासीं त असांखे मथां को नुक़सान पहुचे असांजी स्किन ते को साइड इफेक्ट अची वञे त अहिड़ो को बि सीन न थींदो छो त हीअ नेचुरल अज़ा सां तयार थियल प्रोडक्ट आहिनि। तव्हां ईज़ीली लॻाए सघो था जॾहिं दिलि चवे तव्हां छॾे सघो था छो त जेको तव्हांखे निखार मिलंदो जेका ख़ूबसूरती मिलंदी उहा हमेशह जे लाइ हूंदी।

ओके जी, दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं मेरी स्वीटी, आप कैसी हैं? वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो वासा भाई। और दर्द दिल कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह आ गई प्यारी, जीजी में आ गई देखो हिदायतुल्लाह कहते हैं सिद्रा आरजे का मतलब मैंने ये निकाला है, आरजे का मतलब रेडियो, अच्छा आर का मतलब रेडियो, जे का मतलब जान, मतलब सिद्रा आप रेडियो की जान, क्या बात है। और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाजरा गर्मी में ऐसी जो कम करने ला, अच्छा यानी कि अगर आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे तो वाकई ठंडक का एहसास होता है, तो बस वाकई आप मौजूद रहिए। और कहते टॉपिक मो बुद्धो ही कोन टॉपिक हानि तमाम बुद्धि छड़ियो हुंदो, अच्छा तमा उही आयो जेकी अगर पांजो फोटो कढंदा आइन पिक्चर कढंदा आइन तो उन ते 250 फिल्टर लगाईंदा आइन, छा तमा उही आयो बुधायो तो सही खबर पवे तो जेके ही माण्हू जेके अॼुकल्ह असांजे आसपास घुमन पिया, जेके अगर फोटो उन्हनि खे चयो वेंदा त बाबा फोटो कढो असांजो या फिर असां उन्हनि जो फोटो कढंदा आहियूं त हू चवंदा आहिनि त बाबा इहो फिल्टर न बीबी असांखे अधु कलाक त फिल्टर सिलेक्ट करण में लॻी वेंदो आहे सो तव्हां सां बि इहो मसलो आहे या फिर न, ख़ासि करे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके वरी फोटोग्राफर हूंदा आहिनि उहे वीचारा ॾाढो बेज़ार हूंदा आहिनि हिन मसले जी वजह सां। अनवर भाई छा था चओ, बिल्कुल जी मोहबतूं आहिनि तव्हांजूं, अच्छा दर्द दिल कहती है कि ज्यादा नहीं लगाती मैं फिल्टर, मैं तो वाइट एश लवली क्रीम लगाती हूँ, आए हाय ये हुई ना बात। अच्छा नूरी संतनी भाई हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम समंदर पार ओखी जी, और क्या कहते हैं सिद्रा गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, लव ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और आपके नसीब अच्छे करे, आमीन जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अनवर भाई कहते अदी सागी गाल कमेंट पड़ी आखिर में चवंदी आए वाइट एश लगायो हा त पोइ वाइट एश लॻायो न जीअं तव्हां सुहिणा थी वञो, इन में बि त तव्हांजो फ़ाइदो आहे, भला ॻाल्हि थोरी बसि सम्झण वारी आहे।

साईवा वाह साईवा ॾाढो भलो गानो अब्दुल्ला भयो हमारे साथ मौजूद के शो उदास वेठो आही खुशीअ जो मौको आहे खुशीअ जो इज़हार कर बस तू न उन बेवफ़ा खे याद कर मंज़ूर सकरानी जो कलाम त हलाइजो अॼु जी शाम अब्दुल्ला भयो ई गानो तव्हांजे नाले

0: जी व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो तव्हां ॿुधो पिया व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती वधे पई अली अकबर बिरोही भाउ सां गॾु मौजूदु आहिनि सकरनि खां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो भाउ मां सफ़ा ठीकु आहे तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो मज़े में सुमाटू गोपांग सां गॾु मौजूदु आहिनि हाय वालेकुम अस्सलाम मां ठीकु आहियां और तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया कंबर सिटी खां गानो चयो आहे मां कोशिशि कंदमि तव्हांजो गानो हलाईंदासीं ठीकु
1: आहे
0: वासु भाई तव्हांजो गानो बि हलायूं था बाबा सबर कयो अच्छा प्रेमचंद हमारे साथ हैं हेलो प्रेमचंद भाई कैसे हैं ठीक ठाक हैं चाचा खाले झुणी जो लिखते हैं कि बस लोग इकट्ठा होने के बावजूद भी एक दूसरे के करीब नहीं होते और बस लोग जुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं यह तो हकीकत है

सुमार टू गोपांग कहते हैं कि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाओ, सिदरा की तरह हो जाओ सफा प्यारी प्यारी, तमाम भी लगायो नी। और हिदायतुल्ला कहते हैं कि तुम ब्रेक पर जाती हो और मैं टिकटॉक पर, बस इतना फर्क है तुम में और मुझ में। अच्छा, सखावत अली राज पर हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते कि आयो अधिक खुश आयो, कल अभी मैसेज कयो हुयो त गानो मुधरायो, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। बिल्कुल इन गाने ला तव अदा भा, थोड़ो सबर करणो पवंदो, ठीक आहे? ऐं तव्हांजो गानो बि हलाईंदासीं। ऐं चओ था आदि तूं पाण क्रीम हणे थी? हा हा हणा थी, तॾहिं त तव्हांखे ॾिसां थी। सनौला बरोई हमारे साथ मौजूद ही, वालेकुम अस्सलाम सनौला, छा हाल तव्हांजो, ख़ुशि आहियो? नोरी संतनियो भा कहे थी अदी वाइट एज की लवली क्रीम यूज कयूं था, बिल्कुल जी कयो कयो कयो सब कयो। वफा मीर मुनवर अली हमारे साथ मौजूद हैं जी, वालेकुम अस्सलाम भा। चाचा खालिद कहते मेरी डीपी विदाउट फिल्टर्स यू कैन टेक, वाह सही वाह चाचो तो चिमके तो। चाचा सची सची बुधायो छापिया लगाए अजकल एडा चमको पया।

अच्छा किशोर भाई के टॉपिक डीपी ज़ूम करे दिसो आऊं कुछ नथो चवा बाकी हां टिकटॉक ते फिल्टर हणदो आया कूड़ कोनी अला चलो ये आप सुठी गवे से टिकटॉक ते फिल्टर्स मानो वैसे ही जाम लगाईना है और डीपी माशाल्लाह भली तो अरे जीशान अली राहुजा तमास से गड मौजूद आयो मोहब्बतियों तांजे प्रोग्राम उदो पया व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगायो पया कोन यो बुधाय जो अगर तमा फेयरनेस क्रीम लगाण चायो था तो तमा चला व्हाइटिश ही लवली क्रीम मौजूद हव ये व्हाइटिश ही लवली क्रीम तो बाबा तमा सबनी जला डाडी जरूरी आहे छो त नाइट क्रीम तो मतलब कोई कोई लगाइनो पर फेयरनेस क्रीम तो हर कोई लगाइनो आए सो व्हाइटिश ही लवली क्रीम तमा लाजमी ट्राई करे दिस जो छो त व्हाइटिश लवली क्रीम विटामिन से भरपूर आहे सनस्क्रीन भी एड कयो वयो अथस तमा जे खूबसूरती चला सो तमा ट्राई करे दिसो तमा के मजो अची वेंदव आई तमा भी सा फेयरनेस क्रीम में के सफा गुड बाय करे छडीना सो लाजमी तमा व्हाइटिश लवली क्रीम ट्राई करे दिसो उनखा अलावा तमा डायल कयो 03-1579-0595 आई हाने हि टाइम थियो आए त असा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठू था ठीक आ न्यूज हूं उन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूं जल्दी वापसी तुम्हारी मोटिंदी तुम इतने वेठा हो मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट ए

0: तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तआवुन सां पेश कयो वियो।
2: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437
5: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ
6: 0385-569-8559।
7: छो परेशान आई
6: अदा? नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे
7: अदा? दुकान जी मशहूरी कराई अथई
6: न अदा?
8: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
6: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
7: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
8: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88.8 माचूदी हमारे साथ जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों को बताते हैं कि आप किस तरीके कार को फॉलो करके अपनी खूबसूरती को और ज्यादा जो है ना वो बढ़ाते जाते हैं। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं तो लगाते जाइए जनाब। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होनी चाहिए तो उसके लिए आप डायल करते हैं 03-15-799-0595 ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइटिश एंड डी स्किन के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। इसी के साथ साथ मैंने पहले आप लोगों को बताया व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अभी सर मैं आप लोगों को बताऊंगी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए इतनी सी बात आप लोग सबसे पहले जान लें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, इसके साथ साथ आप लोगों को डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वैसे ही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं, एक डी स्किन ब्यूटी क्रीम और दूसरा डी स्किन फेस वॉश। ये दोनों चीजें हैं और बहुत ही लाइट वेटेड फार्मूला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है ना ऐसी बहुत सारी आपने नाइट क्रीमें लगा कर देखी है जो कि बहुत ज्यादा जो है ना वो ऐसा होता है कि जब आप लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है ना वो मजीद जो है ना पता नहीं अजीब सी हो जाती है, तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आप लोगों की खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ती है बल्कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है वाइटामिन ई बीड्स से। वाइटामिन ई बीड्स जो है ना, ये फार्मूला पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ दो तीन प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद है और दो तीन प्रोडक्ट्स में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल है। तो वाइटामिन ई बीड्स है, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ तैयार की गई ये एक जबरदस्ती क्रीम है जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के नाम से अवेलेबल है। और इसके साथ आपके चेहरे पर अगर रिजल्ट की बात की जाए तो आपके चेहरे पर सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल के बाद ना वो परफेक्ट सा रिजल्ट लाने वाला प्रोडक्ट है। तो दो रातें आप इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स हों वो खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा आपके चेहरे पर जो है ना वो अजीब से निशान आते हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन ग्लोइंग बन जाती है, ब्यूटीफुल बन जाती है सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से। तो दो रातें आप इस्तेमाल करके देखिए, अपनी खूबसूरती को बढ़ता हुआ देखिए और साथ में आप इस्तेमाल करेंगे जी स्किन फेस वॉश डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि आप लोगों की स्किन को हाइड्रेट करता है। आपके चेहरे पर जो ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, आपके चेहरे पर जो है ना जितने मसले हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए जनाब डॉक्टर से रिकमेंड की गया एक प्रोडक्ट है जो कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि डॉक्टर जिसकी तस्दीक कर चुका होगी ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल लगा सकते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल लगा सकते हैं। डॉक्टर से ये तस्दीक शुदा प्रोडक्ट है और साथ में आप डी स्किन फेस वॉश भी अप्लाई करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश जो है ये दोनों चीजें आप साथ में लगाइए। रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे क्रीम और बाकी फेस वॉश आप दिन में लगा सकते हैं, रात में लगा सकते हैं, किसी मरतब आप अपना फेस करना चाहते हैं फेस वॉश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर लाजमी जो है ना वो अवेलेबल कराते जाइए ताकि आपके एरिया में भी मिलते रहें और ऐसा ना हो कि आप कहीं दूर जाएं तो ही आपको ये प्रोडक्ट्स मिले। तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से नाम लेकर तलब कीजिए और आपको इजीली मिल जाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। लगाते जाइए और खूबसूरत होते जाइए। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछा था कि आप मुझे बताएं कि क्या आप भी वो हैं वो इंसान जो कि अपना फोटो निकालते हैं तो 250 फिल्टर्स लाजमी इस्तेमाल करते हैं। भाई फिल्टर्स का जमाना जो है वो चल तो काफी ज्यादा रहा है लेकिन फिल्टर्स की जरूरत उन लोगों को काफी ज्यादा होती है जिनके चेहरे की स्किन सही नहीं होती, जिनके चेहरे पर निशानात होते हैं एक ही नहीं होते हैं। तो अगर ये चीजें आपके चेहरे पर हो ही नहीं तो आपको फिल्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डी स्किन फेस वॉश आप लगा सकते हैं। इन दोनों चीजों के इस्तेमाल के बाद आपके चेहरे पर जितने मसाले वो सारे खत्म हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है ना वो क्लियर स्मूथ और शाइनी बन जाती है।

ओके जी, सो बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर शीला कुल की आवाज में हमने लगा लिया है, जो कि हमें एक प्यारे भाई ने फरमाइश कर दिया था। मैसेजेस की जाने बातें हैं तो आपकी मैसेजेस पढ़ेंगे। यासीन कुडाड़ो भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर अमा बधाई की आयो, पुरानी ईद जो मुबारक हूँ जन्म गर्मी हालत खराब करे छी है वैसे और तमा के चौथा भली करी आया प्यारा भा फहा देरी है सऊद देरी फ्रॉम नवाब शाह सलाम अदी शो तमाम नाइस है वालेकुम असलम प्यारा भा मोहबतू एंड तमाम प्रोग्राम बुध पाया। उनके अलावा विलेज गुलाम कासिम सोलंगी से दिलावर हुसैन सोलंगी हैं। बाजी सिद्रा आप कैसी हैं? बाजी कल फरमाइश की थी क्या याद है या नहीं, शेला गुल का गाना लगाइएगा। थैंक यू एंड जमादार वीरम आसिफ सोलंगी सलीम एंड मुबशिर सोलंगी को डेडिकेट कीजिएगा। चलिए ये गाना आपका चल रहा है, आप इंजॉय कीजिए।

ओके जनाब, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। और ये मौजूद है असा के ही वारो गानो बुधायो, कहीं अर्श पर कहीं फर्श पर कहीं उनके दर कहीं दर बदर। चले मैं कोशिश करती हूँ ये वाला गाना लगाऊं, लेकिन आपने अपना नाम तो लिखा ही नहीं, तो बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आज सॉन्ग सुनाए फैजाली का, फैजाली बिल्कुल आपको सुनाई जाएगी। और चाचा खाली जुड़ी जो मेरे साथ मौजूद है, चाचा बिल्कुल तमाम गानों भी हलायूं था वेरो पानी सीटे थे। और ये है सगलीन अब्बास, आप कैसी है, उम्मीद है की अच्छी होगी। जी जी मां सफा अच्छी आया आई तमाम दौर रिन्यू एंड सो मोहब्बतों प्यारे भाजू। और ये हैं जी हमारे साथ हेलो सिद्रा मुस्कान, मकसूद मल्हा मेहरापुर से सिद्रा मुस्कान। लिखते हैं कि किसी के चीखने चिल्लाने से उसका नसीब तो बन सकता है लेकिन तकदीर नहीं बदल सकती, यह तो हकीकत है वैसे। और मकसूद मल्हा कहते हैं सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पूछते हैं बोलते हैं तुम हमारे, थोड़ा सा मैसेज समझ नहीं आया, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, शायद ये कहना चाहते हैं कि सब आपके पीछे पड़े हुए हैं और वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल आप क्या इस्तेमाल करें कि आप इतने प्यारे हो चुके हैं। तो उन्हें बताइए जनाब कि ये वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कमाल है कि आप इतने ज्यादा प्यारे बन चुके हैं। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लगा दे जाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है, ताकि आप लोगों की खूबसूरती मुकम्मल हो जाए, आप हसीन प्यारे और खूबसूरत हो जाए।

अच्छा गुड आफ्टरनून सिस शो तव्हांजो लशपश आहे अताउल्ला ऐसा खेल भी प्ले करना और सखड़ वालों के लिए चले सखड़ वालों के लिए करेंगे ये गाना और क्या कहते हैं आप हमारे साथ हैं बलोच हैं जी मीरपुर खास से आप हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया और ये किसी ने लिखा है अहमद मुगल का गाना सुनाइए रातें थी तो सूरज जागन था अली नवाज नूरपुर से हमें सुन रहे हैं क्या बात अली नवाज भाई आपका वेलकम

अच्छा गानो तो ॾाढो भलो आहे ॿुधंदासीं पर मैसेजेस आहिनि मुंहिंजी दिलि चए थी जल्दी जल्दी मैसेजेस ख़तम करे वठां जी वरी कॉमेंट तरफ़ अची सघूं और ये हमारे साथ ही हांजी बाजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट एश और डी स्किन के प्रोडक्ट्स अब हमें बिल्कुल जी बताएं ये बताएं ये थोड़ा सब्र कीजिए इमरान अली बरोई भाई हमारे साथ मौजूद है लाड़काना से बहुत शुक्रिया और ये हमारे साथ हैं जी ईद मुबारक कबूल हो 78 मोरी से राजा हमीर चंद किशोर कुमार हीरा लाल पवन कुमार प्लीज प्ले फाइज़ा असां ले सियाणो चले मां कोशिश कंदमि बिल्कुल फाइज़ा जो गानो हलाईंदासीं पर इहो न को ॿियो हलाईंदासीं और विलेज से अच्छा ये केटी जतोई से मोहम्मद नवाज मला हमारे साथ कहते ईद मुबारक अदी खैर मुबारक अदा वालेकुम अस्सलाम आप ही सिद्रा मुस्कान आई फादिली लाशारी टॉपिक का जवाब मैं स्नैपचैट यूज करता हूँ फिल्टर्स में और सलाम टू प्रिंस मोहसिन लाशारी और हसन अली इम्तियाज अली लाशारी को चलें जी बहुत शुक्रिया भाइयों को वेलकम करते हैं विलेज केटी जतोई से नवाब मोहम्मद नवाज मला है मोहम्मद नवाज मला तुम्हारे मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो पे

0: GA FM 88
1: सिंध की आवाज और संगेमील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटर
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई सोम

हां जी यदि जो ख्याल करो ठीक है आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड ई स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ई स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से सो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं या फिर ई स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं मुझे बताते जा रहे हैं और साथ साथ आपको किस तरह की खूबसूरती मिलती जा रही है ये भी आप बताते जा रहे हैं ओके जी इसके अलावा अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप जानना चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट जितने भी आप लोगों को बताए जा रहे हैं इनकी प्राइस क्या है ये आपको कहां से मिलने वाले हैं और मजीद बहुत सारी ऐसी बातें जो कि शायद आप लोगों को मुझसे मालूम ना पड़ती हो तो आप लोगों को ये नंबर बता रही हूं इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कीजिए उनसे ये तमाम बातें पूछिए जो कि आप पूछना चाहते हैं तो नंबर है जनाब 03-15-799-0595 खुदा ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाएं ये प्रोडक्ट और मजीद जो बातें आप जानना चाहते हैं वो आप लोगों को

योगी जी मैसेजेस तव्हांजा खोड़ सारा आहिनि सो मैसेज जल्दी पढ़ंदा हलंदासीं और ये वालेकुम असलाम आपे सिद्रा मुस्कान आई एम फादिली लाशारी आज सॉन्ग सुनाइएगा अहदी वफा ओएसटी डेडिकेटेड टू माय बेस्ट फ्रेंड प्रिंस मोहसिन लाशारी और आपने अपने दोस्तों को प्यार दिया है बहुत ज्यादा सो क्या बात है जी दोस्तों को प्यार दिया करें और इसके अलावा इरम कहती माई डियर दिलबर प्लीज प्ले तू मुझो दोस्त ना ही यार मुमताज मुनीर जो गानो आ मां कोशिश कदम हलाईंदासीं अगर टाइम बची हो तो ये कहते हैं वेरी गुड शो आपका थैंक यू सो मच नाम नहीं लिखा आपने अपना नाम लिखा करें इमरान अली बिरोई हमें सुन रही है लाड़काना से इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया अच्छा इमरान भाई लिखते हैं कि ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था हमें सिर्फ नजर मिलाने का शौक था मगर क्या करें नजरें तो उनसे मिला बैठे जिन्हें नजरें चुराने का शौक था आए हाय अच्छा विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो हमें सुन रहे हैं वेलकम करते हैं गोठ गदेची लाड़काना से गुलाम सरवर सुमरो है वालेकुम अस्सलाम बाजी मुस्कान गाना चलाए ओके भाई तुम मोहब्बत वाइन प्रोग्राम बुधो पया मकसूद मरा हमारे साथ हैं गाना तो सुनाओ सिद्रा चले तव्हांजो गानो वरी सुभाणे ॿुधंदासीं अॼु जी लिस्ट जेका आहे न फुल थी चुकी आहे और ये है जी आई एम

ओके जी, ये मैसेज हमें मिला है जी, खतादार ASP हमारे साथ मौजूद है, अब इनका नाम है या पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही, आपने मैसेज किया है जी, बहुत शुक्रिया आपको, हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, थैंक यू सो मच। आप जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी।

अच्छा इस नाल पानी मर्स मौजूद है वालेकुम अस्सलाम ऐसा तवा के वेलकम चाहूं था इमदाद अली पवर से सगर मौजूद है वेलकम चाहूं था वहां के भी अदा किशोर भाई कहते हैं कि अदी लिस्ट फुल थी थी तो कुछ गाना हार जी वेदा हूं हां बिल्कुल यही थी और सुबह ने लाए बचाए रखना है नन्ना बाबा तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारी खूबसूरती के सफा वधाए छी समझो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हें डी स्किन जो फेस वॉश भी मिले पो हिदायतुल्लाह कहते हैं कि सिदरा नसरुल्लाह सुमरो कहाँ गया जो बोलता था मेरे तो बच्चे भी आपका शो सुने गया पता नहीं कहाँ चला गया वैसे अब तो खुद ही नहीं सुन रहा बच्चे पता नहीं कहाँ से सुनेंगे तो पता नहीं कहाँ है और वफा मीर मुनवर भाई हमें सुन रहे हैं अदा तमाम जो मोहब्बतों और निगाहें सैयदा हमें सुन रही है आपके कुछ मैसेजेस कॉमेंट्स ऊपर भी चले गए हैं तो जो रह जाए तो बस माफ कर दीजिएगा

अच्छा वैसे इहा ॻाल्हि आहे, अगरि मां तव्हांखे गानो ॿुधणु ॾींदी आहियां त पोइ वरी तव्हांजा मैसेजेस तव्हांजा कॉमेंट्स ई रहिजी वेंदा आहिनि. सो हिकिड़ी ॻाल्हि कंदा की या तव्हां गानो ॿुधंदा या तव्हांजा मैसेजेस शामिल कया वेंदा, छो त टाइम सवा थोरो हूंदो आहे न. सो मूंखे प्रोडक्ट ते बि ॻाल्हाइणो हूंदो आहे, तव्हांजा मैसेजेस बि एड करणा हूंदा आहिनि. सो इन दौरान मूंखे गाने में ॻाल्हाइणो पवंदो आहे. सो प्रोग्राम आहे जना वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, अमां ताईं पहुचाए वञे पियो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जे तावन सां. सो तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो, तव्हां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो, पंहिंजी ख़ूबसूरती खे वधायो ऐं सुहिणा सुहिणा थींदा वञो. हुन सां गॾु तव्हां डायल कयो पिया 03 15 799 0595.

अच्छा मोहम्मद हाशिम हमारे साथ हैं, आसिफ अली जुने जो हमारे साथ हैं, सैयदा निगाहे जैनब हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं। अमानुल्लाह टगर भाई हमें सुन रहे हैं। अमानुल्लाह टगर भाई आपका बहुत शुक्रिया। गाना खत्म हो गया, एक और गाना लिस्ट में है और गाने हम सुनते रहेंगे जी आप लोगों के पसंद के गाने। आज मैंने सब लोगों की तकरीबन गाने की जो पसंद है ना वो लगा ली है जी प्रोग्राम में। मैंने अपनी पसंद का एक भी गाना नहीं लगाया, तो सुन ले भाई जिसको गाने और प्ले लिस्ट पसंद ना आए तो ये आप लोगों के ही गाने हैं। अच्छा वफा शहजादा मक्सी हमारे साथ है भाई, आपको भी वेलकम इन खुशियों में दी।

चल के दिल में तस्वीर बनाई है तेरी। और इसी के साथ साथ एक और गाना हमारे पास मौजूद है जी, ये गाना जाएगा डेडिकेट हमारे चाचे को। लास्ट में वैसे भी चाचे का गाना लगता है और ये गाना बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। अच्छा फजीला, आपका बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आप अपनी बेटी का नाम रखिएगा सिद्रा मुस्कान, कोई मसले की बात ही नहीं। पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने नहीं किया। और क्या आप इस्तेमाल कर रही हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और मुझे बताइए।

सनौला बिरोई भाई हमें सुन रहे हैं. सनौला क्या कहते हैं, आपका शो बड़े शौक से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू आपकी मोहब्बतों का, ऐसे ही शौक से सुना करिए. आदिल कहते हैं क्या खाती हैं, मैं तो वही खाती हूँ जो आप सब खाते हैं. दर्दे दिल आपका बहुत शुक्रिया. किशोर भाई बच्चे अभी तक पैदा नहीं हुए होंगे ना. मोहम्मद जमान आपको वेलकम करते हैं. निंड्र फिट आई तमाशा जो प्रोग्राम बुध पे.

ओके जी, बख्तली सियाल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही। अच्छा क्या कहते हैं, मुख्य रोज बने तो प्रोग्राम तुम जो होती हो उसमें जाई।

चले सो हाणे असां तव्हां खां इजाज़त वठूं था छो त असांजे प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे न उहो ख़तम थी वियो आहे अञा ॿ मिंट आहिनि थोड़ी भग भग अञा कंदासीं अच्छा विलेज केटी जतोई से मोहम्मद नवाज मला रहीम मला हमारे साथ है बहुत शुक्रिया जी मकसूद मला आप ही अपना ख्याल रखिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो डायल करते रहिए 03-15-799-0595 ओके जी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे डी स्किन फेस वॉश आहे वाइट एज आहे ॾह सारा प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा पंहिंजी ख़ूबसूरती खे वधायो बाबा पंहिंजो ख़्यालु रखो छो त ज़िंदगी में अगरि तव्हां पंहिंजो ख़्यालु न रखंदा न त अॻिते हली तव्हांजो बि को ख़्यालु कोन रखंदो सो पंहिंजो ख़्यालु रखणु तव्हां पाण सिखो ठीकु आहे या स्टार्ट तव्हां पाण वठो पोइ तव्हांजो हर को ख़्यालु कंदो सो पंहिंजो ख़्यालु रखो पाण खे सुहिणो सुहिणो बणायो पंहिंजी ख़ूबसूरती खे सफ़ा ईअं चिटो करे छॾियो गोरा गोरा थी वञो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कयो ऐं न मिले थो अगरि प्रोडक्ट जेको नंबर ॿुधायां थी प्रोग्राम में हुन ते राबितो तव्हां लाज़मी कंदा कयो अक्सर तव्हां जे चवंदा आहियो त भाजी असांजे एरिया में नथो मिले असां किथां वञी वठूं त हीउ जेको नंबर तव्हांखे सॼे प्रोग्राम में ॿुधायो वञे थो त इन लाइ ॿुधायो वञे थो जीअं तव्हांजे लाइ आसानी थिए तव्हां नंबर ते राबितो कयो ऐं राति करण खां पोइ तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ओके हज़ार भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया वरी इनशा तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी सुभाणे वारी प्रोग्राम में थियण वारी आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे सो ॿुधण न विसारींदा पंहिंजो ओ हेॾो सॼो ख़्यालु रखंदा किथे का ग़लती थी हुजे तव्हां माज़रत कयां पई सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सा सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई बने थी तो सुबह 11 बजे का शाम 4 बजे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी।

0: ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़नि जड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569-0300-3-8-5-6-9।
1: शदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं

0: तौकीर अहमद 0-600-16-23-793।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर

0: सोनल प्री
1: सब मारवी कोर्ट में बंद आ
2: हां सही
1: हां हने मथे झुड़ जने दिसे थी ने मैं गमलहार
2: हां
1: तो पो वरी ने पोया जो याद की दिसे तने
2: हां
1: हने इते मारवी जो का लाणा ते ए नाला लोह जो न कर मुजी बोली नालो आ ए नाला जे
2: भला
1: ए बादल ये ककर न कर लोह जा ककर नालो बादल
0: ए सावण ये शोर न कर
2: ला ए में गबलार न कर गज गोड़ न कर
0: बच
3: एडी देर न कर
4: बच्चे बाबा फजीर बच
0: एडी या लेट न कर अवेर न कर
4: बच लोह जो न कर मुजी बोली नालो
2: मुजी बोली चा तो मुजी दिल मन ही बद्दा कैदा
1: ए मेघ ए मल्हार
4: बच्चो
2: ए नाला
3: बरसात नालो दी बरसात
4: बच्चे बच्चे बगीर
2: मेघ मल्हार झुड़ ककर छप्पर शाम न कर गम गज गोड़ न कर
3: हर हर तंग भेरा ये घुमरा न कर
4: बच गुलाम
0: ये बिहान रो न कर
4: बच
1: ए सुना सखी सरदार उमर जाम बादशाह
3: ए मुझा भा
1: ए अदा भा
4: बच्चे से बच्चे जा
0: ए ए अदा ए भाव ये सेक न कर सेक
4: बच्चे से बच्चे जा
5: कासिम डायरी साहब जनन जी गुजारत गोली ए भन्यो भजन वाला साईं गुलबेग अजमल साहब साईं मोहम्मद कासिम साहब हाने ने के सजो कयो गुजारत
1: जी जी से गुजारत
5: असा दोस्त सन सामिन असम जी सगत गुजारत की होई केसी ते वनी बीते
4: साईं हाने गुजारत सजी जा कयो हनन गोली पे उमर मारी पर गुलबेग गुजारत आए ससी पुनो
5: जी
4: हां ससी गा जदे पुनो खजियो त पुनो जे पुठिया हली हली जबलन में पहुंची आ हाने काढ़ा गर्मियो हाने मथे निहारे गालहाए भई सिज सा चवे पी ए नाला लोह जो न कर मुझी बोली नालो आ सही नालो आ सूरज
5: वाह वाह वाह
4: नालो आ सूरज लोह जो है तो बोली आहे मंजल नालो आहे बारी नालो आहे बारी
2: है रे है
4: हाँ हाँ चवे पी ए सूरज तो न कर मुझी मंजल बारी आ मुखे अजा अगते हलणो आ एडो तो कंदे आ हली की सके
0: वाह वाह वाह साईं वाह वाह वाह वाह
5: वाह साईं वाह वाह साईं वाह हाने हलूं था सुगड़ फकीर मोहम्मद इदरीस जमाली साहब जी साईं खुदा जे दिन में छा बुधाईंदा साईं
1: साईं गुजारत जी सिन हले पई तो असां गुजारत ही पढ़ंदा से
5: बिस्मिल्लाह
1: सामाइन के बुधाईंदा से
5: जी जी
1: उस्ताद गुजारत है त सुर उमर मारवी
2: जी जी
1: सुर उमर मारवी में गुजारत है त अदा उमर एड़ो नालो पानी जो कई जो को नालो करे ना
2: आय आय वाह
3: पर बाबा
1: बाबा एड़ो नालो पानी जो कई गुलाम सही जो को नालो करे ना हां
2: एड़ो नालो पानी जो कई
1: पानी जो कई
2: हां
1: जो को नालो कराई ना
2: तू मता ई ब मोहम्मद यो गुलाम मोहम्मद यो कुर्बान फकीर
5: जी उस्ताद जी
2: मता उस्ताद ई ब चवे तो अदा पढ़ वरी पढ़
1: सही लख दफा गुजारत जा लफ्ज हन त एड़ो नालो पानी जो कई हां जो को नालो कराई ना
2: हाने मता उमर बादशाह के माई मारुल पईतवे त एड़ो बानो पानी जो कई पीण जो बहानो मानू अजो बहानो जो बहानो एड़ो बहानो पानी पीण जो कई जो इए को ब उन्यारो करे ही ना
1: बच्चे उसल
2: हल
1: पानी जो कई जको नालो करई ना
0: नालो करई ने
1: वाह भाई
2: एड़ो को सवाल कई
1: वाह बच्चे
0: एड़ो को सडे कई
1: बच
2: एड़ो नालो पानी जो कई
1: एड़ो नालो पानी जो कई जको नालो करई ना
2: पानी जो एड़ो को वारो चक्कर कई
1: बच
2: ओ भरियो तार कई
1: बच
2: कड़ो मिठो कई
1: बच
0: एड़ो घमरो फेरो कई
1: बच
2: एड़ो नालो पानी जो कई
1: एड़ो नालो पानी जो कई
2: मेरो मेरो कई
1: बच उस्ताद
2: किनो
1: कई बच बाबा
2: वाह वाह वाह एड़ो नालो पानी जो कई पो
1: जो नालो करई ना
2: नालो करई ना एड़ो अग में को बराजा करई ना
1: वाह वाह वाह
2: मरी भाई
1: वाह वाह
5: वाह उस्ताद गुलबेग वाह वाह सही वाह जी असम नहीं हो या उस्ताद गुलबेग जमाली साहब गुजारत देण वाला साईं मोहम्मद इदरीस जमाली साहब जी साईं मोहम्मद इदरीस साहब सजो कयो हाने गुजारत
1: हां जी बिल्कुल गुजारत है बु सुर ता के बुधा तो सुर उमर मारवी
5: जी
1: हाने जे उमर बादशाह उस्ताद मारवी के उठ ते खई पे वने मुसा शादी कर मारवी चवे थी ता हूं भेण तू भा शादी की थी पर हु न पियो वने हाँ मारवी जो गाले डायरेक्ट उमर से अदा उमर एड़ो नालो पानी जो कई जो को नालो करे ही ना से नालो है वकार पानी जो है खराब बो नालो है राजा चंदी अदा उमर एड़ो नालो पानी जो कई जो को नालो करे ही ना पर ये ना उस्ताद चंदी अदा उमर एड़ो वकार खराब कई जो को राजा करे ही ना
0: शहर कर
5: वाह सही वाह
0: सही जात नाहे खाज जी नालो आ जे नालो अथई शहर कर
4: ही जात नाहे
0: ही जात नाहे
4: ही कासाई नाहे
0: बचे उस्ताद
4: हां
0: बचे
2: सर ये बचवे त जदे मंग तो आयो आ
4: हां
2: त मना ही एड़ो ही
4: ही पेनू नाहे
2: पेनू नाहे या स्वाली ना है
4: गद्दा गर्ग ना है ही फकीर ना है
2: हां ही कोड़ो बहानो करे आयो आ ही जात ना है
0: खाज जी नालो आ जे नालो अथई शहर कर
5: वाह सही वाह असमें सही कुर्बान अली जलपानी साहब जी गुजारत तो जारी सारी असा वक्त रे दिसों था 3:45 थन पा वक्त है कमर्शियल ब्रेक जो तो पहले हलंदा नडड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक तरफ अवा के केडन आयो बणनो बुधंदा रहो जीए एफएम नेटवर्क जे लाइव स्टूडियो मा प्रोग्राम सुगड़ कचहरी पेश कयो पे वने असा मा सा गडुंदासी पूरे 5 वगे ते अचंदा नंडड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खा पो
6: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
7: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
6: सुनते रहो GFM 90.8।

0: जे साम्हूं अचे थो त ताबिश थी मारे, लिकी थो त ॻोल्हा जी ख़्वाहिश थी मारे, जे कावड़ करी थो त कावड़ कुहे थी, जे परची पवी थो त नवाज़िश थी मारे। अखियुनि ते न मदहोश इल्ज़ाम धुर तूं, अखियुनि खे बि दिलि जी सिफ़ारिश थी मारे। वेलकम बैक, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ बि रहां सभिनी सॼणनि ॿुधंदड़नि भेनरुनि भाइरनि बुज़ुर्गनि खे वेलकम भलीकार ऐं जी आया रहो। जी हा समय जीअं एफ एम नेटवर्क जे लाइ स्टूडियो मां प्रोग्राम सुगर कचहरी पेश कयो पियो वञे, असां सां गॾु सकरन ऐं पूरे सिंध जा मशहूरु माण्हू सुगर मौजूदु आहिनि। असांजी क़ुर्बान अली जलबाणी साहिब जिन जी गुज़ारत हुई, जेके असांजा ॿिया सुगर दोस्त ॻोल्हियूं पिए, असांखे मां गुज़ारिश कंदुसि त वरी पंहिंजी गुज़ारत खे जेको आहे त वरजाइनि, जीअं असांजा ॿिया सुगर दोस्त हुनखे ॻोल्हे सघनि। अची साईं बिस्मिल्लाह।
1: साईं गुज़ारत चवे थी, ही ज़ात नाहे खाज जी नालो आहे, जे नालो अथई शहर कर।
2: जेकर मुंहिंजो कसूर आहे
1: जी,
2: जे मुंहिंजो कसूर आहे त पोइ मूंखे बश्क कर।
1: बचे साईं,
3: ही
1: ज़ात नाहे खाज जी नालो आहे, जे नालो अथई शहर कर।
3: ही ज़ात नाहे
1: जी वाह,
3: चए थो ही कहरी मारी शिकारी नाहे।
1: बचे साईं,
2: भला ईअं बचावे थो
3: त नाहे खाज जो नालो
2: ज़ात जान फुल, चए थो ही फुल नाहे।
1: बचे साईं,
2: हल बचायो
3: ज़ात नाहे
1: खाज जी नालो
2: तयार नाहे, ज़ात जा का तयार।
1: बचे साईं,
3: ही चए थो को नओं रंग नाहे।
1: बचो
3: साईं, पुराणी ॻाल्हि आहे, को रंग नओं नाहे।
1: बचे साईं,
3: ज़ात जा रंग।
1: बचे
2: कुर्बान पढ़ अञा।
1: ही ज़ात नाहे खाज जी नालो आहे, जे नालो अथई शहर कर।
2: शहर कर, भले वञी तू ढिघड़ी कर।
1: बचो उस्ताद जी,
4: ॿुधो कुर्बान चए थो कढण जी कर।
1: बचो उस्ताद,
3: चए थो हाणे झट पट कर।
1: बचो उस्ताद, बचे
2: पंहिंजो घर आबाद कर।
1: बच उस्ताद,
2: हैदराबाद थो
1: चवे।
2: अञा पढ़, अञा पढ़।
1: ही ज़ात नाहे खाज जी नालो आहे, जे नालो अथई शहर कर।
2: वड़े वाह,
3: ही ज़ात नाहे,
2: ही ज़ात नाहे, भला चए थो ही जा माली नाहे, ही थोरो आहे।
1: बचे,
3: हल भला चए थो ही सा हड़ नाहे।
1: बच उस्ताद,
3: या ही ज़हरी नाहे।
1: मरे
2: मरी भाई,
0: वाह साईं वाह, वाह मोहम्मद इदरीस, वाह वाह साईं वाह, वाह जी गुज़ारत हुई साईं मोहम्मद इदरीस साहिब जिन्हनि खे ॻोल्हियो वरितो। साईं हाणे सॼो कयो
1: साईं, सुर हुयो लीला मजनू साईं।
0: जी साईं,
1: साईं हाणे जॾहिं ज़हर जी देग मजनू साईं खाई हुओ, हाणे माण्हू साईं चवनि पिया इन ज़हर मां तोखे कुझु कोन थियो त हीउ ज़हर आहे ई कोन, ॿियो छा आहे? चवनि साईं, ही ज़ात ई नाहे, ही खाड जी नालो आहे, जे नालो अथई शहर कर। साईं ज़ात हुई ज़हरी, खाड जी हुई माखी, नालो हुयो मखण, नालो साईं नालो हुयो रखियल शहर हुयो माॾो। चवनि थो ही ज़ात ई नाहे खाड जी नालो आहे, जे नालो अथई शहर कर। ईअं न चवनि थो त ही ज़हरी नाहे माखी मखण आहे, जे रखियल अथई त माॾे कर।
0: बिल्कुलु लखां थी गुज़ारत आहे जीअं समीन। हाणे हलूं था, असांजो नौजवान सुगर फ़क़ीर आहे ऐं उस्ताद चवंदे मूंखे बिल्कुलु फ़ख्रु थिए थो, छो जो नंढी उमिरि में जेके सुगर ऐप जे मैदान ते पहुचनि था, उन्हनि सां गॾु प्रोग्राम कंदे बि फ़ख्रु महसूसु कंदा आहियूं। जीअं समीन, असांजो भलोर सुगर आहे नौजवान ऐं तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं कंदड़ साईं ग़ुलाम मोहम्मद सजराणी साहिबु। साईं जन खे भलीकार चऊं था, अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम सलाम
0: साईं, कहिड़ा हाल आहिनि वांजा?
5: अलहमदिल्ला, अलाह असांजा अहसान, तव्हां ख़ुशि आहियो?
0: दुआऊं अलाह जा अहसान। साईं ईद कई सुठे नमूने
5: सां? शुक्र आहे अलहमदिल्ला।
0: तव्हां दर्जी हुआ मुंहिंजे ख़्याल
5: में? जी,
0: परेशानी बि थी हूंदी छो जो?
5: शुक्र आहे अलहमदिल्ला,
0: तमामु ज़बरदस्त, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। अच्छा, असांजे सामान जे लाइ अवां अॼु छा ॿुधाईंदा?
5: असां गुजारत ॾींदासीं।
0: बिस्मिल्लाह
5: उस्ताद, गुजारत जा गुफ़्ता न सुर लीला चने सर में। गुजारती चवे त नालो चने सर जो मूंखे वखर मिले, चवंदो नालो चने सर जो मूंखे वखर मिले
2: रंग रूप करे
1: संजराणी साहब सजो कयो गुजारत के
5: सही सुर उस्ताद तांके दिनम लीला चने सर जडें लीला के चने सर कढ़ी छो हाँ बी मायू भी चवन बिहार घर खोड़न बिहार बादशाह
3: बिल्कुल बिल्कुल
5: हाँ लीला जो गाल बेन से तो नालो चने सर जो मुख्य वखर मिले से नालो आ हैदर
3: वाह वाह
5: वखर है मुश्क
3: वाह वाह
5: चे भी नालो चने सर जो मुख्य वखर मिले ये न चे ही दर चने सर जो वरी मुख्य मुश्किल मिले
3: वाह वाह वाह
1: वाह सही वाह वाह सही वाह वाह गुलाम मोहम्मद वाह वाह गुलाम मोहम्मद वाह
2: सलीम साहब सवेर जका अवां एकड़ी गाल कई त गुलाम मोहम्मद अवां हियर दर्जी हो ईद ते पैसा बैसा डाढ़ा सुठा कमाया हूँ
5: शुक्र बाबा
2: इन जाए ते दर्जी ते मुखे एकड़ो बैत दिल ते चढ़ी आयो आ तड़े मुवा के टाइम वरतो खाजा गुलाम फरीदा चयो त इश्क तड़े में को दर्जी किता में घिन आई यार मिशी ने कसम करी
3: वाह वाह वाह वाह
2: इश्क तडे में को दर्दी किता में घिन आई यार मशीने कसम करी में बनक बनक दे चोले सीसा जो यार मैडा शौकी ने कसम करी
3: वाह वाह वाह उस्ताद वाह
2: सीसा चोला पासी ढोला
3: वाह वाह
2: सीसा चोला पासी ढोला लग सा यार मैडे दे सीने कसम करी में
3: वाह वाह
2: आखे मियां गुलाम फरीदा जो चोले दी सिलाई में मूल निकल सा जो यार मैडा मिसकीने कसम करी में कसम करी में कसम
1: सुगर फकीर गुलाम मोहम्मद संजराणी साहब जी साईं हाणे छा ॿुधाईंदा
5: गुजारत ॾियां
1: अच्छा ॿी गुजारत बिस्मिल्लाह साईं बिस्मिल्लाह
5: गुजार जा गुफ़्तान त पोख माल जन में नालो ई न नालो ही न
4: ओ कमाल जन में नालो ही न को मुझो सजण ही न
5: बचे
4: को साथी ही न
5: बचे
4: को सुहाग ही न
5: बचे
2: बा पढ़ो
5: जी पो कमाल जन में नालो ही न
2: पो कमाल जन में नालो ही न
5: नालो ही न
4: गुलाम तू मदाई है तो चवी त यो नूर नजर ही न
5: बचे बाबा
4: हां यो रखे लई न
5: बच्चे
1: यो अंतली ने
5: बच्चे
4: भोख माल जन्म
2: पोख माल जन्म
4: नालो ही न
2: पोख क्या तो मता तो जी दिली तो जा पोख जो है बो क्या तो सुबह मु उठी जने संभालियो न पर पो हु नजर दीद आयो व्यो रखियो फतेह मन पिरी पसंद ओहो अंगण ओहो मुझो जत गोडो गोरो सजन साथी मुझो को पुनल हो तराणो ही न
5: बच्चे दियो सर
2: सोढो को सरक्यो ही न मत मरे पई अल्लाह
4: बची हुई सही
2: नालो सोढो
4: सोढो
2: मुमल थी चवे तेड़ो सोढो मुझो सरतो ही न
5: बच्चे दियो
4: वाह
2: अन्या पढ़
5: जी पोख माल जन्मे नालो ही न
2: क्या तो विछोड़ो पवे इन्हीं जंग में जो हेड़ो वरी मुख्य को वरंदो को मिलंदो ही न
5: बच्चे दियो सर
2: क्या तो पुंडल मुझो परदेस भी हाने अन्या ते ही मोटियो ही न
5: बच्चे बाबा
2: को फते ही न
5: बच्चे
2: को पत्तो ही न मत मरे
5: बच्चे दी तो जी पोख माल जन्मे नालो ही न
1: जन्मे नालो ही मुझो सजन साथी वरियो ही न
4: मोटियो न
5: बच्चे दी
4: पोख माल जन्मे नालो ही माल
2: जन्मे नालो ही ना
5: अरे पोख माल जन्मे नालो ही ना
2: भला क्या तो हाने हाने हिते पुनर सभा मुख्य आराम ही ना
5: बच्चे दी उस्ताद
2: को सलाम सलू ही ना
5: बच्चे
2: अमानत सलामती ना
5: बच्चे दी
2: अमानत सलामती ना
5: बच्चे दी
2: क्या तो हेड़े राज में अन्या ते को आयो को व्यो को बच्चो ही ना
5: बच्चे दी
2: क्या तो हिन घर में हिन मंगना हार में हाने मुझो दिल मन बाग बार ही ना
5: बच्चे दी
4: को महबूब ही ना
2: को बस्ती ना
5: बच्चे दी उस्ताद
4: को गुल ही ना को फुल ही ना
2: एड़ो अत्तर अंबीर को खुशबू ही ना
5: बच्चे दी सर
4: वाह वाह वाह वाह
2: अदा पढ़ा जा
5: यदि पोख माल जन में ना लोई ना
2: पोख माल जन में को रखियो ही ना
5: बच्चे दी
2: सुखियो ही ना
5: बच
2: अल्लाह नालो सुखियो तो
5: सुखियो
2: वाह सही वाह वाह सही
4: वाह वाह सही वाह वाह सही वाह
5: बुझार जा गुफ्तान तो पोख माल जन्मे ना लोई ना
3: पोख माल जन्मे ना लोई ना
5: ना
3: चेतो एडो मुझो को सुनो सजन सखी ना
5: बच्चे दी उस्ताद
3: एडो चेतो मुझो को वर वारसी ना
5: बच
3: एडो मुझो को धनी
5: वाह वाह करे चली वाह वाह
2: धनी में मरी वही
5: वाह
2: वाह सही वाह वाह मामद इदरीस
5: वाह वाह
6: वाह मामद इदरीस वाह वाह सही वाह असाई गुरा मामद गुजारिश है इनके सजो को छो टाइम थे न्यूज कमर्शियल ब्रेक जो अजी से मिला
5: उस्ताद सुर ससोई पुनो में जरे ससोई जबल में बीठिया तो केर मानू मिलो हाँ उन सांस भी गाल है तो पोख माल जन में नालो ही न ते पोख जिया बीठी माल जान भरा नालो धनी
6: वाह सही वाह
3: वाह वाह वाह
5: बीठी आया बरन में मुझे को हाँ धनी है न
3: वाह वाह संजरानी वाह
6: वाह संजरानी वाह वाह संजरानी वाह वाह सही वाह वाह सही
3: बन छोड़े वाह
6: आज इतने आज मट बन छोड़े संजरानी बोलो तो जी ऐसा मैं प्यारा सामी नो मोहतरम बुधंदड़ सुगर कचहरी जो ही सोनी गालियों इतने ही थोड़ी देर लाए रोकियो था अब किथे भी न वंजो छो तो ब्रेक ऐ न्यूज का पोए वरी हाजिर थिंदासी नवन ख्यालन दिल के वणंदड़ शायरी ऐ वणंदड़ गालियन सा त गड रहंदा ऐ बुधंदा रहो जीए एफएम नेटवर्क हालत हलो था एक मुख्तसर वक्फे न्यूज ऐ कमर्शियल ब्रेक तरफ असा नंढड़े शॉर्ट ब्रेक का पो वापस अचूं था असा जो अवां जो साथ रहंदो पूरे 5 वगे ताणी

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
3: आई मोहम्मद उमर गोरी 03151557724
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94

0: हाँ हलूँ था शुगर फकीर मोहम्मद कासिम दारी साहब तरफ जी असके कुछ बुधाइंदा साईं बैत बुधाइंदा छा बुधा
1: जी साईं जी बैत बुधाइंदा हाँ तो गुजारत जी सनफ हली वही आ
0: जी जी
1: हाँ वरी कुछ बुधदणन के वरी असें बुधायो बैत
0: जी साईं बिस्मिल्लाह
1: साईं बैत आए तो जेड़े तेड़े हाल सा हेठा ही हलजे
2: वाह
1: जेड़े तेड़े हाल सा हेठा ही हलजे जेको मिले जैखा झोल वडो हलजे पो पान खणी पलजे पर दे न डोरा पो दिजे
2: वाह वाह
0: वाह
1: पर मोहब्बत जे मन में से मेरा की न थियन
0: हाय
1: मोहब्बत जे मन में से...

0: ऐं मेरा कीन थियनि अवल सजदो ॾेई अलाह खे पोइ ख़लक जी ख़िदमत कनि, उहे कीअं न वली थियनि जंहिंजो इश्को अलाह
1: सां।
0: पर मोहबत जन मोहबत जंहिंजे मन में से रंडिया रोड़िया जन, मोहबत जंहिंजे मन में से रंडिया रोड़िया जन, तन जो सरा फन अण तोरियो ई अघायो। साईं अश्क ज़हर प्याक वीह ॾिसी वेसन घणो, आशक ज़हर प्याक विह ॾिसी वेसन घणो, कड़े ऐं कातल जा हू हमेशह हैराक, लॻियन लहूं लतीफ़ चवे फना कया फेराक, तोड़े चिकन चाक।

0: तब आह न सरी ना आम
1: वाह वाह सही
0: वाह सही वाह परदेसी सेण कजन परदेसी केड़ा पिरी देसी सेण कजन परदेसी केड़ा पिरी लड्यो लाडाणा कयो हु हल्या हो त वनन पुजाणा पिरियन कजे बस भोर का
1: वाह वाह
0: पर से पैता है गुलबेग फकीर
1: वाह वाह
0: त मार्फत वारे मुल्क ते कानी मिलावट मार्फत वारे मुल्क ते कानी मिलावट नफिल नमाज़ तर्क थे आई ज़ुहद इबादत फज़कुरूनी अज़कुरकुम तन में तिलावत ज़ाहिर को झा कापड़ी मन अंदर मोहब्बत चवे जानन चन सामिन सा सोहबत करे दिसी जे कल पव
1: वाह वाह वाह
0: पर उछले छ आकड़ के तदे मिलई अल्लाह तेरा पाक के आकड़ वारो मानो पसंद ही ना है उछले छ आकड़ के तदे मिलई अल्लाह एहरामी थी इश्क जो थी उघाड़ो आ से फकीर जमण जी गाल कई है पाए गारो गिची में इए पेटो मा उन्हें अचण के याद कर तू सागियो रख समा पो हिता वी दे पोइते तू केड़ो बध्यो वी दे कुला पर नाहक बिन घड़न कान तू त बावरियो आही भा चवे जानन चन आकड़ ही अल्लाह कदे न ठया पान में पर जे तो दिसा तो जे तो दिसा पांजे डोहन के तो मुझा फिफड़ था फड़कन जे तो दिसा पांजे डोहन के तो मुझा फिफड़ था फड़कन पर जे वरी दिसा तो तुझे रहमत दे तो मुझा मेरा था मुरकन ला तक न तो मिन रहमत ला मुझा जूठा था जरकन जे न वाली वड़कन तपो बाने बाह सेरा दे हां सही सही पैता है त खर के खथूरी मख जे खणी

0: इश्क आख्या में सिंगारी करबल विच अड़ी
1: हुसन
0: आख्या मेरा आला शान इश्क आख्या में कुहाया खानदान हुसन आख्या मेरे महल मकान इश्क आख्या में थीसा कुर्बान हुसन आख्या मेरी गाल सुनानी इश्क आख्या में सतक थीसा जलवाणी हुसन आख्या मेरी हाक मशहूरे इश्क आख्या ना माड़ी जलवाणी दूरे ना माड़ी जलवाणी दूरे ना माड़ी जलवाणी दूरे।
1: वाह साईं वाह वाह कुर्बान वाह वाह कुर्बान वाह। अजय समन यो या असंजा भलोड़ सुगड़ फकीर कुर्बान अली जलवाणी साहब असमन अल्लाह के तरफा इन के अखियन के नूर का नाबीन होंदे भी इन इश्क यो इन चाह जैमें इन वक्त सुगड़न असा गुड स्टूडियो में मौजूद हैं साई जन दिल के गहराइन से असा थोराता आयो समन ही प्रोग्राम जी एफ एम नेटवर्क के तसलसल से पेश किया पे वे असा गुड असि सिंध ज मशहूर और मारूफ सुगड़ असा गुड मौजूद है। हाँ हल्दी असा सुगड़ फकीर है गुलाम मोहम्मद असन जानी साहब तरफ अजी सही तुम असा बुधाई

0: अजय साई
1: इत जे हिसाब से बेहता उस्ताद गुलबेग वे प्यारा मानू जेके जैसा दिल हुए चवन असी ईद ते इंदासी वरी ना अचन वो छा गुजरनी होंगी। फकीर चयो त वही ईद गुजरी छजे यार मारे कल वायदा पंजा तू वेठे विसारे वही ईद गुजरी छजे यार मारे वही ईद गुजरी छजे यार मारे कल वायदा पंजा तू वेठे विसारे वही ईद गुजरी छजे यार मारे हुई आस दिल में सजन सार लहंदे अची ईद हिंते मुसा यार मिलंदे अंगण ते अजीबा मिठा मोर टिलंदे खुशियों खूब मुंहजू छजू तो बुहारे वही ईद गुजरी छजे यार मारे कल वैद पंजा तू वेठे विसारे वही ईद गुजरी छजे यार मारे सिवठी यार कपड़ा सिबाए रख्या हम दस्या हान कंखे लिकाए रख्या हम वरी तंत हीरा चिटराए छजा हम तोरी छजा वठी यार कपड़ा सिबाए रख्या हम दस्या हान कंखे लिकाए रख्या हम वरी तंत हीरा चिटराए छजा हम वर्तम यार तोले मुसिंगार सारे वही ईद गुजरी छजे यार मारे कल वैद पंजा तू वेठे विसारे वही ईद यार मारे
0: वाह गुलाम मोहम्मद वाह
1: न पाता मु कपड़ा न ईदई पढ़ी थम न मेंदी हथन ते न पाती घड़ी थम दिया रात दिल में तुझी धुम धड़ी थम तोरी छजा मु हड़ई ताम हारे वही ईद गुजरी छजे यार मारे कल वैद पंजा तू वेठे विसारे वही ईद गुजरी छजे यार मारे
0: वाह साईं वाह इलाही बोल हो सब हारे चाहिए भाई।
1: हाँ सही किते तो मने
0: केर खा
1: सजन साल सारो चो सिक में सिकाई न न्यापो न खतड़ो न फोन ते बुधाई पको पान थी वे या गेरन रहाई

0: वेठे विसारे वही ईद गुजरी छजे यार मारे चवे चांडियो तो के खुदा जो कसम मा हली आओ हाने वकोड़ो वहम मा रुगो तात तुझी न बियो कोई कम मा तो अहमद अली तो के पल पल पुकारे वही ईद गुजरी छजे यार मारे कैल वायदा पांजा तू वेठे विसारे वही ईद गुजरी छजे यार मारे
1: वाह वाह
2: वाह सही वाह वाह सही वाह वाह सही वाह
0: वरी सिराकी में बैठ उआ ईद केड़ी सिवाते प्यारे मिठाई माँ की मिसरी सबई खाज खारे उआ ईद केड़ी सिवाते प्यारे मिठाई माँ की मिसरी सबई खाज खारे वगे वेस वांचा जुती बूट जुड़दी भली मुश्क खथूरी न अतुर सेंट वणदी जहर यार जिंदगी मेरी बाब बणदी सबई गद समूरे मैंते खलक खिलदी देवा ते डाढे कु केड़ी में मयारे उआ ईद केड़ी सिवाते प्यारे मिठाई माँ की मिसरी सबई खाज खारे
1: वाह वाह वाह सही वाह
0: ईद उल फितर ते न आयूं न मेकू मंगायूं खाली मुल्क में ते खुशी दी खिलायूं घुमियों गद गेरा मेदा जी जलायूं नकी बाल भाकुर न मुबारक मलायूं रोंजा रत अखड़ियां जिवे चित नसारे उआ ईद केड़ी सिवाते प्यारे मिठाई माँ की मिसरी सबई खाज
1: वाह वाह बाबा वाह वाह गुलाम अहमद वाह
0: ईद उल उजहा ते आ इंतजार तेदा तक इमराही ते जा मांदा मन मेदा रल मिल रकीबा कितई कैर केदा कितई क्यास न कोई जानिब जव

0: जेदा करा गाल कीवें अंदर ए अजारे उआ ईद केड़ी सिवाते प्यारे मिठाई मा की मिसरी सबई खाज खारे उआ ईद केड़ी सिवाते प्यारे कोनी वस मेदा नहीं यार सरंदी कोनी वस मेदा नहीं यार सरंदी मुठी दिल म्यां दाद जियंदी न मरंदी सिवाय सोने केंदी कानी थींदी न चवण कें चंगे दा न मेडी गाल मनंदी होए ढोर बकरी त करा कें किनारे
1: वाह
0: ईद
1: वाह मियां दाद वाह उस्ताद मियां दाद
0: मिठाई मां की मिसरी सबई खाज खारे वाह
2: उस्ताद वाह वाह उस्ताद मियां दाद
0: वाह सही यार
3: वाह वाह वाह गुलाम
2: वाह संजरानी वाह
0: सही सर ईद दे बनायो त वरी फोन भी न पियो
2: हाय हाय हाय द फोन न मैसेज
3: वडी बेवाज बीती हाय न फोन
4: साहब यो गुलाम अहमद जका फोन वाली गाल कई त मु ब कुर्बान फकीर के डाडियो फोन कयो हु ब मगरूर आ मजबूर आ कुर्बान मु जी फोन ब न तो करे या दाम सलीम साहब के बडिया तो
2: वाह सही वाह महबूब भाई मगरूर न हो ज तो महबूब भाई ना है
0: ईद दे बनाचे
2: फोन भाई मगरूर न हो ज वाह सही वाह वाह वाह वाह सही वाह
0: अरे अठई पैरा सादा रंदा मने मांदा बेपरवाह भुरल अन्या फोन नहीं चांदा
3: वाह वाह
0: अठई पैरा मने मांदा बेपरवाह भुरल अन्या फोन नहीं चांदा कर कर काला जिंदड़ी थकी बस गया जो सांवल कर दिलड़ी पकी बस सिवाय यार सोने बे हथ न पुकी बस पुछण पल हिकड़ी नंदा थई पर सादा रंदा मने मांदा बेपर अन्या फोन नहीं चांदा
2: वाह समझ दे से दा फोन चा सही
0: इंशाल्लाह
3: कासम गुणो दुखे
0: केता रायम बहु दर्द बीणे पिरी का पिरायम नको सूर सजण दे के को सुनायम बेतर हुन विछोड़ा ब वेंदे खून खांदा अठई पैरा सादा रंदा मने मांदा बेपरवाह भुरल अन्या फोन नहीं चांदा
3: वाह वाह वाह वाह
0: ते म्यां दाद मन विच मातम मतल्ले दर्दा दा दिल ते खीमा खुतल्ले अन्या निंड ढोलणे सोणा सुतल्ले के को सूर सुनावा में हांदा अठई पैरा सादा रंदा मने मांदा बेपरवाह भुरल अन्या फोन नहीं चांदा अन्या फोन नहीं चांदा
3: मजीद के मोकलियो उस्ताद फोन कर दो
2: सही वाह वाह सही वाह जिया समय ये होया असंजा भलोड़ सुगड़ गुलाम मोहम्मद संजराणी साहब हाने हलों था असंजो मशहूर मारूफ सुगड़ साईं मोहम्मद इदरीस जमाली साहब अजी साहब से बिला छा बताईदा आवाज है जी साईं
3: अर्ज आए त दिल जे पुरजोश दिलासन ते हल्या आया से
2: वाह
3: सुहवारन जे हल्या आया से
2: वाह सही वाह
3: न हल्यो के शाह जो फरमान पांज ने नीवारन जे नियापन ते हल्या आया
2: सही वाह बिस्मिल्लाह सही
3: है ताने आशिक कंपन जो महबूब कावड़ जियो
2: है है
3: हाने महबूब आशिक बेचारो कासिद के मोकले दो कांगल के ते दे खबर भला को हाल हवाल वठी जी इश्क जी गाल हल्या दाने भला या कोई होई किसो भला हले
2: बिस्मिल्लाह
3: अर्ज है तो बुधा कांगा पिरी मु के पुछण इंदो अलाए ना हिने हिन हाल मुझे के दिसण इंदो अलाए ना
2: वाह
3: बुधा कांगा पिरी मु के पुछण इंदो अलाए ना हिने हिन हाल मुझे के दिसण इंदो अलाए ना नहे को डोह दिलबर जो खुदा सु आखता मुजी
2: वाह
3: नहे को डोह दिलबर जो खुदा सु आखता मुजी ढिलायूं ढोल हो मुजु ढकण इंदो अलाए ना बुधा कांगा पिरी मुके पुछण इंदो अलाए ना हिने हिन हाल मुझे के दिसण इंदो अलाए ना
2: वाह सही
3: इलाजन में असर कोने हकीमन वस कया हीला इलाजन में असर कोने हकीमन वस कया हीला दवा हु दर्द मुझे जी करण इंदो अलाए ना बुधा कांगा पिरी मुके पुछण इंदो अलाए ना हिने हिन हाल मुझे के दिसण इंदो अलाए ना बुधा कांगा पिरी मुके पुछण इंदो अलाए ना
2: वाह वाह वाह वाह
3: फकिन में फर्क कोन्हे को सवा दीदार दिलबर जे फकिन में फर्क कोन्हे को सवा दीदार दिलबर जे बगर यहू यार बेपरवाह अंगण इंदो अलाए ना बुधा कांगा पिरी मुके पुछण इंदो अलाए ना हिने हिन हाल मुझे के दिसण इंदो अलाए ना बुधा कांगा पिरी मुके पुछण इंदो अलाए ना
2: वाह वाह वाह
3: अबासी उमर बस हाणे सजण जे हिक सहारे
2: वाह इदरीस वाह
3: अबासी उमर बस हाणे सजण जे हिक सहारे ते मगर बेसहारो बेसहारन के दियण इंदो अलाए ना बुधा कांगा पिरी मुके पुछण इंदो अलाए ना हिने हिन हाल मुझे के दिसण इंदो अलाए ना बुधा कांगा पिरी मुके पुछण इंदो अलाए ना
2: वाह वाह वाह उस्ताद वाह वाह उस्ताद वाह
3: से हाने हे ना वरी उस्ताद मोहम्मद लुकमान कोखर जे सजो अर्थ थयो
2: जी जी बिस्मिल्लाह
3: ताने यो बैत पूरो के पोर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एटमाट बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0303-359-2120।
3: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।

0: करना जलवो पसीथा जवान किरण कोता बन जले तुम गर्रा हाकम हुसन पसी हैरान थी व्या जुल्फ पसी जैवर्रा साई केर गला ही न कामनी सा उठी व्या मजना मस कलंदर पोते राज पुछो रण लजखा जको अकुल जो हो अकाबर्रा
1: वाह साईवा
0: जेजी कल्प वेथी कान का कामिन असा खे के पर चोरे चित चरो बनाई तो जौछ जलाई जिगर इन
1: खबर
0: बादशाही जी बादल चे तू जाकी बुदाती बुधा जिक्र
2: वाह उस्ताद वाह
0: हकीकत हकीकत बुधा हे कर तू साइन की साली उने सूरत मंद जी हूं साली उनकी सूरत मंद जी तू हकीकत बुधाए कर
1: वाह सही वाह अजय समय ये हुआ सुगर फकीर गुलबेग जमाली साहब जनन असा के नड़ बैत बुधायो बैत जिको अलगो से सा कदों दो आए जेके नड़ बैत सडियो अवे दो आए समय ही कचरी तमाम घट जी होयो इन जी करे जीएफएम नेटवर्क जे तसलसल सा ही प्रोग्राम जारी ओसारिया और पेश कयो पे वने हर 15 दी आचर ते 3 का 5 बजे तई पेश कयो अवे दो आए अजी सिंगल बैग साहब
0: साई हाणे दोस्त जेके बुधंदड़ आहिनि उहे फरमाशूं था कनि त फ़क़ीर साईं खे चओ त अञा हिकिड़ो बैत ॿुधाए पोइ जहिड़ो हाल सो पिरियां न सलीम साहब हाणे सुर उमर बारी मुंहिंजे मामे उस्ताद काइल फ़क़ीर जो बैत आहे हाणे मारूही जो मुल्क वसियो थर भर नीख मलहरू थी वयूं हाणे माई मारूही उमर जे कोट में बंदा मारूही उमर खे चवे पियो ओधा उमर मूंखे छॾ त माने माड़ी ते चढ़ी पंहिंजे मुल्क जो दीदार कयां त मुंहिंजे मुल्क में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं थियूं हाणे मूंखे छॾ त पर उमर बादशाह चए थो छॾींदुसि कोन को हाणे माई मारूही जो ॻाल्हाइणा उमर बादशाह उमर बाणे पार ॾेऊं अॼु तारा था तवारी न मुदू मोटी आयू पखी पल पल पुकारीन मारू मुझा मलीर में सांगी मुखे सारीन हिता कई हक महलिया व्या जिगल बो वजाए बीन तू बही कदी हलो वींदे मिसल थी मिसकीन कफन बिना बियो कोन मिलदी यो डाज तोखे दीन अंग उघाड़ो हाल फकीरी ए लटा सब तुंजा लाहीन खण खण चई तोखे खणी हलंदा साहित बसांदी कीन विझी मन मिटीअ जा पंहिंजा तोखे पूरीन पवंदई कम कहार सां जेका काली पिया कंदीन तूं उमर छो थो अरदायूं करी हिन सितम छॾ संगीन कान वेंदी साईं कायम दीन चए नकी मारू मुंहिंजा तोखे मञीन वाह जमालीवा जेके जी खे ओ जियारीन से मुझा मारू अथई मलीर में
1: वाह चांडिया वाह अलगो से नवाज अब्दुल मजीद चांडियो जी समय हि लोक धुन से गड़ गुड़ तक असाई गुलबेग जमाली साहब बुधो समय हाँ हलदासी मोहम्मद इदरीस जमाली साहब तरफ सुगर फकीर मोहम्मद इदरीस जमाली साहब अजी साईं
2: महबूब कोन आयो सलीम साईं
1: अच्छा
2: हाने उस्ताद बेचारो जको सजे हफ्ते जी गाल करे तो बुधाए हु पंजे अंदाज में केड़े हिसाब सा बयान करे तो
1: जी जी
2: उस्ताद जको छंछर रात छाती मा उठ्या सूर सवाया
1: हां हां
2: छंछर रात छाती मा उठ्या सूर सवाया त अल्लाह छो अजीब न अंगण मु आया शेर घटू सजण ले मु वरी वरी वाजाया
1: वाह
2: आघम करे अखड़िन से वाहड़ वहाया खबर न पई खोखर जे प्रीन पेर पाया ओ जागा अजाया वे लुड़ी रेट लुकबान जे
1: वाह सही वाह
2: पसे आचर रात अजीब लदे दिल कयो दाहू सुडकण सहकण ते सिवा आजू इलाहू मौला आन महबूब के जोजते हेडाहू दीदू ते दिलबर ले तू रोज तकिन रहू मुखुयल जो खोखर जे तू वटू बंद वाहू कंदो निर्मल निगाहू मु लुढ़ल ते लुकमान चे
1: वाह सही वाह
2: पर सुमर रात सदे सदे मु पाड़ो पसरायो वेड़े वारा वण लगा ते छा थई वेसला विनायो
1: जी
2: आधी रात जो थी मद कसम दाहू के सजो पाड़ो अची कर जो फकीर छा थयो
1: जी
2: सुमर रात सदे सदे मु पाड़ो पसरायो वेड़े वारा वेण लगा छाती वेसला विनायो सुतन के सूर रही थी तायो तपायो मु चयो त महबूब न अंगण मु आयो खुदा कारण खोखर जो है त सजण सदायो न त लुकमान लटायो खणी दर वणी दिल
1: हाय हाय हाय जदी सवा
2: पोसेन के आसरो दनो त सुबह जो सी वीदा बस वणी दो ते तो अंगारे रात आसरो हो त अंगण मु ईदा दिलासो इन दुखी दिल के जी दिसण सा दीदा वहम विचार वजूद मा वणण का वींदा देई प्यार पिरी मुखे वठी नाल वींदा लखे सान लुकबान चे मु थकल ते थींदा यार अची पिरी पींदा मूसा प्याला पिरी
1: वाह वाह सही
2: पर अरबा रात उदास थी कोन आयो सही सलीम सही
1: वाह सही वाह
2: कोन आयो अरबा रात उदास थी फरफर अख फरी जो भड़की बाह बदन ते बारण करे बरी सजी रात सूरन में मुझे वेई दिल डरी वेठे बीठे वा जाए पियो वाटू दिसा वरी तमन लालन चे लुकबान चवे थिया चाक चरी यार साजन जी त सरी पर पांजी सरी कान साजन
1: पांजी सरी कान साजन
2: ते फकीर पोच पो यार खमीस रात खट छड़े मु रणियो करे रुनो
1: हाय हाय
2: चोलो फाड़े चाक कैम पे बाकी बदन भिनो तले केड़े कसूर करी बनी दुहागा दिनो नकी खत खोखर चे नकी पिरन मुको पन्नो मन कन लुत्फ लुकबान चवे आहा को जो किनो पर अलै छा खौ यार छिनो जो सलीम सही दिल पर बंद दीदार कयो
1: वाह सही वाह वाह सही
2: ते पो जुमे रात चेदा जुमे रात जानिब ल मुजो संध संध थियो साणो रोंदे सजी रात टिप्स वेगाणो सिवा ते सजण जे भला के सठ है मानो खबर न पई खोखर जे तले किए रुठो राणो हफ्तो सजो है कैम पर मुजो अखर ना घाणो यार मुजी उम्र अजाणो लुढ़ी वे लुकबान चे लुढ़ी वे लुकबान
1: हाय वाह सही वाह सही वाह असमें वक्त जो एहसास पौना पंज थन पे वक्त है कमर्शियल नंढड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो कहने ना वेणो बुधंदा रहो जीए एफ एम नेटवर्क असा चौदह नंढड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का पो असा जो अवन जो साथ रहंदो पंजे वगे ताणी
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जी एफ एम 88 नेटवर्क ते
4: जो शहर बहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
3: जी एफ एम 90.8

0: वेलकम बैक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वरी ॿीहर अवां सभिनी सजणनि ॿुधंदड़नि दोस्तनि भेनरुनि भाइरनि खे वेलकम भलीकार अचूं था। समिन असां सां गॾु असांजे सिंध जा मशहूरु मारूफ सुघर असांजे सुघर मोहम्मद इदरीस जमाली साहिबु बेत ॿुधायो पिए, तमामु बहितरीन बेत ॿुधायो पिए। कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थी वियो, हाणे वापसि हलूं था साईं मोहम्मद इदरीस जमाली साहिबु तरफ़ जेके असांखे कंप्लीट अजय समीन। हाणे हलूं था सुगर फ़क़ीर मोहम्मद कासिम डायरी साहिब तरफ़। अजी साईं
1: जी साईं जी साईं बेत आहे मोहम्मद इदरीस साहिब, तमामु बहितरीन ॻाल्हियूं ॿुधायूं। ही बेत तव्हांखे ॿुधायूं था त सुरीला माण्हू सकरण जा सोणी अथसि बाज़ारि।
0: वाह
1: हा साईं, सुरीला माण्हू सकरण जा सोणी अथसि बाज़ारि, सॾे विहारिन सिक मां पाए ॿाहूं हार।
0: वाह
1: सॾे विहारिन सिक मां पाए ॿाहूं हार, कचहरियूं कनि कुर्ब जूं अहिड़ा मिठा मिठा उचार। कचहरियूं कनि कुर्ब जूं अहिड़ा मिठा मिठा उचार, ॿुधी महफ़िलूं मलूकनि जूं अचो वञे दिलि खे करार।
0: वाह
1: ॿुधी महफ़िलूं मलूकनि जूं अचो वञे दिलि खे करार, मोहबती माण्हू सिंध जा मिड़ेई आहिनि मज़ेदार। मोहबती माण्हू सिंध जा मिड़ेई आहिनि मज़ेदार, हमल फ़क़ीर बि हित्या।
0: वाह
1: हमल फ़क़ीर बि हित्या, शहीद बाबा बुखारी ऐं बिलावलीअ जी मज़ार।
0: वाह
1: क़ुर्बान फ़क़ीर, हमल फ़क़ीर बि हित्या, शहीद बाबा बुखारी ऐं बिलावलीअ जी मज़ार। जे नथो अचई इतबार त आ हली हिकु वार, त ॾेखारियई बिलावलीअ जी दरगाह, पीर मोहम्मद दीन, पीर मोहम्मद दीन जे ॻोठ मुला सांद में, पीर मोहम्मद दीन जे ॻोठ मुला सांद में। साईं हाणे सिंगार जो बैत ॿुधाईंदासूं।
0: जी साईं
1: सिंगार फ़क़ीर गुलबेग, सिंगार जो बैत आहे त हुसन वारा न भेट कयो हसीन दिलबर अञा ॿियो आहे।
0: वाह वाह साईं,
1: हुसन वारा न भेट कयो हसीन दिलबर अञा ॿियो आहे, बदन ते बखमल पोशाक पायो जवानी जोहर अञा ॿियो आहे। मुश्क अंबर कथूरी लायो उमदो अहमर अञा ॿियो आहे, पर किताब कारी लिखिया ऐं पढ़िया अथई पर हाफ़िज़ कसर अञा ॿियो आहे। पर निमाज़ ऐं रोज़ा बि साबित रखिया अथई पर अहमाल बहितर अञा ॿियो आहे। खाराए माण्हू सखी थी पर सखियुनि जो दर अञा ॿियो आहे। हातम सखी होजे मगर शेर हैदर अञा ॿियो आहे। ॾात वारा ॾेह में हुआ पर भिटाई नंबर अञा ॿियो आहे। सवा लख न बि आया ज़मीन ते पर रहमतुल्ला रहबर अञा ॿियो आहे, अञा ॿियो आहे, अञा ॿियो आहे, अञा ॿियो।
0: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, तमामु ज़बरदस्त सिंगार जो शेर। हाणे हलूं था सुगर फ़क़ीर क़ुर्बान अली जलबाणी साहिबु तरफ़। जी साईं
2: साईं बेत ॿुधाईंदासीं साईं आशिक माशूक साईं।
0: जी साईं
2: साईं आशिक अला साईं साईं माशूक मोहम्मद मुस्तफ़ा साईं मतिलब पहिरियां पहिरियां माण्हू सवे कंदो सिंगार, हिकु हिकु नेण खणंदो निमाणू। आशिक जो मतिलब पहिरियां पहिरियां माण्हू सवे कंदो सिंगार, हिकु हिकु नेण खणंदो निमाणू। आशिक दर दोस्त जे सो वारे विकाणू, उन जो रतु उठ खाए लाणू। किन वेचारनि खां वियो हलियो, किन जे साह खे सिबाणू। माशूक मोहम्मद मदनी लाइ वते थो विघाणू। जिते राजन ईंदो राणू, उते पतो न पवंदो पुरसलात जो, उते पतो न पवंदो पुरसलात जो। पिरी हूंदो पाण हिकु मुंहिंजो हो त ॿियो आरी हूंदो अॻवान। लाइ ला इलाह मोहम्मद रसूल ला साथी हूंदो साण। ॾोहन ऐं गुनाहनि जी मेन विझंदो माण, परची पवंदो पाण मालक मुंहिंजो मामंद जे, मालक मुंहिंजो मामंद जे।
0: वाह वाह साईं वाह। हाणे हलंदासीं सुगर फ़क़ीर ग़ुलाम मोहम्मद सजराणी साहिब तरफ़। अजी साईं बिस्मिल्लाह।
3: सर बैत आहे ज़माने जे हिसाब सां, अर्ज़ थियो त ज़ालिम लिखी मज़लूम लिख, हिन ते बि लिख हुन ते बि लिख। फ़क़ीर चयो त कंहिं ते लिखी कंहिं ते लिखां, जंहिं ते चवी तंहिं ते लिखां। ज़ालिम लिखी मज़लूम लिख, हिन ते बि लिख हुन ते बि लिख। मरे बे गुनाह थी ते कारी ते लिख, या फट मथे में तगारी ते लिख। डंगिन नाग जंहिंखे ते हारी ते लिख, नचे रोज़ नाणे ते नारी ते लिख। ज़ालिम लिखी मज़लूम लिख, हिन ते बि लिख हुन ते बि लिख।
0: वाह वाह
3: جنی اگھاڑا ابانا لکھا رولیا لاش جنجا سرانا لکھا رونا نین جنجا نمانا لکھا فریا جن گھوٹن تے سے گھانا لکھا کہتے لکھی کہتے لکھا جنتے چویں تے لکھا
2: واہ واہ صحیح واہ
1: واہ صحیح واہ
3: بھکھے

0: लिख हिन तैब लिख हुन तैब लिख उड़ा में सिंधुओं मां तिवारी लिखा रही का नसाई कटारी लिखा कुसे रोज कुआरी वेचारी लिखा लथी कान सिरता खुआरी लिखा कहते लिखी कहते लिखा जैते चवी तैते लिखा नकी वन वेढ़ी चा न संघार लिख नकी कोने धन धनारन न धनार लिख नको उठ अबाणा न ओठार लिख किथे गहण गोठी न गोठार लिख जालिम लिखी मजलूम लिख हिन तैब लिख हुन तैब लिख मिड़ई शे महागी कलर ते लिखा पति खंड पटाटे बसर ते लिखा कने दाल मुंग जी मटर ते लिखा मिले कान कणक थी ज्वर ते लिखा कहते लिखी कहते लिखा जैते चवी तैते लिखा काहिन माल मारुन जो तु चोरन ते लिख बदन रोज बकरियों बि ढोरन ते लिख फुरू रोज रोडन ते तु फोरन ते लिख घुरन भुंग माणू लुटेरन ते लिख जालिम लिखी मजलूम लिख हिन ते बि लिख हुन ते बि लिख
1: वाह सही वाह वाह वाह
0: फकीर चए तो हुजे सूर हिकड़ो ते लिख ते लिखा
1: आए हाय

0: लूम लिख हिन ते बि लिख हुन ते बि लिख फ़कीर चयो त पढ़नि की नंढड़ा इलम ते लिखां ॾिसनि रोज़ सीडियूं फिल्म ते लिखां लिखनि कोन सच था कलम ते लिखां कोन्हे क्यास कंहिं में ज़ुल्म ते लिखां कंहिं ते लिखी कंहिं ते लिखां जंहिं ते चवी तंहिं ते लिखां भरियल सभु जो सीनू ज़हर ते बि लिख कोन्हे ख़ौफ़ कंहिंखे क़बर ते बि लिख आहे भाऊ क़यामत कहर ते बि लिख न की यादि ॾियारो हशर ते बि लिख ज़ालिम लिखी मज़लूम लिख हिन ते बि लिख हुन ते बि लिख भरे भाण बरकत भलारा लिखां सुहन कप सिंधुअ जा किनारा लिखां कुल्हे जाम मोटी के ॼारा लिखां थियन नाज़ नूरिन के न्यारा लिखां कंहिं ते लिखी कंहिं ते लिखां जंहिं ते चवी तंहिं ते लिखां फ़क़ीर चयो त थियन अॼु अबाणा तो आबाद लिख थियन अॼु अबाणा तो आबाद लिख बिना ज़र भलारा ज़िंदा आबाद लिख मारू माल माण्हू मियां दाद लिख शकर शीर शहद दिल शाद लिख ज़ालिम लिखी मज़लूम लिख हिन ते बि लिख हुन ते बि लिख कंहिं ते लिखी कंहिं ते लिखां जंहिं ते चवी तंहिं ते लिखां
1: वाह संजराणी वाह वाह संजराणी वाह वाह साईं वाह
0: फ़क़ीर चयो त तुंहिंजी यादि सीने निया पियो इन ई दम दिलासे अञा जीअं पियो जीअं पियो तुंहिंजी यादि सीने निया पियो इन ई दम दिलासे अञा जीअं पियो जीअं पियो

0: निया प्यो निया प्यो इने दम दिला से अन्या जिया प्यो जिया प्यो।
1: वाह सही बा, वाह सही बा।
0: बगीचेत कया सिर फिदा थो वारन वार वारे वडी दिल विछोड़े दुखन जान गारे न तदबीर तन के नकाबी वणे थी तसव्वुर स तुंजे भगल दिल बणे थी सदक ते सूरत ता थिया प्यो तुंजी याद सीने निया प्यो इने दम दिला से जिया प्यो। फकीर चयो त रगन नई बदन में तुझो नाम आहे तुझी वात वाई सुबह शाम आहे कढ़ो लोक लोका तुझे यार खातिर कई यार कोठिन पे मुखे त काफिर संदो इश्क सजदो कयां प्यो तुझी याद सीने निया प्यो इने दम दिला से अन्या जियां प्यो।
1: वाह सही वाह, वाह सही वाह।
0: मियां दाद तो के घणो वई संभारे लिखियो जो मिसाका उहो प्यो तो पारे वसलरी अहां जे शफा की न थींदी दुखी दिल मुझी जी दवा की न थींदी बिठो दम लबन ते डियां प्यो
1: तुझी
0: याद सीने निया प्यो इने दम दिला से अन्या जियां प्यो तुझी याद सीने निया प्यो इने दम दिला से अन्या सर जियां प्यो जियां।
1: वाह सही वाह, वाह सही वाह।
2: संजराणी वाह, वाह संजराणी वाह।
1: अजी असमें हाने हलों था असुगर फकीर गुलबेग जमाल साहब तरफ आखिरी चंद मिनट आइन अजी साईं।
2: साईं हाने पीर एजा साईं जी काफ़ी एक असांखे ॿुधाईंदा से सुघड़ाइप जूं त ॻाल्हियूं घणियूं आहिनि पर ही काफ़ी असां वरी हाणे काफ़ी जे अंदाज़ में ॿुधाईंदासीं जो साईं एजाज़ बादशाह जी काफ़ी आहे सुर उमिरि मारियूं।

0: कैद कजा जो बंद करारो चवण चलण जो ना चारो
1: साईं वाह वाह।

0: वाह गुल बेगवा वाह गुल बेगवा
1: ओ सिक्की गुजार अम्मा उम्र सारी केन आदी का दिलदारी
0: वाह सही

0: तांगड़े मुजा मारू लडे व्या
1: वाह
0: ओ सोन मोरियूं हीरा जहवार जमंद जरियूं जरबफ्त जेवर
1: वाह साईं वाह वाह गुल बेगम
0: सोन मोरियूं हीरा जहवार जमंद जरियूं जरबफ्त जेवर से सब भाया थी मारू थी चवे सोन सोन तो जा माज की थी भाया ए सब भाया थी ओ नागड़े मुखे मारे मारुन जी तांगड़े मुजा सांगी लडे व्या
1: वाह सही वाह वाह सही वाह तमाम जबरदस्त मोहतरम बुधंदड़ो अज जे हन सुगर कचहरी में अवां जे साथ मोहब्बतन ए दुआउन दुआउन जे लाए दिल जे गहराइन सा थोराई ता आयो उम्मीद ता करियो ता अज जो गालियों शायरी ए सुगंध भरियो यादू अवां जे दिलन के वणियो हुंदियो हाने मोकलण जो वक्त अची वियो आहे पर दिलन जा रिश्ता ए मोहब्बत हमेशा कायम रहंदियो ईंदड़ प्रोग्राम में वरी नवन ख्यालन नयन गालन ए सोनन महफिलन सा अवां जी खिदमत में हाजिर थिंदासी तेसी तें दे लाए पंहिंजे मेज़बान का इजाजत वठो खुश रहो आबाद रहो मुर्कंदा रहो ए सिंध जी सुगंध के पंहिंजे दिलन में जिंदा रखो अला भाई सिंध सलामत साथ सलामत अवां सलामत जेडा पेर तेडा खैरो खैर
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जेको असां चाहियूं था इहो ईरान खां हासिल करे रहिया आहियूं ईरान एटमी हथियार न ठाहिण समेत एटमी बम ख़रीद न करण जी बि ख़ातिरी कराई आहे माहिदे ते सही थींदे ई आबना हरमुस खोलियो वेंदो असांखे का जल्दी न आहे सुठो माहिदो चाहियूं था ऐं माहिदे जे वेझो बि आहियूं ईरान सां सुठी डील न थी त ॿीहर ऑपरेशन करणो पवंदो

अमरीका अपने हुरमुस में नाकाबंदी खत्म करने वाले ऐलान तां फिरी वो अमरीकी जंग वारे वजीर पेट हेक सेठ सिंगापुर में मीडिया से गलाइंदे चयवाए ता अपने हुरमुस की नाकाबंदी बरकरार आहे। ईरान में भी हर फौजी कार्रवाई करनी पई ते कंदासी अड़ो मायदो कबो जो अमरीकी आवाम के मफाद में हों ईरान से मायदो थे अपना हुरमुस के खोलो वो अपना हुरमुस एक टोल फ्री रस्त हों जो सारी दुनिया इस्तेमाल कर सी बड़ी अग अमरीकी सदर अपना हुरमुस ताकाबंदी खत्म करण जो ऐलान किया हो।

चीनी फौज वापारी पहरी जहाजन ए ऑयल टैंकर्स लाए नई वार्निंग जारी करे छी। ईरानी फौज जो चवण आए तो ईरान की इजाजत का सिवाय हुर्मुज के सफर की कोशिश खतरनाक साबित थी। आबरा हुर्मुज से ईरान जो कंट्रोल मजबूत है। ईरानी पार्लियामानी स्पीकर बाकर कालिपाफ चयो आहे त अमरीका सा ठोस नतीजन का सिवाय को भी माहिदो न थींदो। ईरानी अवाम जे हकन जी जमानत न मिली तो को भी माहिदो कबूल न हूंदो। ईरान दुश्मन के अजीम ए तारीखी जंग में पुठते धिकी रहियो आहे। शहीद रहबर एक मजबूत ईरान जो बुनियाद रखियो।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड महरा पर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 0242460100

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: अस्सलामु अलैकुम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी एफएम रेडियो नेटवर्क पर। प्रोग्राम आपका अपना स्पोर्ट्स राउंडअप, मैं हूं आपका अपना मेजबान राणा अशफाक। जी जनाब, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज कोई पहली मर्तबा होगा कि मई और जून में कोई टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही हो और वनडे सीरीज खेली जा रही हो। बहुत कम कम माजी में ऐसी मिसालें मिलती हैं, लेकिन ये मुकाबला इस लिहाज से काफी अहम था कि ये पाकिस्तान का 1000वां ओडीआई मैच था। यानी पाकिस्तान की टीम ने कुल मिलाकर अब 1000 ओडीआई मैच खेले और पाकिस्तान ये तीसरा मुल्क बना है दुनिया का जिसने 1000 या उससे ज्यादा ओडीआई यानी वनडे मैचेस खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जनाब इसमें पहले बैटिंग की और 200 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम बना सकी और पाकिस्तान की टीम ने टारगेट बआसानी चेस किया। 200 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने 44.1 ओवर में, उनकी टीम ऑल आउट हो गई थी। एलेक्स कैरी जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज थे, उनको कैच किया था सलमान अली आगा ने। 19 रन बनाए 24 गेंदों पर, 4 चौके लगाए एलेक्स कैरी ने। मैट शॉट जो कि ओपनिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने 76 गेंदों पर 55 रन इनिंग्स खेली जिसमें 6 चौके थे। उनको स्टंप किया था मोहम्मद गाजी गौरी ने, जिन्हें एज विकेट कीपर बैटर टीम में शामिल किया गया है। अरफात मिनहास की गेंद पर उन्होंने जो है वो 55 रन बनाए थे। अरफात मिनहास का भी ये पहला मुकाबला था और उनकी बॉलिंग का जिक्र तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले मुकाबले में उन्होंने 5 विकेट लेने का एजाज हासिल किया है जो कि पाकिस्तान के लिए एक कारनामा है। पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने अपने पहले ही ओडीआई मैच में 5 या उससे ज्यादा खिलाड़ी आउट किए। जोश इंग्लिश जिन्हें एज कैप्टन टीम का यहाँ भेजा गया, उनको LBW के अरफात मिनहास ने 13 रन बनाए, 22 गेंदों पर 1 चौका लगाया उन्होंने। लेबरशेन LBW बोल्ड अरफात मिनहास वो कोई रन न बना सके 2 गेंदों पर। कैमरन ग्रीन बोल्ड अरफात मिनहास वो कोई रन न बना सके। मैट रेनशॉ जो कि माजी में ओपनिंग भी करते रहे हैं वो टीम में आए हैं, उनको इब्रार अहमद ने बोल्ड किया, 61 रन बनाए 63 गेंदों पर, 5 चौके और 1 छक्का लगाया तेज बैटिंग की। और पीक ने 7 रन बनाए 16 गेंदों पर, 1 चौका लगाया। कोनोमैन ने 24 रन बनाए 40 गेंदों पर, 2 चौके लगाए, उनको कैच किया बाबर आजम ने हारिस रऊफ की गेंद पर। नेथन एलिस को अरफात मिनहास ने बोल्ड किया, 8 रन बनाए 14 गेंदों पर। सांगा बोल्ड शाहीन आफरीदी कोई रन न बना सके जबकि स्टैन लिक नॉट आउट रहे, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया। 13 एक्स्ट्रा थे, पहली विकेट 34, दूसरी 62, तीसरी 63, चौथी 68, पांचवी 123, छठी 145, सातवीं 179, आठवीं 199, नवीं 200 और दसवीं विकेट भी 200 के स्कोर पर गिरी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। शाहीन आफरीदी जो कि टीम के कैप्टन है, उन्होंने 6 ओवर किए 19 रन 1 विकेट। हारिस रऊफ 5.1 ओवर 24 रन 1 विकेट। अबरार अहमद 10 ओवर 44 रन 2 विकेट, मगर पिक ऑफ द बॉलर अरफात मिनहास 10 ओवर 32 रन और 5 विकेट हासिल की। शादाब खान 8 ओवर 54 रन, कोई विकेट नहीं महंगे रहे। सलमान अली आगा 5 ओवर 21 रन और 1 विकेट उन्होंने हासिल की। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। साहबजादा फरहान कॉट मैट शॉट बोल्ड तनवीर सांगा 28 रन बनाए 33 गेंदों पे 3 चौके लगाए। मां सदाकत कॉट मैट शॉट बोल्ड मैथ्यू कोनोमैन 8 रन बनाए 14 गेंदों पर 1 चौका लगाया। बाबर आजम जिन्होंने PSL में सबसे ज्यादा रन किए, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रहे, उन्होंने यहां भी अपनी फॉर्म को कंटिन्यू किया। नेथन एलिस की गेंद पे बोल्ड हुए मगर उससे पहले उन्होंने 69 रन बनाए 94 गेंदों पर, 4 चौके लगाए और 1 छक्का भी लगाया। शानदार अंदाज में बैटिंग करते दिखाई दिए। गौरी जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो 2 डाउन पे बैटिंग के लिए आए थे और शानदार बैटिंग की, 65 रन बनाए 92 गेंदों पर, 8 चौके उन्होंने लगाए। LBW आउट किया नेथन एलिस ने। अरफात मिनहास नॉट आउट रहे 18 गेंदों पर, 17 रन बनाकर 17 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का लगाया। सलमान अली आगा LBW लबशेन 6 रन बनाए 4 गेंदों में 1 चौका लगाया, जबकि समद जो थे वो 1 रन पर नॉट आउट रहे। देयर वर 7 एक्स्ट्रा एज वेल और पाकिस्तान ने टोटल 202 रन बना लिए 42.3 ओवर में 5 विकेट पे, जबकि अभी शादाब खान शाहीन आफरीदी हारिस रऊफ और अबरार को बैटिंग के लिए आना था। फॉलो विकेट पाकिस्तान की पहली विकेट 25 पे गिरी, दूसरी विकेट 49 पे, तीसरी 176 पे, यानी 127 रन गौरी और बाबर आजम के दरमियान बने। फोर्थ विकेट फेल एट 185, देन पाकिस्तान डिड लूज देयर फिफ्थ विकेट एट 195 और वहां से पाकिस्तान अपने टारगेट को चेज करने में कामयाब रहा। नेथन एलिस 7 ओवर 45 रन 2 विकेटें, स्टैन लिक 6 ओवर 37 रन कोई विकेट नहीं, टूर्नामेंट 10 ओवर 29 रन्स एक विकेट, सांगा 10 ओवर 31 रन्स एक विकेट, शॉर्ट ने 3 ओवर के 11 रन्स कोई विकेट नहीं, रेनशॉ ने 5 ओवर के 33 रन्स कोई विकेट नहीं, और मार्नस लबशे ने 1.3 ओवर में 15 रन्स देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। जी जनाब, वुमेन का वर्ल्ड कप भी आ रहा है इस महीने की 12 तारीख से, यानी अगले महीने की जून की, और साथ साथ जो है वो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का आगाज भी हो रहा है 4 तारीख से। पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स के तारीखी मकाम पे खेला जाएगा। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा। पाकिस्तान वो आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान वुमेन सीरीज भी जारी है, एंड देन देयर विल बी लॉट ऑफ अदर थिंग्स। टेप बॉल क्रिकेट भी जारी है दुनिया भर के मैदानों पर, उसके हवाले से भी आपसे बातचीत रहेगी। इस वक्त ले लेते हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक से लौटते हैं तो फिर वुमेन वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे। लेट्स टेक ए ब्रेक इन प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। जुड़े रहिए मेरे साथ यानी राणा शफाक के साथ, और सुनते रहिए अपना फेवरेट चैनल GAFM रेडियो नेटवर्क।
1: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, मां अख्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0303-359-2120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर।

वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 2196 851

बहुत ही उम्दा बल्लेबाज थे टॉप ऑर्डर के इंसफा मलक, और पाकिस्तान की बहुत सारी फतुहात में उनका बड़ा अहम किरदार भी रहा है। तो बहरहाल बाबर आजम उससे तो अभी खैर आदमी भी नहीं पहुंचे 83 के, लेकिन फिर भी ही हैज स्कोर्ड 38 हाफ सेंचुरीज एट एन गुड एवरेज। और बाबर आजम एक बहुत ही अच्छे सरकर्दा बल्लेबाज है। मैंने जिक्र किया ही था प्रोग्राम के पिछले स्टिंट पे कि बहुत अच्छा खेले वो, खास तौर पे अगर जिक्र किया जाए पीएसएल का, उन्होंने सेंचुरीज भी स्कोर की, उनका स्ट्राइक रेट भी इम्प्रूव्ड लगा, और ये एक अच्छी पेशकदमी है बाबर आजम की एक बार फिर टू गेन हिज फॉर्म बैक, टू गेट हिज फॉर्म बैक। अच्छा, गौरी ने जो बैटिंग की है 92 गेंदों पे 65 रन, विकेट कीपर बैटर, हमने देखा रिजवान ने टेस्ट मैचेस में गो के अच्छी कारकर्दगी दिखाई, गॉट इंजर्ड मुल्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा वो खेल नहीं पा रहे पिछले कुछ दो तीन सालों से, जहां तक ओडीआई एंड टी20 का ताल्लुक है। तो पाकिस्तान हैज बीन सॉर्ट ऑफ स्ट्रगलिंग फॉर अ गुड विकेट कीपर बैटर। तो 92 गेंदों पे 65 रन की एक समझदाराना इनिंग्स, एक दानिशमंदाना इनिंग्स के लिए आपके विकेट कीपर गौरी ने, लेट्स सी इफ ही कैन कंटिन्यू, अगर वो इसी तरह अपने फॉर्म को जारी रखें और इसी तरह अपनी सलाहियतों का इजहार करें, क्योंकि एट टाइम्स वनडे मैच में आपके पास वक्त होता है टू एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू द जो उस वक्त डिमांड हो, जो तकाजा हो। यानी 200 रन आपको चेस करने थे तो 92 गेंदों में 65 रन इज अ गुड स्कोर, वही अगर आप 250 चेस कर रहे होते तो आई वुड हैव डिमांडेड, आई वुड हैव सेड के 75 करें आप 92 पे। तो ये थोड़ा थोड़ी कैलकुलेशन होती है, अगर आप 300 चेस करें देन यू शुड बी स्कोरिंग 90 और 85 एटलीस्ट आउट ऑफ 92 बॉल्स। ये अगर कैलकुलेशन आप कर पाते हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं कि कोई आपके स्ट्राइक रेट पे तनकीद करे। अगर 200 रन चेस कर रहे हैं तो आप 90 गेंदों पे 50 भी करें चलेगा। तो इसलिए बाबर आजम की 94 गेंदों पे 69 रन की इनिंग्स मैं समझता हूँ वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड अ वेरी गुड वन। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी कारकर्दगी जो है आपकी टीम की फतह में किरदार अदा करे। आपको एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको मैच जीतना है, ठीक है? तो वो गौरी को भी मैं उसके लिए सराहूंगा और बाबर आजम को भी। अब देखें आगे चलकर। अच्छा, एक बात आप नोट कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं है जिस ऑस्ट्रेलिया को हम जानते हैं, ना तो ये स्टीव वॉ की टीम है, ना इवन मार्क टेलर की टीम है, ना रिकी पोंटिंग या उसके बाद माइकल क्लार्क की। ये ऑस्ट्रेलिया की जो 80s के बाद, यानी एक दौर आया था ऑस्ट्रेलिया का जब एलन बॉर्डर ने टीम को संभाला, उसके बाद इस वक्त सबसे खराब क्रिकेट वो खेल रहे हैं। खास रूप से आपने टी20 वर्ल्ड कप में देखा जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त, श्रीलंका के हाथों शिकस्त, फिर यहाँ जब पाकिस्तान आए तो तीनों टी20 हार गए, और अब ओडीआई में भी कल जिस तरह की कारकर्दगी, तो दिस इज नॉट द ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि जिस ऑस्ट्रेलिया को हम जानते हैं, या वो ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट किए थे पिछले कम से कम 99 के वर्ल्ड कप से लेकर ऑलमोस्ट 2021-22 तक जो हाई स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए, अब वो टीम नहीं है। इसमें वो स्पार्क, वो ब्रिलियंस, वो चीजें नजर नहीं आती। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया हम ये सब जानते हैं कि उनकी काउंटी टीम भी जो होती है उसमें भी एक फाइटिंग का स्पिरिट, फाइटिंग का जज्बा हमेशा मौजूद रहता है। और इसमें भी कुछ नाम ऐसे हैं, एलेक्स कैरी इज अ वेरी गुड विकेट कीपर बैटर एंड अ वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल एज वेल। मैट शॉट को हम सब जानते हैं, रेन शॉ को तो कभी इयान चैपल बहुत हाई रेट करते रहे हैं, और रेन शॉ को वो हमेशा सजेस्ट करते रहे कि टेस्ट मैचेस में ओपनिंग करनी चाहिए जिस तरह के मैथ्यू हेडन किया करते थे। इसी तरह कुछ और खिलाड़ी भी इसमें अच्छे हैं, लवेस शेन बहरहाल उनके टेस्ट मैचेस के और ओडीआई के बड़े सरकर्दा क्रिकेटर हैं, जो कि अब टी20 भी खेले पाकिस्तान में, पीएसएल भी, यानी कैप्टन हैदराबाद, और अच्छी कैप्टनसी की और मैच जितवाई भी उन्होंने, खुद भी रन किए, स्मिथ भी बहुत अच्छा खेले थे। तो कहीं ना कहीं ये कोई बुरी टीम तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, वेरी गुड साइड, मगर फिर भी वो स्प्रिटेड, वो हाई स्टैंडर्ड जो जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा से जानी जाती रही है, उसकी कहीं ना कहीं बहरहाल ये बात हमें माननी पड़ेगी कि कमी है, दैट्स व्हाट इज लैकिंग इन द ऑस्ट्रेलियन टीम। लेकिन फिर भी उम्मीद करनी चाहिए कि अगले जो दो ओडीआईज हैं वो काफी फाइटिंग हो सकते हैं। और मुझे याद आता है जो इंडिपेंडेंस कप खेला गया था 1997 में, आप लोगों को याद होगा, जस्ट आई वुड लाइक टू टेक यू बैक टू द हिस्ट्री, उसमें मई और जून में मुकाबले हुए थे इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, क्योंकि वो उस वक्त भी कुछ शेड्यूल ऐसा था और इंडिपेंडेंस कप ऑर्गेनाइज करना ही करना था,
और उसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इंडिया ने हिस्सा लिया था 1997 में। और सईद अनवर ने चेन्नई के मुकाम पर, जो कि उस वक्त यूज टू बी कॉल्ड मद्रास, 194 रन बनाए थे और पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को वो मैच हराया था 327 रन करके। राहुल द्रविड़ ने भी बाद में सेंचुरी स्कोर की थी। तो उसके बाद से मुझे याद नहीं आता कि कोई बायलैटरल या ट्रायंगुलर सीरीज ऐसी हुई हो पाकिस्तान इंडिया में जहां मई और जून में मैचेस खेले जा रहे हैं इतनी गर्मी के बावजूद। इससे भी अंदाजा लगाइए कि आजकल क्रिकेट कितनी ज्यादा होने लगी है, क्रिकेट के तकाजे कितने बढ़ गए। और वहां मुझे याद है 4:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड वक्त के मुताबिक मैच शुरू होता था या 5 बजे, ताकि गर्मी की शिद्दत से या हिद्दत से बचा जा सके, ताकि उस वक्त शाम का वक्त तकरीबन हो चुका हो 4:30 बजे, दोपहर का वो सूरज गुजर चुका हो जो कि झुलसा देता है। तो लेकिन अब जाहिर है चीजें बदल रही हैं, क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है, आपको विंडो, आपको मौका नहीं मिलता सीरीज ऑर्गेनाइज करने का। अब देखें अभी PSL आपकी होके हटी है, अभी IPL चल रही है, इंग्लैंड का T20 ब्लास्ट शुरू हो गया है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होनी है, इंग्लैंड इंडिया की वुमेन जारी है, पाकिस्तान आयरलैंड वेस्ट इंडीज की वुमेन जारी है, और साथ में ये अब आपका वुमेन का वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो अंदाजा अब ICC ने आपके इतने स्लॉट जो है वो ले लिए हैं जिसमें कि वुमेन का T20 वर्ल्ड कप भी है, वुमेन का ODI वर्ल्ड कप भी है, उसके बाद आपका T20 वर्ल्ड कप भी है, उसका मेंस का, और साथ साथ ODI का वर्ल्ड कप भी है, फिर टेस्ट चैंपियनशिप भी है, साथ साथ आपकी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, साथ साथ आपके और कई इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें ICC का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है। फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अपनी जो होम सीरीज और अपने जो होम इनका उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, इंडिया अपना IPL अपनी होम सीरीज से हटके कराता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का यह है कि उनकी होम सीरीज के पैरेलल चलती है उनका बिग बैश भी और इनकी T20 ब्लास्ट और 100 भी साथ में। अब जैसे 4 तारीख से टेस्ट मैच भी होगा, उसी दौरान में रात के वक्त या सुबह के वक्त या गैप के दिनों में उनके T20 के और दूसरे मैचेस होते रहेंगे डोमेस्टिक के। मगर इंडिया को तो 2-2.5 महीने चाहिए अपने IPL को अलग से ऑर्गेनाइज करने के लिए। यानी ये जो विंडो है अप्रैल से लेकर मई की, वो तो इंडिया बिल्कुल खा जाता है और उसमें वो बर्दाश्त नहीं कर रहे कि उसके पैरेलल कोई सीरीज हो रही हो, कोई मैचेस हो रहे हैं। तो अब इतना टफ हो गया है, तो दैट्स व्हाई दे हैव टू प्ले इन जून। और फिर ये अब वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप PSL और IPL भी पैरेलल चला है, साथ साथ चला है। तो ये वो चीजें जो बदली हैं या बदल रही हैं। बहरहाल IPL का आज फाइनल है, गुजरात टाइटन्स और रॉयल्स वहां से फाइनल में पहुंच गए जहां से कुछ सोच नहीं रहा था मैंने कुछ। जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग IPL आई वाज चेकिंग द रैंकिंग, कोई ये दोनों टीमें जो थी वो बहुत ही पीछे मौजूद थी, कोई 7वें 8वें नंबर पे इनको रेट किया जा रहा था। नोबडी वाज सेइंग कि ये टॉप 2 में आ जाएंगे, बट दे हैव कम इन टॉप 2। बहरहाल उस फाइनल में क्या हो सकता है उसका जिक्र करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस ब्रेक के बाद। इस वक्त आइए ले लेते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक GAFM रेडियो नेटवर्क पर।

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران سندھ کی

टीम में जबरदस्त अंदाज में खेलती आई हैं। दोनों ही टीमों की कारकर्दगी शानदार रही है और दोनों ही टीमों की कारकर्दगी जो है जिसे कहना चाहिए काबिले तारीफ भी रही है और उम्मीद यही है कि इस मुकाबले में भी दोनों टीमें दे विल कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग जहां तक ताल्लुक है। अब विराट कोहली का देखिए 600 रन के साथ वो टॉप स्कोरर है जहां तक आरसीबी का ताल्लुक है। ये टेस्ट क्रिकेट से वनडे क्रिकेट से वनडे अपना एक तरह से ये T20 क्रिकेट से और टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, सिर्फ ओडीआई खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ 600 रन कर दिए जनाब ने और 722 रन कर दिए हैं शुभमन गिल ने। और भुवनेश्वर कुमार जो कि अब टीम का हिस्सा नहीं नजर आते, उन्होंने 26 विकेटें हासिल कर ली हैं अपनी टीम के लिए आरसीबी के लिए। और उधर रबाडा ने 28 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं। तो क्या कहा जाए, क्या किया जाए कि कैसी कैसी कारकर्दगियां जो है हमें देखने को मिल रही हैं, आउटस्टैंडिंग है जनाब। इसके लिए तो तारीफ ही हो सकती है। और आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार हैं, बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो जैकब बैथल हैं जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, हॉक्स हैं, टिम डेविड हैं, बहुत ही अच्छी खेल का मुजाहरा। विराट कोहली का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ। हेजल वुड हैं, जैकब डफी हैं, भुवनेश्वर कुमार का मैं जिक्र कर चुका हूँ, विकेट्स लेते हुए आ रहे हैं। देर आर और फिल सॉल्ट जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, ही कैन कम ऑल गन्स ब्लेजिंग। उसके अलावा शेफर्ड है वेस्ट इंडीज के, ये खतरनाक हैं। और अगर मैं जिक्र करूँ गुजरात का तो उनमें शुभमन गिल कैप्टन है, 722 रन बनाकर वैसे ही टॉप पे हैं। उसके अलावा जॉस बटलर हैं इंग्लैंड के, साथ साथ जो है वो जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के, ये कुछ बड़े नाम हैं। उसके अलावा मोहम्मद सिराज हैं, गैलन फिलिप्स न्यूजीलैंड के, कृष्णा हैं, कगिसोर अबाडा का मैं जिक्र कर चुका हूं जो टॉप विकेट टेकर हैं, इज डन अ ग्रेट जॉब। शाहरुख खान जो पहले इंडिया की जो छोटी छोटी लीग्स होती हैं उनसे सुर्खियों में आए थे, इज अ गुड प्लेयर एज वेल। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर हैं, लूक वुड हैं और जयवंत यादव हैं। तो तमाम ही टीम्स के पास अच्छे प्लेयर्स दोनों ही टीमों के पास मौजूद हैं। अब लेट्स सी कि आज शाम जब मुकाबला इन दोनों टीमों के दरमियान शुरू होगा, हु विल टेक दिस विक्ट्री अंडर देयर बेल्ट, कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, ये सारा कुछ देखना होगा। बहरहाल ये बताते हुए कि सुनते रहिए जीए एफएम रेडियो नेटवर्क। अब अपने मेजबान राणा शफाक को दीजिए इजाजत। आप न्यूज ब्रेक भी देखेंगे यानी सुनेंगे, न्यूज भी साथ साथ जो है वो आप अगले घंटे में यकीनन कुछ म्यूजिक हमारे इंजीनियर्स आपके लिए प्ले करेंगे नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी बहुत सारी खबरों के साथ जिसमें कुछ लोकल खबरें भी हम शामिल करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने टेप बॉल क्रिकेट जो एक फलती फूलती इंडस्ट्री है उसके हवाले से भी आपसे बातचीत की थी और इनफैक्ट पिछले से पिछले हफ्ते और साथ साथ दो यंग कमेंटेटर्स से भी आपकी मैंने मुलाकात करवाई थी। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी पर्सनैलिटी से भी आपकी मुलाकात करवाई जाए, आपको रोशनास कराया जाए कि इस फील्ड में लोग किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं, यंगस्टर्स के लिए क्या स्कोप है। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह निगेबान।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क।
2: जो मुतालबो भी बढ़ जाए।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: प्रॉपर्टी हुई है हूंदी एक इंच भी कंहिंखे न ॾिबो। मेयर कराची मुर्ज़ावाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त लैंड डिपार्टमेंट जे ऑफिसर ते मौके ते पहुची कब्ज़ो रोकरायो। मां MQM जे करतूतनि जी सज़ा भोगियां पियो, संदन दबाव में न ईंदुसि।

ऐं माली साल जी बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियूं ऐं सोलर बांका थियण जो इम्कान। ज़रियनि मूजिबि IMF पारां बजट में सेल्स टैक्स छूट ख़तम करण जी तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियुनि ते सेल्स टैक्स 18% थियण जो इम्कान आहे। ईंदड़ माली साल में गाड़ियुनि जी इम्पोर्ट 40,000 ताईं महदूद करण जी तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियुनि ते बि सेल्स टैक्स 8% वधाए 18% ताईं आणे सघिजे थो। सोलर पैनल्स ते बि सेल्स टैक्स 10% खां वधाए 18% करण जी तजवीज़। ईंदड़ माली साल जी PSDP जी मद में 1126 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। GDP वाध जो हदफ 4% रखण जी तजवीज़। ईंदड़ माली साल जी बजट लाइ सालाना प्लान कोआर्डिनेशन कमेटी जो इजलास 1 जून ते थींदो। SN इक़बाल जी सदारत में इजलास दौरान तरक़ियाती बजट जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो इजलास 3 जून ते वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि सॾाइण जो इम्कान। FBR टैक्स उगाड़ में 868 अरब रुपयनि जी घटताई खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। 12,095 अरब रुपयनि जे हदफ़ जे मुक़ाबले में 11,027 अरब रुपया जमा थी सघिया।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाय खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाय फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: Allah ya bi ci fami ni be passé ba ni ñu té nepp ni tan yo di gëss mu do da changer bu dem ni
1: a ji sen bilkul dekk sax li téléphone bi yi da saxé té ru buru de karal pour yi ko so xabar tay ji sax
0: sunu ma soro maruf dal ci manguru ken me mun sama sunu studio me mojud dak sa bahar arba khamis juma chan chara char sumar angaro arba khamis har arba khamis juma chan chara char sumar de subah de khasham पंजे वगे तई जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहन कॉलर लाइन से मौजूद है दिसो किथा जो कॉलर अस सा गड हो 0301 9198151 जो लाइव कॉल जो नंबर है
2: सलाम अलैकुम दादा हेलो हेलो
0: ये बात ये साथ तो लाइन मेज़बान हाकिम रजिस्कानी गड है 0301 9198151 लाइव कॉल जो नंबर सिंजो मशहूर व मारूफ डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब स्टूडियो में मौजूद जो मुख्तलिफ़ बीमारियों बाबत जान दे रो है कॉलर लाइन से मौजूद है किथा जो कॉलर गड हों वालेकुम अस्सलाम जी साहब तो गलाए मुझे साईं खुशामदी चवंदा भाउ खे रेडियो सेट खे बंदि कयो छा पुछंदा भाउ मुंहिंजा डॉक्टर साहिब खां अलाह अकबर पिनन में माना जेके जंगुनि जूं पिया पिनियूं हूंदियूं आहिनि हुन पिननि में सूर रहे अच्छा चक्कर बि अचनि था
3: उमिरि घणी आहे
0: अच्छा उहा बि इस्तेमालु कयो विटामिन जी कमी हूंदी असुल इहो चक्कर थींदो आहे बराबरि ॿुधो ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो या वरी रूबरू ॾेखारे वञे
1: बिल्कुलु हिनखे असां ऐसा बि कमज़ोरी बि सूरत में चवंदा आहियूं या पठा कमज़ोर थी वेंदा आहिनि जंहिंजे करे पोइ उनमें नर्व्स जी वीकनेस थी वेंदी आहे जंहिंजे करे थींदो आहे अॼु खे इहो ई चवंदासीं त हिकु त खीर जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी आहे रोज़ाना राति जो खीर जे हिकिड़े गिलास में 7 दाणा खजूर जा ककड़ी कढी करे विझी उहो जूस करे उहो पीअण में जेकॾहिं माखी बि मौजूदु आहे हिकिड़ो चमचो माखी जो विझी त इनशाला ताला हफ़्तो पीअण सां उनजी सारी शिकायत ख़तमु थींदी महीने पीअण सां बिल्कुलु तंदुरुस्तु तवाना थी वेंदो वॾी महिरबानी
2: छा पुछंदो डॉक्टर साहब खां
0: पाणी
1: जो इस्तेमालु ज़्यादा करे खीर जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी आहे ऐं रोज़ाना राति जो जेको आहे सो सौंफ पाणी में पिसाए रखे सुबुह जो नेराणे उनखे काढ़े उनजो पाणी पीअनि इनशा ताला कब्ज़ में काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो जेकॾहिं कब्ज़ आहे त चांवर जो इस्तेमालु बिल्कुलु बंदि करे छॾियो ऐं इनशा ताला काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो फल फ्रूट इस्तेमालु कनि वाक जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी आहे ॿी नंबर में ज़रूरी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त असां ग़लती इहा कंदा आहियूं त कॾहिं कॾहिं दिमाग़ जी तरफ़ खां जॾहिं मैसेज ईंदो आहे त अव्हांखे पाखाने जो ख़्यालु थियो आहे यानी हाजत जो ख़्यालु थींदो आहे त असां कंहिं मसरूफ़ जे करे उनखे डिले करे छॾंदा आहियूं जेको इतां ई ग़लति आहे ऐं उन डिले करण जे करे उहो ख़्यालु मटिजी वेंदो आहे ऐं पोइ जेको असांखे कब्ज़ जी शिकायत रहंदी आहे इनजे करे उन जे करे उहा शिकायत ख़तमु करण जे लाइ अव्हांखे जंहिं महिल बि अहिड़ी हाजत महसूसु थिए त पहिरियां जेको आहे सो उहो कमु कंदा कयो वॾी महिरबानी
0: प्रोग्राम से अची ॻाल्हि थी मेरा प्रोग्राम 94 जो आवाज़ कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे अस्सलाम वालेकुम मसले जो हल भी थे हुतां हुतां दवा वठंदे हिन जो को हाल न आहे डॉक्टर साहिब खे रूबरू अची ॾेखारे वञ ॾिस महीनो थी वियो आहे हुनखे मोशन बुखार छॾे ई नथो हिन महिल पुराणो बुखार थी चुको आहे, हॾनि जो बुखार में ईअं सम्झो हॾनि में बुखार रहिजी वियो आहे डॉक्टर साहिबु वटि अहिड़ो जी जी हा मोशन बिल्कुलु घणा हूंदा हिन में थींदो आहे इहो ॿुधो एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो या रूबरू ॾेखारे वञेसि भाउ
4: बिल्कुलु ई चवंदासीं हिकिड़ो महीनो थी वियो आहे हिन में पेशंट अहिड़े पेशंट खे ऐं ज़्यादा डिले करण सां डिहाइड्रेशन जी कमी थी वेंदी आहे यानी नमकिया ते पाणी जी कमी थी वेंदी आहे पोइ उन पेशंट खे जेको आहे सो उहो हॉस्पिटलाइज पेशंट थींदो आहे उनखे अॻिते हली जेको आहे तमामु घणी कॉम्प्लिकेशन में अची सघे थो इन जे करे बहितरु आहे त उनखे रूबरू ॾेखारे दवा वठी वञे वरिती वञे वरी
0: महिरबानी आवाज़ु तव्हांजी समाजनि में पहुचे पियो डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाब शाह डॉक्टर साहिबु हर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोरली कबीर रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। उहा पित जी पथरी आहे, गुर्दे जी पथरी आहे, मसाले जी पथरी आहे, नक जी हॾी वधियल आहे, गले जा गुदूद वधियल आहिनि। उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कनि था। इन खां अलावा संदनि जोड़नि जो सूरु आहे, गोॾनि जो सूरु आहे, अव्हांखे कुंदरग जो सूरु आहे, पुराणो नज़लो आहे, निछूं आहिनि, मथे जो सूरु आहे, अधु मथे जो सूरु आहे, नज़र जी कमज़ोरी आहे, कन में सूरु आहे, तव्हांजो कनु वहे थो, घटि ॿुधो था, शुगर आहे, ब्लड प्रेशर आहे, दिलि जा मर्ज़ आहिनि, बवासीर आहिनि, खंघि आहे, टीबी आहे, मादे जो सूरु आहे, मादे जी अल्सर आहे, अव्हां खाओ पियो था, तव्हांखे खाधो बिल्कुलु नथो वणे, कॾहिं कॾहिं अव्हांखे उल्टी अचे थी या तिरी अव्हांजी वधी वञे थी, जिगर आहे, हेपेटाइटिस बी आहे, सी आहे, गुर्दनि जो अव्हांखे इन्फेक्शन आहे, गुर्दनि में चहिरे जो रंगु अव्हांजो सांवरो थी वियो आहे, ख़ारिश आहे, ख़ारिश जी कहिड़ी बि बीमारी हुजे, एलर्जी हुजे, फट हुजनि, फुरड़ियूं हुजनि, ॿारनि जो कदु नथो वधे पियो, ॿार सफ़ा कमज़ोर थी विया आहिनि, औरतुनि जो वज़न नथो वधे या जेके औरतूं जंहिंजो वज़न वधी वियो आहे उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु 30 साल तजुर्बो रखंदड़ हिकु मशहूरु डॉक्टर आहे जंहिं वटि अलहमदिल्ला हज़ारे मरीज़ हिन वक़्तु ताईं सिहतयाब थी चुका आहिनि। मिसाल कंहिंखे अधरंगो आहे, अवां बिना जजक जे डॉक्टर साहिबु वटि हलिया अचो, कंस्टिपेशन आहे, अवां बिना जजक हलिया अचो, पुराणे खां पुराणो बुखार आहे, डॉक्टर साहिबु वटि हलिया अचो। कॾहिं बि डॉक्टर साहिबु पंहिंजो नंबर बंदि नाहे कयो, कॾहिं बि कंहिं मरीज़ खे जवाबु नाहे ॾिनो। अलहमदिल्ला डॉक्टर साहिबु जीअं इलाजु कंदो आहे, अलाह सांजी ज़ात उनखे शिफ़ा ॾींदी आहे, हिकिड़ी हथु शिफ़ा थींदी आहे। ऐं दोस्तनि खे इहो ई गुज़ारिश कंदो आहे, जिते जिते मुंहिंजो इहो आवाज़ु पहुचंदो आहे, उन्हनि खे इहो चवंदो आहे भई हिनजो डॉक्टर साहिबु वटि जेको हिकु दफ़ो ईंदो ऐं अलहमदिल्ला डॉक्टर साहिबु खां ई इलाजु पियो कराईंदो। कॉल जी तरफ़ ईंदासीं, हे कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम। साईं मुंहिंजा केरु साहिबु पियो ॻाल्हाए? जी अदा, छा पुछंदो आहे डॉक्टर साहिबु खां? थोरी मौसम तब्दील जे करे थियो हूंदो न, यहां कचो सुस्ती काइल आहे त हा बिल्कुलु ईअं थींदो आहे। डॉक्टर साहिबु वटि इलाजु मौजूदु आहे, एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो। जी सर,
4: जी सर, बिल्कुलु कंहिंमहिल जी मां सौंफ जो काढ़ो ॿुधाईंदो त सौंफ जो काढ़ो अक्सीर आहे, उहो इस्तेमालु करे सघो था, इनशा ताला हिन सां काफ़ी फ़र्क़ु पवंदो।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ु तव्हांजी समातुनि में पहुचे पियो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाब शाह सिंध जो मशहूरु मरूफ़ डॉक्टर आहे जेको असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे। डॉक्टर साहिब जूं महिनतूं आहिनि, तमामु घणो डॉक्टर साहिबु महिनत कई, मशहूरु डॉक्टर आहे, अलाह सां हुनजे हथ में हिकिड़ी शिफ़ा रखी आहे छो जो हिकिड़ो ज़रियो बणबो आहे। डॉक्टर साहिबु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केरु साहिबु ॻाल्हाए मुंहिंजा साईं? हा भली कार चवंदा भाउ खे, छा पुछंदा भाउ डॉक्टर साहिब खां? अच्छा, माना कुख में सूर बि रहे थो, गोॾनि में सूर आहे, तुंहिंजे जोड़नि में सूर आहे, पोइ त 5 महीना थिया आहिनि, 5 महीननि में तो अॼु फ़ोन कई आहे डॉक्टर साहिब खे, रूबरू बि न ॾेखारियो अथई मुंहिंजा मिठा भाउ। डॉक्टर साहिबु रोज़ु कलाकु टाइम कढी तव्हांजे लाइ ईंदो आहे असांजे स्टूडियो में।
4: मल्टीपल प्रॉब्लम्स आहिनि, हिन जे लाइ रूबरू ॾेखारींदो त वधीक बहितर।
0: डॉक्टर साहब आज महरबानी आहन ता मजो कीमती वक्त न आखिर में आ केड़ो पैगाम देन चाहिंदा असन मौजूद बुधंदलन के
4: आ वडी मेहरबानी एक्चुअली पछड़ में यही है त एक त सदको जरूर दींदा के उन खा पो जेके बीमार आहन अस्पताल में उन जे लिए दुआ जरूर कंदा के त अल्लाह ताला उन के सेहत याबी दे ए जेके बे औलाद हजरात आहन अल्लाह ताला उन के औलाद नेरी ना ता करे वडी मेहरबानी
0: सामिन डॉक्टर मंजूर हुसैन मेहमान साहब असन स्टूडियो में मौजूद हो इस्लामाबाद कराची नवाबशाह हैदराबाद जो मशहूर और मारूफ डॉक्टर मंजूर हुसैन मेहमान साहब जो पूरे पाकिस्तान जो एको मशहूर डॉक्टर है मुल्की सतह जो डॉक्टर है डॉक्टर मंजूर हुसैन मेहमान साहब होम्योपैथी कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन गुर्दे पित्ते मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन में कामयाब इलाज कन था संदन जो सूर जोड़न गोडन जो सूर नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र की कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचान शुगर ब्लड प्रेशर दिल जहा मर्ज अधरंगो खंग टीबी मादे जो सूर मादे की अल्सर त्री जो बधन जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सावरो है चेहरे की खारिश है फट आन फुलियो है बारन में कद जो न वधन औरतुन में वजन जो न वधन औरतुन में मर्दन जो पोशीदा बीमारियों जो डॉक्टर साहब कामयाब इलाज कना है डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर ए सूमर ते सुबह दहें खां शाम पंजे वगे तई जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामूँ वधन पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर शहर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिन डॉक्टर साहब हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर चेकअप फीस जी यानी चेकअप जी फीस है वह डॉक्टर साहब की टे दिन बिल्कुल फ्री है बिल्कुल मुफ्त है जे गरीब आन असं उन्होंने गुजारिश कर उन यो फायद हासिल करो तीका चेकअप फीस है वह बची पवी इन अड़े प्रोग्राम जो भी वक्त पचे तो पानी पुजाने से अस एक दफो बीहर जरूर चवंदी जीव खुश तो जहान खुश जीव आए सबको तीक लगन बीठे जो सबको ए किरे जो केर भी ना है तेरे ख्याल रखो पैं घरवारों जो पैं औलाद जो पैं बारन जो पैं बचन जो नंढन वडन सभी जो पैं वालदेन के सेहत जो बेनता ख्याल रखो इन अज के प्रोग्राम जो भी वक्त पचे तो पानी पुजाने से बे प्रोग्राम तेजे मेज़बान हाकिम अली जिसकानी के दींदा इजाज़त अल्लाह निगहबान अल्लाह वाहिद।

0: सिंध में पाणीअ जी शदीद बोहरान बावजूद पंजाब तकारी लिंक कैनालनि ज़रिए पाणी जी खणत बंदि न कई। सिंध हुकूमत जो एहतजाज, सिंध में पाणीअ जे बोहरान ऐं गैर मुनसिफ पाणी वर्च ते सीनियर वज़ीर शजीर इनाम मेमण वफ़ाक़ खां पंजाब जी ज़्यादती ऐं इरसा जे फ़ैसिलनि जो नोटिस वठण जो मुतालबो कयो। शजीर इनाम मेमण चयो त इरसा जे फ़ैसिलनि सां सिंध सां अण बराबरीअ वारे वर्ताउ जो तासुर मज़बूत थी रहियो आहे। कंहिं बि सूबे खे ॿिए सूबे जे हिसे ते तरजीह नथी ॾेई सघिजे। सिंध गुज़िरियल केतिरनि ॾींहनि खां 22% पाणी खोट खे मुंहुं ॾेई रही आहे। कराची जहिड़े माशी मर्कज़ लाइ संगीन ख़तरा पैदा थी रहिया आहिनि। गुडू बैराज ते 42 ऐं कोटड़ी बैराज ते 29% पाणी जी खोट रिकॉर्ड कई वई। वफ़ाक सिंध खे जाइज़ मुकमल ऐं जाइज़ हिसो फराहम करण लाइ अमली कदम खणे।
1: कम से कम 12 फुटन खां न लाहे वञे, छाकाणि त मच्छर जो जियापो आहे, असांजे मन पाणी जियापो आहे, उन में मच्छी वॾी थींदी आहे। असांखे मच्छीअ पियो ज़रूरु, असां रोज़गार मच्छी आहे, छो त असांजो जियापो मच्छी आहे। इहो असांखे ॿियो पाणीअ जी सहूलियत असांखे खपे, पाणी पीअण लाइ असांखे मिले कोन थो। घणा ॻोठ आहिनि हिते, तव्हां जांच कयो न, असांखे सफ़ा बिल्कुलु कीअं था मरनि।
2: तक़रीबन 1 खां 2 किलोमीटर ताईं हींअर सुकी वियो आहे। मच्छर जे मलान जो जियापो आहे न हींअर पाणी, ऐं मच्छर जो जेको पाणी आहे 112-113 आर एल रखियो वञे, ताकी मच्छर जा मलाह उहो रोज़गार करे सघनि।
0: सिंध जी ख़ूबसूरत ऐं सभ खां वॾी मच्छर ॾंड बि सुकी वई। फान सईदाबाद में मच्छर बचायो इतिहाद जो ॾंड जी बहालीअ लाइ मच्छर बंद ते एहतजाज। मुज़ाहिरीन चयो त पाणी घटिजण सबबि मच्छी जो नसल ख़तम थी वियो आहे, मुहाणा बदहाली जो शिकार आहिनि। पाणी जी सतह घटिजी 106 आर एल यानी 6 फुट रहिजी वई। 30,000 खां वधीक इंसानी आबादी पीअण तोड़े ज़रई पाणी खां महरूम आहे। मच्छर ॾंड में पाणी जी सतह खे बहाल कयो वञे।

वाटर पंपिंग ताबेजी स्टेशन ते बिजली की बंदिश सबब कराची के पानी की फ्राहमी मुअत्तल। वाटर कारपोरेशन के तर्जुमान जो चवण है ताबेजी ग्रिड के ट्रांसफार्मर्स में फनी खराबी सबब शट डाउन किया। जिकरी शट डाउन से ताबेजी पंपिंग स्टेशन जहा 21 मां 10 यूनिट्स बंद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकन के पानी की फ्राहमी मुअत्तल है। बिजली मुकम्मल बहाल थियण के वक्त बाबत हतमी जान फराहम न कई वही। एमकेएम जो कराची में कब्जन वाले मामले ते एस्टेब्लिशमेंट का मुदाखलत जो मुतालबो। एमकेएम अगवान अगोड़े मेयर वसीम अख्तर है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कराची में कब्जन जो नोटिस वटे। फारूक सत्तार कराची कब्जा माफिया हवाले कई पी वे। जमायत इस्लामी चो खामोश है। हिल पार्क से कब्जो किया पो वे। मकानी चूडन का अग कामरान टिसूरी के बीहर गवर्नर थियण घुर्ज। इन भेरे वही तैयारी से बलदियाती चूडन में हिस्सो वी। एमकेएम अगवान पुरानी रिवायत बरकरार रखते कराची के वफाक हवाले कर जो मुतालबो भी वर्जायो। हिल पार्क केएमसी की प्रॉपर्टी हुई हूंदी एक इंच भी कंखे न डिबो। मेयर कराची मुसा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे लैंड डिपार्टमेंट के ऑफिसर ते मौके ते पहुंची कब्जो रोकरायो। मां एमकेएम के करतूतन की सजा भोगिया पो संदन दबाव में नहीं दस। कराची के एक जमात की जागीर न पर पाकिस्तान जो माशी मरकज है। एमकेएम इल्जाम लगाए पैंजी सियासत जिंदा करण की नाकाम कोशिश करे पई। सीनियर वसीर शर्जील इनाम अहमद जो एमकेएम अगवाड़न की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रद्द अमल। शर्जील इनाम अहमद शहर जा मसला वधाईंदड़ पान के आजो बनाए पेश कर रहा है। कराची में जारी मनसूबा प्रोपेगेंडा से रद्द नथा कर सकजन। सिंध हुकूमत मकानी इदारन के इख्तियार दई माली वसीला और कानून सपोर्ट फराहम कई। बसो यूनिट्स का घट बिजली इस्तेमाल कंदड़ लाए सब्सिडी खत्म करण वाली खबर बेबुनियाद करार। तवानाई वरे वजीर अवेस लकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त हुकूमत प्रोटेक्टेड वाइपेदारन लाए सब्सिडी खत्म न पई करे। हकदार वाइपेदारन के सब्सिडी देण वारो सिलसिलो जारी रहंदो। इन वक्त मुल्क में बिजली की पैदावार 36,000 मेगावाट है। बिजली की पैदावार लाए मकामी जरियन ते दारो मदार वधी रहियो आहे। नेट मीटिंग मुकम्मल खत्म नाहे कई रुगो बिलिंग में सुधारा कया व्या है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-96-8801।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

टिन राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा सिंध ऐं बलोचिस्तान जे सरहदी इलाइक़े में ओगरा जी कार्रवाई लखे लीटर गैर क़ानूनी पेट्रोल ऐं डीज़ल हथ सिंध में पाणीअ जी खोट वधी 22 सैकड़ो थी वई सी जी ऐं टी पी के नाल वसीले धाड़ो बंद न थियो हणत जारी सिंध में वायूं बताल कंदड़ गर्मी पारो 51 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुतो अवाम परेशान सूफ़ीज़म तसोफ़ जे अज़ीम आलमी सतह ते शोहरत याफ़्ता सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारीअ जो 773 उर्स मुबारक ठंडो मामद ख़ान बि मुनक़िद सूफ़ीज़म वारे फ़िक्र खे ख़िराज तहसीन पेश हैदराबाद में मुबैना तौरु घरेलू तकरार तां छेड़ो जवाबदार जो पंहिंजे मासीअ जे घर ते हमिलो फायरिंग गोलियूं लॻण सबबि हिकु नौजवान क़तल ऐं ॿियो भाउ ज़ख़्मी जवाबदार फ़रार ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध में शदीद गर्मी ऐं अण ऐलानियल लोडशेडिंग अवाम आज़ाब जे चकीअ में

सिंध में पाणी खोट वधी 22 सैकड़ो थी वई। सीजी ऐं टीपी केनालनि वसीले धाड़ो बंद न थियो, खणत जारी आहे। जॾहिं त मिलियल अंगाखर मूजिब कोटड़ी बैराज वटि 29 सैकड़ो खोट डिक्लेयर कई वई आहे। पाणी ठाह मूजिब सिंध खे मजमूई तौर 80,640 क्यूसिक पाणी मिलणो आहे, पर फराहमी मजमूई 22 सैकड़ो पाणी खोट सां 62,953 क्यूसिक थी रही आहे। होॾां सीजी लिंक केनाल वसीले थो वञे। टीपी केनाल मां पाणी वहाइण बदिरां तरबेला डैम जो पाणी मंगला डैम मां खयो वञे पियो ऐं सिंध खे पाणी खोट खे मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे। सिंध जे आबाशी खाते वारा उन हवाले सां ख़ामोशी अख़्तियार कयल आहे, जंहिं सबबि सिंध में कायल फसलनि खे शदीद नुक़सान थी रहियो आहे। हितां जे आबादगारनि जो चवणु आहे त सिंध जे इरीगेशन खाते खे अख पटे अवाम खे पाणीअ जी फराहमी खे यकीनी बनाइण ते कमु करणु घुरिजे। सिंध जे सरहदी इलाइक़े में कारवाई गैर क़ानूनी तौरु ज़खीरो कयल पेट्रोल ऐं डीज़ल ज़ब्त करे वरितो आहे। ऐलान मूजिबि

0: कमजोरी कन जो वण कर ब्लड प्रेटी भी जलन दिली जो वदा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03218
2: मेहरान आयरनी होल अनेम्ड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रजार का बारिया दस्तयाब आई
2: हाँ ये चो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप ये हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003723 आई 02424601
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803743
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94

टिन राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा सिंध ऐं बलोचिस्तान जे सरहदी इलाइक़े में ओगरा जी कार्रवाई लखे लीटर गैर कानूनी पेट्रोल ऐं डीज़ल हथ सिंध में पाणीअ जी खोट वधी 22 सैकड़ो थी वई सी जी ऐं टी पी के नाल वसीले धाड़ो बंद न थियो हणत जारी सिंध में वायु बताल कंदड़ गर्मी पारो 51 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुतो।

सिंध में पाणी खोट वधी 22 सैकड़ो थी वही। सीजी ऐं टीपी केनालन वसीले धाड़ो बंद न थियो, खणत जारी आहे। जॾहिं त मिलियल अंगाखर मूजिब कोटड़ी बैराज वटि 29 सैकड़ो खोट डिक्लेयर कई वई आहे। पाणी ठाह मूजिब सिंध खे मजमूई तौर 80,640 क्यूसिक पाणी मिलणो आहे, पर फराहमी मजमूई 22 सैकड़ो पाणी खोट सां 62,953 क्यूसिक थी रही आहे। होॾां सीजी लिंक केनाल वसीले ठाह मूजिब 5,500 क्यूसिक पाणी कढियो वियो आहे, पर उतां 11,500 क्यूसिक वहायो थो वञे। टीपी केनाल मां पाणी वहाइणो ई न आहे, पर उतां 11,285 क्यूसिक पाणी जी खणत आहे। मंगला डेम मां पाणी कढण बदिरां तरबेला डेम जो पाणी मंगला डेम मां खयो वञे पियो, ऐं सिंध खे पाणी खोट खे मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे। सिंध जे आबाशी खाते वारा उन हवाले सां ख़ामोशी अख़्तियार कयल आहे, जंहिं सबब सिंध में कायल फसलनि खे शदीद नुक़सान थी रहियो आहे। हितां जे आबादगारनि जो चवणु आहे त सिंध जे इरीगेशन खाते खे अख पटे अवाम खे पाणीअ जी फराहमी खे यकीनी बनाइण ते कमु करणु घुरिजे। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा सिंध में बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई कंदे लखें लीटर गैरकानूनी तौर जखीरो कल पेट्रोल ए डीजल जब्त कर वरतो है। ऐलान मूजिब ओगरा सिंध में बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई कई, जै दौरान वे मकदार में गैरकानूनी पेट्रोल ए डीजल हथ किया वो। ओगरा जो चवण है पेट्रोल ए डीजल हब वे इलाके में गैरकानूनी तौर जखीरो किया वो हो, जो एक ऑयल डिपो में रखो वो हो। ओगरा मूजिब वो खानगी कंपनी जो ऑयल डिपो गैरकानूनी तौर हलंदड़ हो, जैं वट ओगरा जो लाइसेंस ए दिफा वारी वजारत की NOC मौजूद न हुई। ऐलान में बुधा वो है तो ओगरा की इन्फोर्समेंट टीम उन ऑयल डिपो के सील कर छो है। सिंध के घणन मैदानी इलाक में सख्त गर्मी रिकॉर्ड कायम कर छा। मौसमियात खाते मूजिब पंजाब ए सिंध जणे कदर मैदानी इलाका सख्त गर्मी के लहर के वकड़ में हा गर्मी की लहर आचर तई जारी रहने जो इम्कान है। मौसमियात खाते मुताबिक गुजरल ढी सब का वधीक गर्मी पद दादू ए जेकमाबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया वो। सागी रीत सिब्बी तुर्बत शहीद बनंदिराबाद लाड़कानू ए मोहनजोदड़ो में गर्मी पद 50 डिग्री, खैरपुर सकरण में 49 डिग्री, डेरा गाजी खान में 47 ए लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रो। जडे तो इस्लामाबाद में गर्मी पद 40 डिग्री का रिकॉर्ड किया वो। उन सवा मौसमियात खाते है कराची में अज गर्मी पद 38 डिग्री सेंटीग्रेड तीन पहुंची सके तो। सूफी अजम तसोफ के अजीम आलमी सतह से शोहरत आफ्ता सूफी बुजुर्ग सैयद शाह शम्स तबरेजी सब्जवारी जो 773 उर्स मुबारक टंडो मोहम्मद खान में मुनद कर संदस सूफी अजम वे फिक्र के खराज तहसीन पेश वो। टंडो मोहम्मद खान में इल्म व अदब अकेडमी तरफा सैयद शाह शम्स तबरेजी सब्जवारी के भेटा देने लाय मुनक्किद कियल अदबी तकरीब के नाले वारे मुहक्क अदीब लेखक सैयद मेहरबान अली शाह शम्सी खिताब दौरान चयो ते सूफी अजम के तसवुफ वारे फिक्र के पूरी दुनिया में इंसानियत के भलाई जो दर्स करार दिनो वने थो। सदारती खिताब दौरान उन चयो ते शाह शम्स तबरेजी पूरी दुनिया के अंदर पांजे तसवुफ वारे फिक्र जरिए पांजी अलग आला सुणप ए मकाम रखियो आए, जैके भेटा देने के लिए मुनद कल ही अदबी तकरीब संदस अजमत के असा न सिर्फ खराज तहसीन पेश करूँ था, पर संदस अजीम सूफी अजम तसोफ वे फिक्र बाबत उो भी तस्लीम करूँ था तो शाह शम्स तबरेजी जो नजरियो इंसानियत के रोशन मुस्तकबिल जो एक मिसाल है। अदबी तकरीब के सोरमी सत बदीन की अगवाण मारवी आबदा समूह सदफ किरियो पीपी यूथ अगवाण सैयद सलाल शाह बुखारी तालीमी माहिर गुलाम नबी किरियो समेत नाले वारन लेखकन अदीबन शायरन खेस खराज तहसीन पेश कयो। जडे त अदबी तकरीब खां पो राग रंग जी महफिल में सिंध जे मशहूर सूफी फनकार सूफियाणा कलाम गाए दाद हासिल कयो। उन मौके ते सिंध ऐं पंजाब जे मुख़्तलिफ़ सूफी अज़म जे तसवुर सां ताल्लुक रखंदड़ दरगाहुनि जे गादी नशीनन जी बि दस्तारबंदी पिण कई वई। हैदराबाद के हाली रोड थाने के हद पुरानी सब्जी मंडी वेझो नजरहत कॉलोनी में मुबैना तौर घरू तकरार तां जवाबदारन जी मासी के घर ते हमलो कर घर अंदर फायरिंग कर दिनी, जैसे नतीजे में गोलियों लगन सबब एक नौजवान असद पठान थडे ते ही फोत वो, जडे त संदस भा शाहजे पठान जख्मी थी पियो। वाके बाद जवाबदार फरार थी वह। वाके जो इतलाह मिलने ते हाली रोड पुलिस पहुंची वही, जै लाश ए जख्मियों के खणाए सिविल अस्पताल हैदराबाद पहुंचाया, जिते जरूरी कार्रवाई बाद लाश वारसन हवाले किया वो, जडे त जख्मी के तिबी इमदाद दिनी वही। पुलिस मूजिब वाक्यो घरेलू तकरार तां पेश आयो आहे। कातिल ए मकतूल पाण में मासात थियन। वाक्य की जांच जारी है। जवाबदारन की गिरफ्तारी के लिए छापा हया पाया वन।
वारसन जे अचण बाद FIR दाखिल कई वेंदी। जॾहिं सिविल अस्पताल में ज़ख़्मी शाहज़ादे पठाण साहिबनि सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त संदसि मासीअ जे पुटनि संदन घर ते हमिलो करे संदसि भाउ असद पठाण खे क़तलु ऐं खेसि ज़ख़्मी करे फ़रार थी विया आहिनि। हुन चयो त जवाबदारनि में लधो, रियाज़, फयाज़ ऐं शहबाज़ शामिल आहिनि। होॾां वाक़िए जी इतलाह मिलण ते तक जे MP इंजीनियर साबिर हुसैन क़ाइमख़ानी पिणु सिविल अस्पताल में पहुची ज़ख़्मीनि जी अयादत कंदे वारसनि खे

जो इस्तेमालु कयो वञे थो। डॉक्टर बि तकलीफ़ में आहिनि, उन्हनि खे पूरियूं पघारूं नथियूं मिलनि, डॉक्टरनि खे तहफ़ुज़ बि ॾियणु घुरिजे। हुन हिकु पुछियल सवाल जे जवाब में चयो त 28 तरमीम खे नथो मञा, तरमीम आवाम खे ॿुधाइण खां बग़ैर नथी आणे सघिजे। अफ़वाह आहिनि त कराची खे वफ़ाक जे हवाले कनि था ऐं विरासत कनि था। पंजाब में सूबा ठाहिया वञनि पिया, जेकी अञा अफ़वाह आहिनि। अगरि लोकल बॉडीज़ ॿीहर ठहनि थियूं त सूबनि खे विरिहाइण जी ज़रूरत न आहे।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध हिन वक्तु तारीख़ जे सख़्त तरीन गर्मी जी लहर खे मुंहुं ॾेई रही आहे। आसमान मां बाहि वसंदड़ सिजु, तपंदड़ हवाऊं, साह बुसाड़जंदड़ माहौल ऐं मथां वरी अण ऐलानियल लोड शेडिंग अवाम जी ज़िंदगीअ खे अज़ा बणाए छॾियो आहे। शहर हुजनि या बहराड़ियूं, हर हंधि माण्हू गर्मीअ ऐं बिजली जे बुहरान विच में पीसजी रहिया आहिनि। सिंध जे केतिरनि ई इलाइक़नि जहिड़ोक नवाबशाह, दादू, लाड़काणो, सखर ऐं जेकबाबाद में गर्मी पदु 50 डिग्री सेंटीग्रेड जे वेझो पहुची वियो आहे। ॾींहं जे घरनि खां ॿाहिरि निकिरणु ॾुखियो थी पियो आहे। मज़दूर, खारी ऐं पोरीअ तबिको पंहिंजे रोज़गार खां महरूम थी रहियो आहे, छाकाणि त अहिड़ी सख़्त गर्मीअ में कमु करणु ज़िंदगीअ खे ख़तरे में विझण जे बराबरि आहे। शहर जूं बाज़ारूं, रोड ऐं अवामी हंध मंझंदि जो वीरान नज़र अचनि था। माण्हू घरनि अंदरि रहण ते मजबूर आहिनि, पर उते बि खेन आराम नसीब न आहे। गर्मीअ जी शिदत सां गॾु बिजली जी ढिघी ऐं अण ऐलानियल लोड शेडिंग अवाम जे तकलीफ़ुनि में वाध आणे रही आहे। केतिरनि ई शहरनि ऐं ॻोठनि में 12 खां 18 कलाक ताईं बिजली बंदि रहणु मामूल बणिजी वियो आहे। राति जो जॾहिं गर्मी पंहिंजी इंतिहा ते हूंदी आहे त बिजली ग़ाइब थी वेंदी आहे। नंढड़ा ॿार, बुज़ुर्ग ऐं बीमार माण्हू सॼियूं रातियूं जाॻी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। माण्हू घरनि जे छितियुनि ऐं घटियुनि में वेही हवा जे इंतज़ार में वक़्तु गुज़ारनि था। पाणीअ जो बुहरान, बिजली न हुजण सबबि पाणीअ जी फराहमी मुतासिर थी रही आहे। वाटर सप्लाई स्कीमूं बंदि हुजण करे केतिरनि ई इलाइक़नि में पीअण जो साफ़ पाणी नथो मिले। औरतूं ऐं ॿार हथनि सां पाणी भरण लाइ किलोमीटरनि जा सफ़र कनि था। ॻोठाणनि इलाइक़नि में जानवरनि लाइ पाणीअ जी खोट बि हिकु वॾो मसइलो बणिजी वई आहे, जॾहिं त मालवंत माण्हुनि खे माली नुक़सान पहुची रहियो आहे। सिहत जा संगीन ख़तरा, डॉक्टरनि मूजिबि शदीद गर्मीअ सबबि हीट स्ट्रोक, पाणीअ जी खोट, ब्लड प्रेशर ऐं ॿियनि बीमारियुनि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। इस्पताल में मरीज़नि जो अंगु वधी वियो आहे। अफ़सोस जोगी ॻाल्हि उहा आहे त केतिरनि ई सरकारी इस्पतालुनि में बि बिजली जी लोड शेडिंग सबबि मरीज़ ऐं संदनि वारस सख़्त तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध जी आवाम जो छा मुतालबो आहे? सिंधी आवाम जो मुतालबो आहे त अण ऐलानियल लोड शेडिंग जो फौरी ख़ात्मो कयो वञे। इस्पतालुनि, वाटर सप्लाई स्कीमुनि ऐं तालीमी इदारनि खे लोड शेडिंग खां आजो करार ॾिनो वञे। गर्मीअ जे लहर दौरान हंगामी रिलीफ सेंटर क़ाइमु कया वञनि। ग़रीब ऐं विचोले तबिके जे लाइ सोलर तवानाई ते सब्सिडी फ़राहम कई वञे। पीअण जे साफ़ पाणी जी फराहमी खे यकीनी बणायो वञे। सिंध जो आवाम हिन वक़्तु बिते अज़ाब मां गुज़री रहियो आहे। हिकु तरफ़ कुदरती गर्मीअ जी शिदत ऐं ॿिए तरफ़ बिजलीअ जे बुहरान आवाम जी ज़िंदगीअ खे मुश्किल बणाए छॾियो आहे। जेकॾहिं लाॻापियल इदारनि ऐं हुकूमत फौरी क़दम न खयां त हीअ सूरत हाल वधीक संगीन थी सघे थी। सिंध जे माण्हुनि खे रुॻो वादनि न पर अमली क़दमनि जी ज़रूरत आहे, जीअं हू हिन सख़्तु गर्मीअ ऐं बिजलीअ जे बुहरान मां निजात हासिलु करे सघनि।

0: हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंड अप। ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जापानी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें

0: ले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आरई 0307359210।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0300 3 8 5 6 9।
2: माशाल्लाह फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं, जॻहि जा पावा ऐं पाइप ॾेढ 2, 4, 6, 9 ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
0: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएम सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0303-85569-0300-33-8569।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।

टिन राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा सिंध ऐं बलोचिस्तान जे सरहदी इलाइक़े में ओगरा जी कार्रवाई लखे लीटर गैर कानूनी पेट्रोल ऐं डीज़ल हथ सिंध में पाणीअ जी खोट वधी 22 सैकड़ो थी वई सी जी ऐं टी पी के नाल वसीले धाड़ो बंदि न थियो हणत जारी सिंध में वायूं बताल कंदड़ गर्मी पारो 51 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुतो अवाम परेशान सूफ़ीज़म तसोफ़ जे अज़ीम आलमी सतह ते शोहरत याफ़्ता सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़ वारीअ जो 773 उर्स मुबारक ठंडो मामद ख़ान बि मुनक़िद सूफ़ीज़म वारे फ़िक्र खे ख़िराज ते सिन पेश हैदराबाद में मुबैना तौर घरेलू तकरार तां छेड़ो जवाबदार जो पंहिंजे मासीअ जे घर ते हमिलो फायरिंग गोलियूं लॻण सबबि हिकु नौजवान क़तलु ऐं ॿियो भाउ ज़ख़्मी जवाबदार फ़रार स्पेशल रिपोर्ट भी अवाम बुझी सकंदा सिंध में शदीद गर्मी ऐं अड़ ऐलानियल लोडशेडिंग अवाम आज़ाब जे चकीअ में

सिंध में पाणी खोट वधी 22 सैकड़ो थी वही। सीजी ऐं टीपी केनालनि वसीले धाड़ो बंद न थियो, खणत जारी आहे। जॾहिं त मिलियल अंगाखर मूजिब कोचड़ी बैराज वटि 29 सैकड़ो खोट डिक्लेयर कई वई आहे। पाणी ठाह मूजिब सिंध खे मजमूई तौर 80,640 क्यूसिक पाणी मिलणो आहे, पर फराहमी मजमूई 22 सैकड़ो पाणी खोट सां 62,953 क्यूसिक थी रही आहे। होॾां सीजी लिंक केनाल वसीले ठाह मूजिब 5,500 क्यूसिक पाणी कढियो वियो आहे, पर उतां 11,500 क्यूसिक वहायो थो वञे। टीपी केनाल मां पाणी वहाइणो ई न आहे, पर उतां 11,285 क्यूसिक पाणी जी खणत आहे। मंगला डेम मां पाणी कढण बदिरां तरबेला डेम जो पाणी मंगला डेम मां खयो वञे पियो, ऐं सिंध खे पाणी खोट खे मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे। सिंध जे आबाशी खाते वारा उन हवाले सां ख़ामोशी अख़्तियार कयल आहे, जंहिं सबब सिंध में कायल फसलनि खे शदीद नुक़सान थी रहियो आहे। हितां जे आबादगारनि जो चवणु आहे त सिंध जे इरीगेशन खाते खे अख पटे अवाम खे पाणीअ जी फराहमी खे यकीनी बनाइण ते कमु करणु घुरिजे। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा सिंध में बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई कंदे लखें लीटर गैरकानूनी तौर जखीरों कल पेट्रोल ए डीजल जब्त कर वरतो है। ऐलान मूजिब ओगरा सिंध में बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई कई, जै दौरान वे मकदार में गैरकानूनी पेट्रोल ए डीजल हथ किया वो। ओगरा जो चवण है पेट्रोल ए डीजल हब वे इलाके में गैरकानूनी तौर जखीरो किया वो हो, जो एक ऑयल डिपो में रखो वो हो। ओगरा मूजिब वो खानगी कंपनी जो ऑयल डिपो गैरकानूनी तौर से हलंदड़ हो, जैं वट ओगरा जो लाइसेंस ए दिफा वारी वजारत की NOC मौजूद न हुई। ऐलान में बुधा वो है तो ओगरा की इन्फोर्समेंट टीम उन ऑयल डिपो के सील कर छो है। सिंध के घणन मैदानी इलाक में सख्त गर्मी रिकॉर्ड कायम कर छा। मौसमियात खाते मूजिब पंजाब ए सिंध जणे कदर मैदानी इलाका सख्त गर्मी के लहर के वकड़ में हा गर्मी की लहर आचर तई जारी रहने जो इम्कान है। मौसमियात खाते मुताबिक गुजरल ढी सब का गर्मी पद दादू ए जेकमाबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया वो। सागी रीत सिब्बी तुर्बत शहीद बनंदिराबाद लाड़कानू ए मोहनजोदड़ो में गर्मी पद 50 डिग्री, खैरपुर सकरण में 49 डिग्री, डेरा गाजी खान में 47 ऐं लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहियो। जॾहिं त इस्लामाबाद में बि गर्मी पद 40 डिग्री खां वधीक रिकॉर्ड कयो वियो। उन खां सवाइ मौसमियात खाते चयो आहे त कराचीअ में अॼु गर्मी पद 38 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो। सूफ़ी अज़म तसोफ़ जे अज़ीम आलमी सतह ते शोहरत आफ़्ता सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़ वारीअ जो 773 उर्स मुबारक टंडो मोहम्मद खान में मुनक़िद करे संदसि सूफ़ी अज़म वारे फ़िक्र खे ख़िराज तहसीन पेश कयो वियो। टंडो मोहम्मद खान में इल्म व अदब अकेडमी तरफ़ां सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़ वारीअ खे भेटा ॾियण लाइ मुनक़िद कयल अदबी तक़रीब खे नाले वारे मुहक़िक़ अदीब लेखक सैयद महिरबान अली शाह शम्सी ख़िताब दौरान चयो त सूफ़ी अज़म जे तसोफ़ वारे फ़िक्र खे पूरी दुनिया में इंसानियत जे भलाई जो दर्स करार ॾिनो वञे थो। सदारती ख़िताब दौरान हुन चयो त शाह शम्स तबरेज़ी पूरी दुनिया जे अंदरि पंहिंजे तसोफ़ वारे फ़िक्र ज़रिए पंहिंजी अलॻि आला सुञाणप ऐं मक़ाम रखियो आहे, जंहिंखे भेटा ॾियण जे लाइ मुनक़िद कयल ही अदबी तक़रीब संदसि अज़मत खे असां न सिर्फ़ु ख़िराज तहसीन पेश करियूं था, पर संदसि अज़ीम सूफ़ी अज़म तसोफ़ वारे फ़िक्र बाबति उहो बि तस्लीम करियूं था त शाह शम्स तबरेज़ीअ जो नज़रियो इंसानियत जे रोशन मुस्तक़बिल जो हिकु मिसाल आहे। अदबी तक़रीब खे सोरमी सत बदीन जी अॻवाण मारवी आबदा समूह सदफ किरियो पीपी यूथ अॻवाण सैद सलाल शाह बुख़ारी तालीमी माहिर ग़ुलाम नबी किरियो समेत नाले वारनि लेखकनि अदीबनि शाइरनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयो। जॾहिं त अदबी तक़रीब खां पोइ राग रंग जी महफ़िल में सिंध जे मशहूरु सूफ़ी फ़नकार सूफ़ियाणा कलाम ॻाए दाद हासिलु कयो। उन मौक़े ते सिंध ऐं पंजाब जे मुख़्तलिफ़ सूफ़ी अज़म जे तसवुर सां तालुक़ु रखंदड़ दरगाहुनि जे गादी नशीननि जी बि दस्तारबंदी पिणु कई वई। हैदराबाद जे हाली रोड थाणे जे हद पुराणी सब्ज़ी मंडीअ वेझो नज़रहत कॉलोनीअ में मुबैना तौर घरू तकरार तां जवाबदारनि जी मासीअ जे घर ते हमिलो करे घर अंदरि फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि हिकु नौजवान असद पठाण थॾे ते ई फोत थी वियो, जॾहिं त संदसि भाउ शाहज़ेब पठाण ज़ख़्मी थी पियो। वाक़े बाद जवाबदार फरार थी विया। वाक़े जो इतलाउ मिलण ते हाली रोड पुलिस पहुची वई, जंहिं लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे खणाए सिविल अस्पताल हैदराबाद पहुचायो, जिते ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश वारसनि हवाले कयो वियो, जॾहिं त ज़ख़्मीअ खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। पुलिस मूजिबि वाक़ियो घरेलू तकरार तां पेश आयो आहे। कातिल ऐं मक़तूल पाण में मासात थियनि। वाक़िए जी वधीक जांच जारी आहे। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ छापा हयां पिया वञनि।
वारसनि जे अचण बाद FIR दाखिल कई वेंदी। जॾहिं सिविल अस्पताल में ज़ख़्मी शाहज़ादे पठाण साहिबनि सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त संदसि मासीअ जे पुटनि संदन घर ते हमिलो करे संदसि भाउ असद पठाण खे क़तलु ऐं खेसि ज़ख़्मी करे फ़रार थी विया आहिनि। हुन चयो त जवाबदारनि में लधो, रियाज़, फियाज़ ऐं शहबाज़ शामिल आहिनि। होॾां वाक़िए जी इतलाह मिलण ते तक जे MP इंजीनियर साबिर हुसैन क़ाइम खाने पिण सिविल अस्पताल में पहुची ज़ख़्मियुनि जी अयादत कंदे वारसनि खे इंसाफ़ ॾियण जी ख़ातिरी कराई। जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो गंबट गिम्प सिटी अस्पताल पहुची HIV में मुबतला ॿारनि जी अयादत कई ऐं मुख़्तलिफ़ वार्डनि जो दौरो कयो। HIV में मुबतला ॿारनि खां नफ़रत न करियो, HIV बाबति सुजाॻीअ जी ज़रूरत आहे। HIV हिकु ख़तरनाक लेकिन बीमारी आहे। अफ़सोस आहे त हीअ बीमारी ॿारनि में तेज़ीअ सां वधी रही आहे। HIV सिरिंजुनि मां तेज़ीअ सां वधे थी। अताई डॉक्टर बार बार इस्तेमालु थियल सिरिंजूं इस्तेमालु कनि था, जिन ख़िलाफ़ का बि कारवाई न पई कई वञे। हुन जो वधीक चवणो हुयो त पाकिस्तान में सिहत खाते में तबाही थियल आहे, इस्पतालि में वसीलनि जी खोट, जंहिं करे बार बार सिरिंजुनि जो इस्तेमालु कयो वञे थो। डॉक्टर बि तकलीफ़ में आहिनि, उन्हनि खे पूरियूं पघारूं नथियूं मिलनि। डॉक्टरनि खे तहफ़ुज़ बि ॾियणु घुरिजे। हुन हिकु पुछियल सवाल जे जवाब में चयो त 28 तरमीम खे नथो मञा, तरमीम आवाम खे ॿुधाइण खां बग़ैर नथी आणे सघिजे। अफ़वाह आहिनि त कराची खे वफ़ाक जे हवाले कनि था ऐं विरासत कनि था। पंजाब में सूबा ठाहिया वञनि पिया, जेकी अञा अफ़वाह आहिनि। अगरि लोकल बॉडीज़ ॿीहर ठहनि थियूं त सूबनि खे विरिहाइण जी ज़रूरत न आहे।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध हिन वक्तु तारीख़ जे सख़्त तरीन गर्मी जी लहर खे मुंहुं ॾेई रही आहे। आसमान मां बाहि वसंदड़ सिजु, तपंदड़ हवाऊं, साह उसाड़जंदड़ माहौल ऐं मथां वरी अण ऐलानियल लोड शेडिंग आवाम जी ज़िंदगीअ खे अज़ाब बणाए छॾियो आहे। शहर हुजनि या बहराड़ियूं, हर हंधि माण्हू गर्मीअ ऐं बिजली जे बुहरान विच में पीसजी रहिया आहिनि। सिंध जे केतिरनि ई इलाइक़नि जहिड़ोक नवाबशाह, दादू, लाड़काणो, सखर ऐं जेकबाबाद में गर्मी पदु 50 डिग्री सेंटीग्रेड जे वेझो पहुची वियो आहे। ॾींहं जे घरनि खां ॿाहिरि निकिरणु ॾुखियो थी पियो आहे। मज़दूर, खारी ऐं पोरियो तबिको पंहिंजे रोज़गार खां महरूम थी रहियो आहे, छाकाणि त अहिड़ी सख़्त गर्मीअ में कमु करणु ज़िंदगीअ खे ख़तरे में विझण जे बराबरि आहे। शहर जूं बाज़ारूं, रोड ऐं अवामी हंधि मंझंदि जो वीरान नज़र अचनि था। माण्हू घरनि अंदरि रहण ते मजबूर आहिनि, पर उते बि खेन आराम नसीब न आहे। गर्मीअ जी शिदत सां गॾु बिजली जी ढिघी ऐं अण ऐलानियल लोड शेडिंग अवाम जे तकलीफ़ुनि में वाध आणे रही आहे। केतिरनि ई शहरनि ऐं ॻोठनि में 12 खां 18 कलाक ताईं बिजली बंदि रहणु मामूल बणिजी वियो आहे। राति जो जॾहिं गर्मी पंहिंजी इंतिहा ते हूंदी आहे त बिजली ग़ाइब थी वेंदी आहे। नंढड़ा ॿार, बुज़ुर्ग ऐं बीमार माण्हू सॼियूं रातियूं जागी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। माण्हू घरनि जे छितियुनि ऐं घटियुनि में वेही हवा जे इंतज़ार में वक़्तु गुज़ारनि था। पाणीअ जो बुहरान, बिजली न हुजण सबबि पाणीअ जी फराहमी मुतासिर थी रही आहे। वाटर सप्लाई स्कीमूं बंदि हुजण करे केतिरनि ई इलाइक़नि में पीअण जो साफ़ पाणी नथो मिले। औरतूं ऐं ॿार हथनि सां पाणी भरण लाइ किलोमीटरनि जा सफ़र कनि था। ॻोठाणनि इलाइक़नि में जानवरनि लाइ पाणीअ जी खोट बि हिकु वॾो मसइलो बणिजी वई आहे, जॾहिं त मालवंद माण्हुनि खे माली नुक़सान पहुची रहियो आहे। सिहत जा संगीन ख़तरा, डॉक्टरनि मूजिबि शदीद गर्मीअ सबबि हीट स्ट्रोक, पाणीअ जी खोट, ब्लड प्रेशर ऐं ॿियनि बीमारियुनि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। इस्पताल में मरीज़नि जो अंगु वधी वियो आहे। अफ़सोस जोगी ॻाल्हि उहा आहे त केतिरनि ई सरकारी इस्पतालुनि में बि बिजली जी लोड शेडिंग सबबि मरीज़ ऐं संदनि वारस सख़्त तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध जी आवाम जो छा मुतालबो आहे? सिंधी आवाम जो मुतालबो आहे त अण ऐलानियल लोड शेडिंग जो फौरी ख़ात्मो कयो वञे। इस्पतालुनि, वाटर सप्लाई स्कीमुनि ऐं तालीमी इदारनि खे लोड शेडिंग खां आजो करार ॾिनो वञे। गर्मीअ जे लहर दौरान हंगामी रिलीफ सेंटर क़ाइमु कया वञनि। गरीब ऐं विचोले तबिके जे लाइ सोलर तवानाई ते सब्सिडी फराहम कई वञे। पीअण जे साफ़ पाणी जी फराहमी खे यकीनी बणायो वञे। सिंध जो आवाम हिन वक़्तु बिते अज़ाब मां गुज़री रहियो आहे। हिकु तरफ़ कुदरती गर्मीअ जी शिदत ऐं ॿिए तरफ़ बिजलीअ जे बुहरान आवाम जी ज़िंदगीअ खे मुश्किल बणाए छॾियो आहे। जेकॾहिं लाॻापियल इदारनि ऐं हुकूमत फौरी क़दम न खयां त हीअ सूरत हाल वधीक संगीन थी सघे थी। सिंध जे माण्हुनि खे रुॻो वादनि न पर अमली क़दमनि जी ज़रूरत आहे, जीअं हू हिन सख़्त गर्मीअ ऐं बिजलीअ जे बुहरान मां निजात हासिलु करे सघनि।